मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 59 सेकंड में है। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम सुनिए मातृवंदना समूह स्वरों में।

अभिमान से भरे मन को प्रार्थना से जोड़ने के लिए समर्पण और कृतज्ञता का मार्ग दिखाना आवश्यक है। अभिमान को खत्म करने के लिए धीरे धीरे ईश्वर की शक्ति के प्रति श्रद्धा और विनम्रता की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: प्रत्येक व्यक्ति शांति, निश्चिंतता और आनंद का जीवन जीना चाहता है, किंतु जीवन का क्रम इस प्रकार का है कि इसमें आनंद कम है, कष्ट अधिक है, निश्चिंतता कम है, चिंताएं अधिक हैं, शांति कम है और अशांति अधिक है, विषमता, प्रतिकूलता और संघर्ष अधिक है, सामंजस्य, अनुकूलता और स्थिरता कम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समस्याएं, दुविधाएं जीवन का अनिवार्य अंग है। कवि की पंक्तियां इसे स्पष्ट करती दिख रही हैं। धड़कनों से दिल की ये समझा हूं मैं, जिंदगी बेचैनियों का नाम है। चिंता और संताप वर्तमान युग की ज्वलंत समस्याएं हैं। चिंताएं स्नायविक, मांसपेशी, मानसिक और भावनात्मक तनावों को जन्म देती हैं। तनावग्रस्त व्यक्ति अस्त व्यस्त जिंदगी जीता है। वह मनोकायिक रोगों से पीड़ित हो जीवन के वास्तविक आनंद से सदा सदा के लिए वंचित रह जाता है। इस संदर्भ में हमें यह सोचना है कि आखिर मनुष्य चिंतित क्यों रहता है। चिंता भी दो प्रकार की होती है, सार्थक और निरर्थक। अधिकतर व्यक्ति निरर्थक चिंताओं का भार ढोकर तनावों को निमंत्रण देते हैं। वैसे व्यक्तित्व निर्माण के लिए विपरीत परिस्थितियों का होना जरूरी है। जीवन में पानी का जितना महत्व है उतना ही आग का महत्व है। छाया का जितना मूल्य है रात का भी उससे कम मूल्य नहीं है। सफल व्यक्ति वह होता है जो हर परिस्थिति के साथ प्रसन्नता से जीना सीखे। दुर्बल व्यक्ति जहाँ परिस्थितियों को दोष देता है, वहीं सशक्त व्यक्ति परिस्थितियों को स्वयं के अनुकूल ढालने का प्रयास करता है। चिंता का दूसरा कारण है भय। मानसिक चिकित्सक डॉक्टर ग्रोवर के अनुसार भय ही चिंता का मूल कारण है। मनुष्य जाने अनजाने वास्तविक या परिकल्पित भय से संतप्त रहता है। भय आशंका को जन्म देता है और आशंका चिंता को। प्रत्येक उम्र के व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की चिंता प्रतिक्षण सताती रहती है। विद्यार्थी को चिंता रहती है परीक्षा परिणाम की, तो माँ बाप को चिंता रहती है विवाह योग्य लड़के या लड़की की शादी की। गरीब को चिंता रहती है 2 जून रोटी की, तो अमीर को चिंता है काले धन की सुरक्षा की। पैसा देने वालों को चिंता है पैसा डूब न जाए, और पैसा लेने वालों को चिंता है पैसों का कर्ज कैसे चुकाया जाए। भावी अमंगल और अहित की आशंका व्यक्ति को प्रतिक्षण परेशान किए रहती है। कदाचित व्यक्ति ये सोचता है यदि मन चाहा काम न हुआ तो उसके समक्ष भारी दुर्घटना घटित हो जाएगी, किंतु वास्तविकता यह है कि इस प्रकार व्यर्थ की चिंता करने से जो सूक्ष्म मानसिक प्रकंपन या विचार तरंगे उत्पन्न होती है ये वातावरण को प्रभावित तो करती ही हैं, साथ साथ संबंधित व्यक्ति के विचारों को भी अस्थिर बना देती हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप चिंता का जन्म होता है और चिंता प्रतिक्रिया के बीजों को खाद पानी देती रहती है। क्रिया और प्रतिक्रिया के ये दो तत्व हैं। मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, उसका क्रिया तंत्र निरंतर चलता रहता है। एक क्रिया दूसरी क्रिया को जन्म देती है और दूसरी तीसरी को। इस प्रकार वातावरण प्रभावित हो जाता है। सरोवर में एक ढेला फेंका गया, उससे पानी में तरंग उठी, उसने दूसरी तरंग पैदा की। इस प्रकार तरंग लहर पर लहर समूचा सरोवर तरंगाकुल हो उठा, चंचल हो उठा। हमारे जीवन में भी कोई अनुकूल प्रतिकूल घटना घटित होती है, चित्त का तालाब क्षुब्ध और तरंगित हो उठता है। ये तरंगे चेतना की निर्मलता और शांति को खंडित करती हैं। यहाँ से मानसिक, स्नायविक, मांसपेशी और भावनात्मक तनावों का सिलसिला चालू हो जाता है। प्रत्येक घटना को साक्षी भाव और उपेक्षा भाव से देखने वाला व्यक्ति घटना को देखेगा, उससे जुड़ेगा नहीं। वे क्रियाएं व्यवहार केवल घटित होंगी पर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क को नहीं छुएंगी, इससे मन चिंताग्रस्त नहीं होगा। इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में संतुलन रखकर आशंका और भय को दूर कर और प्रतिक्रियाओं से बचकर हम अपने जीवन को तनाव मुक्त रख सकते हैं।
0: ये था आज का चिंतन। आरेख और स्वर था साध्वी सुमन श्री का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन।

पुण्यात्मा काकभुशुंडी से श्री रामचरित मानस तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनकर गरुड़ कृतकृत्य हो गए। अब उनके इस आश्रम से विदा होने की घड़ी आ पहुंची थी, किंतु विदा होने से पहले वे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहते थे। ये 7 प्रश्न थे। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? संत और असंत का भेद, सबसे महान पुण्य, सबसे भयंकर पाप और मानस रोग कौन से हैं? काकभुशुंडी ने उत्तर दिए, सबसे दुर्लभ मानव शरीर है और अभागे हैं वे जो इसे पाकर हरि भजन नहीं करते। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। संत मिलन के समान अन्य सुख नहीं है। संत परोपकार करते हुए दुख स्वीकार कर लेते हैं और असंत दूसरों को दुख देने में सुख का अनुभव करते हैं। वेदों ने अहिंसा को परम धर्म अर्थात सबसे महान पुण्य बताया है और पर निंदा को घोर पाप। सभी प्रकार के मानस रोगों की जड़ है मोह अथवा अज्ञान, क्योंकि इसी से

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। गायक स्वर था अनुराधा पोडवाल का, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी जगदलपुर है। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है ऋषि सामी की बेड़ा खड़ा चौगोट।
1: खेतीहर दादा दीदी मन, असन तो आमी रोजी दिना खेती किसानी अरु बेड़ा खाड़ा चो नंगत वाट मन के सांगते रहूं से। मांतर दादा दीदी मन कसनी वाट रले बले नंगत खेती कमानी चो समान बोलू बे जोन यंत्र होए से अरु मशीन मन नी रलो ने आम के खेती कमानी काजे बले खूबे अड़नाप हुआ है। अरु ऐचे काजे आमी कमानी करूक नहीं सकूं। जोन किसान मन लगे ये समान अरु मशीन आसे जाले हुन मन नंगत कमानी करूक सकोत। मांतर आम के ये खेती कमानी चो जोन समान होय से अरु मशीन होय से एमन के कसन दखा रखा करतो राय आजी मैं तुमके सांगे से। पहिल होय से जुताई करतो यंत्र जोन मशीन आए। जुताई करतो काजे आगर करुन देशी नांगर लोहा चो माटी पलटतो नांगर अरु कल्टीवेटर चो उपयोग हुआ है। देशी नांगर तो लकड़ी चो बने से अरु सोजे फार लोहा चो रहुआ है। जुताई बेरा फार के पजौन भांति नांगर ने पिंधातो राय आरु जुतई चो काम सर ले फार आरु नांगर के अच्छा धोन भांति सफाई करतो राय। आरु नांगर चो काम सर ले फार के निकराउन नंगत तेल लगाउन भांति ओल आरु लेहरा ले बचाउन भांति संगातो राय। आरु नांगर के असन ठान ने संगातो राय जोन लगे ओरमा आरु धुरला माटी नी लागुक सको। संगे संगे उन्नत जुतई करतो मशीन जसन की ट्रैक्टर चो नांगर होय से माटी पलटतो नांगर कल्टीवेटर हैरो पडलर ए मन के नंगत संगातो काजे ध्यान देतो गोठ होय से पहिल उपयोग करलो पाछे नांगर आरु मशीन के नंगत धोन सफाई करतो राय। मशीन चो सपाय नट बोल्ट के नंगत कसुन संगातो राय आरु हुता तेल नहाले ग्रीस लगाते रहतो राय। कोनी बले भाग टूटलो किरका होलो असनासे जाले हुनके तुरते नंगत बनातो राय। मशीन के आरु लोहा चो सामान के खुला ठाने नि संगातो राय। पानी बरसाले मशीन ने झपके जंग धरुआ आरु एचे काजे आम के समया समया ने मशीन के पेंट लगाते रहतो राय। बुनई करतो मशीन के बीज बुनलो नहाले रोपलो पाछे नगद धोन तेल लगाउन संगातो राय। संगे संगे खत देतो जन डब्बा होय से मशीन होय से ए मन के नगद सफाई करुन आरु पानी ले धोन भाती संगातो राय। उपयोग नीरलो बेरा पानी चो पाइप के निकराउन भाती छाए ठान ने संगातो राय। नहाले घाम ने पाइप फूटन जाऊआ है। मोटर पंप के पानी नी रलो बेरा आगर समयाले नी चलातो राय। नहाले काय होय से मशीन भीतर चो भाग झपके नसुआ है।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामी की बेड़ा खड़ा चौगोट। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हुलहुली। इसमें आज आप सुनेंगे दंतेश्वरी आया पाड़। कलाकार हैं गणपति कड़ियारी और साथी।

कार्यक्रम हुलहुली में अभी आप सुन रहे थे दंतेश्वरी आयापाड़, कलाकार थे गणपति कड़ियारी और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण। आज सुबह 8:30 पर इनसे मिलिए, सुबह 9:55 पर और 11:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एकांश। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर होगा हमारा कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसमें आज आप सुनेंगे आज की अतिथि, विषय होगा उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य। इस विषय पर डॉक्टर राजीव गुहे से भेंट करता होंगी बबीता दीवान और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 9:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से के तहत आज आप सुनेंगे फिल्म दिल है तुम्हारा के गीत। आज सुबह 10:00 कार्यक्रम गुलशन में आप सुनेंगे मेरी पसंद के गीत। सुबह 10:30 पर होगा कार्यक्रम गुड़दुम, इसमें सुनिएगा शिवराम नाग और साथियों का गाया हलमी लोक गीत। आज सुबह 11:00 कार्यक्रम एक ही कलाकार, केंद्रित होगा गीतकार योगेश पर। सुबह 11:30 पर कार्यक्रम रुसरुसा में आप सुनेंगे लोक गाथा चंद्रकांत राजा, गायिका होंगी शांति और साथी। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे लोक साहित्य पत्रिका का कार्यक्रम मूचो माटी। दोपहर 12:30 पर होगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर दुवार। 1:05 पर कृषि समय की बिड़ा खड़ा चुगोट का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कला और कलाकार। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:05 पर होगा समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। 5:10 पर आप सुनेंगे युववाणी हलमी में। शाम 6:35 पर आप सुनेंगे भीमसन बघेल और साथियों का गाया भत्री नाट गीत। शाम 7:00 होगा कार्यक्रम बस्तर के स्वर। शाम 7:21 पर होगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगांव। आज रात 8:00 कार्यक्रम घलर में आप सुनेंगे सिरधर और साथियों का गाया हल्पी गीत। आज रात 8:30 पर पिलामन काजी गोट में विषय होगा महाराणा प्रताप, प्रस्तुति होगी रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर की। रात 9:15 पर होगा कार्यक्रम नंजर, इसमें आज आप सुनेंगे बोहरानी परंपरा विषय पर मंथर राम नाग से भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। आज रात 9:30 पर कार्यक्रम खेल पत्रिका में जूडो और कराटे खिलाड़ी नमिता बघेल से भेंटवार्ता, भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात 10:00 होगा फोन इन कार्यक्रम लोकरस, प्रस्तुति होगी सुखचंद मंडावी की, संयोजन होगा चंद्र ऋषि ठाकुर का। ये थी हमारी आज की सभी सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी जगदलपुर है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्दझाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने जनजातीय प्रतिनिधिभिः सह मिलितवान्। ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य जनजातीय सुरक्षा कल्याण मञ्चस्य विषये सामाजिक संचार माध्यमेन श्रीमोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समुदायं प्रति तस्य समर्पणं यथार्थतया प्रशंसनीयम्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः पुनरेकदा अवैध प्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दृढतया प्रतिपादितवान्। गतवासरे गुजराते गांधीनगरे चत्वारिंशदधिक त्रिशत कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां सम्बोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः शासनेन एक सप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षाबलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमन्त्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनि ओलम्पिक क्रीडानां कॉमनवेल्थ क्रीडानां विश्वरक्षक क्रीडानां अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः, अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमारक्षक दलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदाय एवं उक्तवती। तया राज्ये विधि व्यवस्थायाः पालने सहैव आपत प्रबंधने सिक्किमारक्षक दलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य एकत्रिंशत् दिनांक पर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरल राज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इत्येतस्य संस्थानस्य 45 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विक समारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय बीडीटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयन्त्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिक रूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिक रूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतन मुख्यमन्त्रिणः पदभार ग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां 36 विधायकानां समर्थनेन कांग्रेस दलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तर पश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेषु अतिताप घटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

श्रोताओं, हर वर्ष 29 मई यानी आज के दिन को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की अद्वितीय साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मानित करना। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2002 में पारित प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। 29 मई की तारीख तय करने का मुख्य कारण ये है कि सन 1948 में इसी दिन फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन UNTSO के रूप में पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन ने अपना कार्य शुरू किया था। इस मिशन में काम करने वाले शांति सैनिकों को ब्लू बैरेट या ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये हल्के नीले रंग की टोपी या हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। इन सैनिकों, पुलिस अधिकारियों और नागरिकों को दुनिया भर के देशों द्वारा स्वेच्छा से चयनित करने की प्रक्रिया होती है। सन 1948 से अब तक लगभग 20 लाख

में हुई और इसने अपने पहले मिशन में ही सन 1948 में हुए इसराइल युद्ध और अरब युद्ध के दौरान युद्ध विराम का पालन करवाने में अहम भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना देशों को संघर्ष से शांति के कठिन रास्ते पर लाने में सहायता करती है। भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य योगदान देने वाले सबसे बड़े देशों में से एक रहा है। श्रोताओं, आज मौजूदा हालातों में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देशों और अन्य देशों में ताकत, अहम और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इन सब का घातक परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। महंगाई, मारामारी, जनधन की अपार हानि, बंदूक, तोपों, बारूदों के ढेर से दुनिया दहल गई है। मासूम इंसानों, जो जंतुओं के खून से धरती लाल हो चुकी है। बारूदी विस्फोटों ने, बमबारी ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। आज ऐसे जंग के माहौल में आवश्यकता इस बात की है कि संपूर्ण मानवता के हित के लिए युद्ध छोड़कर शांति और अमन का रास्ता अपनाया जाए, नहीं तो नफरत और वर्चस्व की आग में दुनिया झुलसकर तबाह हो जाएगी।

0: इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स यानी शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आइए हम सभी प्रण करें कि मानवता के हित में हम शांति और अमन का संदेश फैलाएंगे और वैश्विक शांति की दिशा में काम करेंगे।
1: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
2: पवन के ठंडे झोंके के साथ
1: हिलोरे लेगी
2: आकाश की वाणी।
1: आकाशवाणी
3: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर
1: या फोन करें 222150 या 222400
2: 222150 या 222400।
4: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
5: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
6: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
5: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
7: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
8: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
9: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
10: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर और इसमें बढ़ चलते हैं अगले कार्यक्रम आज के अतिथि की ओर। इसमें सुनिए उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य, इस विषय पर डॉक्टर राजीव गुहे से भेंटवार्ता। भेंट करता है बबीता दीवान।
11: प्रिय श्रोताओं, आप सभी को बबीता दीवान का नमस्कार। दोस्तों, आज की बातचीत के लिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजीव गुहे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर राजीव गुहे जी विगत 40 वर्षों से उच्च शिक्षा विभाग को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वर्तमान में वे 4 महाविद्यालयों के प्राचार्य का दायित्व निभा रहे हैं। डॉक्टर गुहे ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के उपरांत अप्लाइड जियोलॉजी में अपनी एमटेक की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन ऑफ छत्तीसगढ़ बेसिन पर अपनी पीएचडी पूरी की। डॉक्टर गुहे ने 3 लोगों को पीएचडी में मार्गदर्शन प्रदान किया। डॉक्टर गुहे ने 1984 से लेकर 2024 तक विभिन्न महाविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। 15 जनवरी 2025 को इन्होंने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया। स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय के अलावा 3 अन्य महाविद्यालयों के प्राचार्य का प्रभार भी वर्तमान में डॉक्टर गुहे के पास ही है। तो आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। डॉक्टर गुहे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
12: धन्यवाद।
11: तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को यह बताइए कि वर्तमान में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय के अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस का प्रिंसिपल का दायित्व आपके पास है?
12: जी मैडम, मैं ये बताने के पहले, क्योंकि आपने तो अभी बताया ही है कि मैं 4 महाविद्यालयों का चार्ज है मेरे पास
11: जी,
12: मैं इसके थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। जब प्रमोशन हुआ और मुझे चॉइस के लिए पूछा गया, तो मैंने उच्च शिक्षा के जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास जाके अपनी इच्छा जाहिर की कि मैंने पूरी जिंदगी जो नौकरी है अपनी, वो सेवाएं मैंने रायपुर में ही दी हैं, तो अब मैं चाहूंगा कि मैं जगदलपुर जैसे ट्राइबल एरिया में जाऊं और अपनी सेवाएं दूं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा जो बचपना है, मेरी बचपन की यादें जगदलपुर से जुड़ी हुई हैं, तो मैंने ये चॉइस किया। और यहाँ जब मैंने आया तो मुझे एक कॉलेज दिया गया था जो कि जैसा कि आपने बताया
11: जी,
12: स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शासकीय आदर्श महाविद्यालय धर्मपुरा
11: जी हाँ।
12: इसके बाद मुझे 1 महीने के बाद मुझे वहां से फोन आया कि आपको 2 और कॉलेज की जिम्मेदारी दी जा रही है, तो जिसमें शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय महिला महाविद्यालय
11: हाँ।
12: और एक संगीत महाविद्यालय भी है जो कि मर्ज कर दिया गया है, लेकिन वो भी उसका सेटअप भी इस कॉलेज के साथ मुझे दिया गया है
11: जी हाँ।
12: और इसके अलावा लोहांडीगुड़ा का नवीन महाविद्यालय है और वह भी मुझे दिया गया है। तो इस प्रकार 4 महाविद्यालयों का चार्ज मेरे पास है
11: जी। ये कितनी खुशी की बात है डॉक्टर राजीव की। लोग आना नहीं चाहते बस्तर, अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जंगल होगा और मुख्य नगरों से बहुत दूर होगा, तो अक्सर लोग रायपुर जैसी जगह से यहाँ आने को उत्सुक नहीं होते हैं। लेकिन ये कितनी खुशी की बात है कि आपने यहाँ आना सहर्ष स्वीकार किया है। डॉक्टर राजीव, मैं ये जानना चाहूंगी कि आमतौर पर लोगों की ये धारणा होती है कि जो महाविद्यालय हैं वो छात्रों को केवल किताबी ज्ञान और केवल औपचारिक शिक्षा देते हैं, आप इस बारे में बताइए कि ये धारणा कहाँ तक सच है?
12: मैडम दीवान, सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं हम देते हैं, बल्कि हमारे महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापकों द्वारा छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व और सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास रहते हैं। महाविद्यालयों में अनेक प्रकार की एक्स्ट्रा गतिविधियां, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जिससे छात्रों के अंदर के जो उनके गुण हैं वो स्वतः बाहर निकलें, क्योंकि हर बच्चा एक प्रकार का नहीं होता। कुछ बच्चे खेलकूद में ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बोलते कम हैं लेकिन उनमें कला बहुत ज्यादा होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सटेम्पो जो बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम रंगोली प्रतियोगिता है और चित्रकला प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, इस प्रकार से वाद विवाद, ताकि उसमें बच्चे अपने अपने रुचि के हिसाब से अलग अलग फील्ड में आए। तो केवल शिक्षा नहीं, हम सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं।
11: आमतौर पर ये धारणा है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और हम ये सोचते हैं कि अगर कोई निर्धन है और वो पढ़ना चाहता है, ऊंची शिक्षा हासिल करना चाहता है, तो शायद वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है?
12: मैडम दीवान, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही ऐसा नहीं है, क्योंकि शासकीय महाविद्यालयों में जो फीस है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विशेषकर ये अपना ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइबल एरिया के जो छात्र हैं उनके लिए शासन के द्वारा विभिन्न स्कॉलरशिप्स हैं जो कि छात्र उसको लेके पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पैसे का कोई ऐसा हर्डल नहीं आता है।
11: आज के युग में पैसों की कोई ऐसी समस्या नहीं है कि अगर बच्चे टैलेंटेड हैं तो सरकार उन्हें तमाम सुविधाएं महाविद्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराती है। तो ये बात हमारे श्रोताओं के लिए बहुत लाभप्रद होगी, वो सुन रहे होंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे होंगे जो आगे पढ़ना चाहते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो पैसों की कमी कोई समस्या नहीं है, वो तरह तरह की स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं और अपनी ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर राजीव, जैसा कि हमने सुना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और उच्च शिक्षा के परिदृश्य बदल गए हैं, पहले उच्च शिक्षा जैसी थी वैसे अब नहीं रही, उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो आप थोड़ा सा उन बदलावों के बारे में बताना चाहेंगे?
12: हाँ बिल्कुल मैडम, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले के समय में 3 ईयर्स डिग्री होती थी और 2 वर्ष का पीजी का होता था, इस प्रकार से 5 वर्षीय पाठ्यक्रम था और वो एनुअल एग्जाम होता था। लेकिन अभी नई शिक्षा नीति जो आई है 2020, उसके अंतर्गत सेमेस्टर सिस्टम है और 4 वर्षों में डिग्री दी जाती है। तो इसमें यह भी है कि यदि छात्र बीच में छोड़ के जाता है तो प्रथम वर्ष के बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष के बाद उसको डिप्लोमा दिया जाएगा,
11: अच्छा।
12: और तृतीय वर्ष के बाद उसको डिग्री दी जाएगी,
11: अच्छा।
12: और यदि बच्चे का अच्छा परसेंटेज है तो वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेगा, MSc करेगा, और उसके बाद यदि उसमें 75% से ज्यादा उसका यदि आता है तो ऐसे बच्चों को ही शोध कार्य के लिए आगे पढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किया।
11: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पहले जैसे 3 वर्ष का स्नातक का कोर्स होता था, अगर बच्चा बीच में ही वो छोड़कर चला जाता है तो उसे नुकसान होता था। अगर उसने सेकंड ईयर की पढ़ाई की और वो कॉलेज छोड़कर चला गया तो उसके 2 साल तो वेस्ट हो गए। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर बच्चा 1 साल पढ़ लेता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, और अगर वो 2 साल पढ़ लेता है तो उसे डिप्लोमा मिल जाता है, और अगर वो 3 साल तक पढ़ लेता है तो वो डिग्री हासिल कर लेता है, अगर वो 4 साल तक भी पढ़ लेता है तो उसे आपने क्या बताया अभी
12: वो शोध कार्य के
11: शोध लिए ऑनर्स मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बीच में छोड़कर भी जा सकते हैं, और मैंने सुना है कि वो वापस भी आ सकते हैं।
12: बिल्कुल
11: जी,
12: वापस
11: तो
12: भी आ सकते
11: अगर
12: हैं।
11: वो 1-2 साल उनका नुकसान कहीं हो गया, कहीं बीमार पड़ गए,
12: हाँ।
11: या कहीं किसी नौकरी में चले गए, तो वो वापस आकर
12: के वो अपने कोर्सेज को पूरा कर सकते
11: हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, ये बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, काफी लोच है। और मैंने सुना है कि विषय की भी बड़ी इसमें आजादी है,
12: स्वतंत्रता
11: है।
12: बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा
11: हाँ।
12: कि इसमें ये नई शिक्षा नीति में GE करके एक ऑप्शन है, जिसमें यदि विज्ञान का छात्र है और वो यदि कॉमर्स या कंप्यूटर साइंस या दूसरा विषय पढ़ना चाहता है तो वो इसके अंतर्गत उन विषयों को ऑप्ट कर सकता है।
11: अगर कोई कला का छात्र है और वो अगर कोई दूसरा फैकल्टी लेना चाहे,
12: बिल्कुल, कला का छात्र है वो विज्ञान पढ़ना चाहे तो वो ले सकता है,
11: एक विषय वो चुन सकता है। मतलब जो छात्र है वो अपने मुख्य विषयों के साथ एक अतिरिक्त विषय किसी दूसरी फैकल्टी का भी ले सकता है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो कॉमर्स का कोई एक सब्जेक्ट ले सकता है।
12: बिल्कुल।
11: अगर कोई होम साइंस का छात्र है तो वह कला का कोई विषय ले सकता है।
12: ले सकता है।
11: इसका मतलब अपनी फैकल्टी के अलावा वो दूसरी फैकल्टी का भी विषय पढ़ने को स्वतंत्र हैं।
12: बिल्कुल।
11: तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो डॉक्टर साहब, अक्सर हमारे देश में शिक्षा नीति के बारे में ये बात होती थी कि हमारी शिक्षा नीति जो है वो बेरोजगार पैदा करती है, मतलब वो केवल ग्रेजुएट पैदा करती है जो बेरोजगारों की लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं और उनके पास करने को कुछ नहीं होता, वो सरकारी नौकरी का रास्ता देखते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी तो कम ही लोगों को नसीब होती है, बाकी के लोग बेरोजगारी का सामना करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस प्रकार से अपने पैरों पर खड़ा होने में छात्रों की मदद करेगी।
12: हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं इसमें कहना चाहूँगा, जो नई शिक्षा नीति है उसमें वैल्यू एडेड कोर्सेस करके ऑप्शन है, जिसके अंतर्गत रोजगार से संबंधित आप यदि कोई जिसको हम स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस कहते हैं, तो उसके अंतर्गत वो बच्चों को क्या होता है कि क्लासरूम से बाहर निकाल के लोकल जो आपका शहर है उसके कोई उद्योगपति हैं उनके वहाँ उनको लेके जाया जाता है और बच्चे अपनी रुचि के हिसाब से उसको, क्योंकि क्या होता है कि कोई चीज़ को हम पढ़ के नहीं देख के समझते हैं। हाँ। तो बच्चा वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देख लेगा और वो करने के बाद उसके मन में ये बात आए कि मैं इसको अपना व्यवसाय बना सकता हूँ, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैंने देखा है, चूंकि मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं अभी प्रोफेसर था, अभी प्रिंसिपल हुआ हूँ, तो जब मैं प्रोफेसर था मैं भूविज्ञान विषय का प्रोफेसर
11: जी
12: हूं।
11: जी हाँ।
12: और वहां मैंने देखा कि बच्चों को जो ट्रेनिंग कराई गई, तो वो हमने उस समय मैं साइंस कॉलेज में था तो एनआईटी में बच्चों को भेजा गया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ट्रेनिंग दी गई बीएससी के बच्चों को, जबकि बीएससी में पहले नहीं था
11: जी।
12: तो मैंने देखा, अच्छा इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल ही होता है, रिटर्न कोई एग्जाम नहीं होता। तो बच्चों ने इतना अच्छा उसका रिपोर्ट बनाई और इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, तो वहाँ जो जितने लोग बैठे थे तो वहाँ हमें महसूस हुआ कि ये जो हम स्किल एनहांसमेंट का ऐड किए हैं, ये बच्चों को कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में अपने रोजगार के लिए अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार कर रहा है।
11: तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें अब बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी बच्चे जिस प्रकार की योग्यता रखते हैं, जिस प्रकार का टैलेंट उनके अंदर है, जिस तरह की काबिलियत या रुचि उनके अंदर है, वो उस अनुसार से अपना कुछ स्किल डेवलप कर सकते हैं और आगे चल करके अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में बेरोजगारी हमारे देश में कम होगी और सभी लोग आत्मनिर्भर होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। डॉक्टर राजीव गोहे जी, आप अपनी कुछ हॉबीज के बारे में बताना चाहेंगे? आपकी पर्सनल हॉबीज क्या है? आप फुर्सत के क्षणों में क्या करना पसंद करते हैं?
12: देखिए, मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं और फुर्सत के क्षण में मैं केवल ये देखता हूं कि हम कुछ ऐसा क्या करें कि पर्यावरण को हम संरक्षित करें, क्योंकि मैं भूविज्ञान का छात्र भी रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं कि जगदलपुर शहर में जब मैं आया अभी, तो मैंने देखा कि यहाँ आसपास बहुत ज़्यादा कचरे को जलाया जाता है। तो मैंने यहाँ महापौर जी से भी मिला था जाके और मैंने कहा कि ये जितने भी सूखे पत्ते हैं इनको जलाने के बजाय यदि हम इनका खाद बना दिया जाए इनके लिए, तो मैंने एक छोटा सा प्रयोग भी किया। तो खाली समय में मैं ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहता हूं और मैं जनता को भी ये कहना चाहता हूं, जगदलपुर शहर के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि हम अपने आसपास की गंदगी यदि है तो उसको साफ करने के बजाय उसको इस प्रकार से करें कि रिसाइकल करें, ताकि वो जलाने में जो वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वो न करके हम कंस्ट्रक्टिव काम करें। तो खाली समय में मेरा यही हॉबी है कि मैं जगह जगह जाके देखता हूँ कि कहीं अपन
11: तो
12: क्या
11: आपको
12: अच्छा कर सकते
11: अपने पर्यावरण से बहुत लगाव है,
12: बहुत ज्यादा,
11: और आप चाहते हैं कि हरियाली रहे और पर्यावरण शुद्ध रहे, प्रदूषण कम से कम हो। डॉक्टर साहब, चूंकि अब समय हो चला है तो बस अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि एक प्राचार्य होने के नाते आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
12: हम बस ये कहना चाहेंगे, जिनके बच्चे स्कूल पढ़ के निकल रहे हैं तो उनसे हम निवेदन करेंगे कि उच्च शिक्षा में शासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं, तो आइए कॉलेज में पढ़िए और आगे बढ़िए। तो यही मेरा संदेश रहेगा। और जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा, अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे कि बच्चे थोड़ा सा अटेंडेंस कम हो जाती है, तो उनके पेरेंट्स को बुला के उनको लेटर लिख के उनको बताया जाता है कि कम से कम बच्चों को भेजिए, ताकि चूंकि सेमेस्टर सिस्टम है, साल भर पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं और परीक्षा देते हैं,
11: तो मतलब वो, कहने का अर्थ यह है कि आमतौर पे जब बच्चे कॉलेज जाते हैं तो वो क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, क्योंकि स्कूलों में तो डिसिप्लिन होता है, स्कूलों में बच्चे क्लास में डेली जाकर बैठते हैं,

0: लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कॉलेज आने के बाद उनको एक स्वतंत्रता मिल गई है, नई नई आजादी मिली होती है, तो बच्चे अक्सर बंक मारते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो ये प्रवृत्ति जो है रोकने के लिए, हालांकि नियम रहता है कॉलेजेस में कि 75% अटेंडेंस,
1: वो समय समय पे हम नोटिस निकालते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए, फिर बच्चे आते भी हैं
0: जी। डॉक्टर गुहे, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बातचीत बहुत ही मजेदार रही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
2: उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजीव गुहे से भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थी बबीता दीवान। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर, और अब वक्त है मधुरिमा का, लेकिन इसके पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
2: और अब पेश है मधुरिमा।

दिल की बातों को आज कहना है हमें, दिल की बातों को आज कहना है हमें, धड़कन बन के तेरे दिल में रहना है हमें, कहीं रुक ना जाए ये मेरी सांसें, इसलिए हर पल तेरे साथ जीना है हमें।

आज मैं ये इजहार करता हूँ, आज मैं ये इजहार करता हूँ, जान भी तुझ पर निसार करता हूँ, बेहिसाब बेशुमार करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रभात, अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
3: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के

0: दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास

0: उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। इनसे मिलिए कार्यक्रम के तहत सुनते हैं विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण संरक्षण पर प्रोफेसर तरुण ठाकुर से रमाशंकर की बातचीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारी धरती, हमारी धरा, हमारी पृथ्वी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और धरा को हम माँ के समान मानते हैं, क्योंकि इस धरती से ही हमें जीने के लिए सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। श्रोताओं, जब हम अपने आसपास की बात करते हैं तो हमारा जो पर्यावरण है ये हमारे जीने के लिए हमें तत्व मुहैया कराते हैं और पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। श्रोताओं, पर्यावरण की सुरक्षा इसलिए भी करना आवश्यक है क्योंकि इस पर्यावरण पर ही हम निर्भर हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितने भी जीवित तत्व हैं उन्हें पर्यावरण पर ही निर्भर होना पड़ता है। और श्रोताओं, कई सालों से धरती का तापमान लगभग बढ़ता जा रहा है और इसका कारण और कोई नहीं, हमारी मानव गतिविधियां हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और श्रोताओं, इससे बचने के लिए कई उपाय भी किए जा रहे हैं, जागरूकताएं पैदा की जा रही हैं जिससे कि पर्यावरण का क्षरण ना हो सके। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य होता है लोगों में जागरूकता पैदा करना पर्यावरण के प्रति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझाने का भी दिवस होता है। तो श्रोताओं, पर्यावरण का संरक्षण क्यों जरूरी है, पर्यावरण कैसे प्रदूषित हो रही है और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है, इस बारे में आज जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर उपस्थित है प्रोफेसर तरुण कुमार ठाकुर जी, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में प्रोफेसर हैं। तो तरुण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद, धन्यवाद।
0: तो तरुण जी, सबसे पहले कार्यक्रम में तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे।
1: जी जी, नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से आप सभी को नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रोफेसर तरुण कुमार ठाकुर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ पर्यावरण विज्ञान विभाग में प्रोफेसर तथा छात्र कल्याण अधिष्ठाता के पद पर कार्यरत हूँ। मूलतः मैं मध्य प्रदेश मंडला के छोटे से गांव निवारी का रहने वाला हूं। बचपन से ही गांव की मिट्टी, जंगल और नर्मदा की धाराएं मेरे जीवन के सच्चे शिक्षक रहे हैं। शायद यही कारण है कि मैं पर्यावरण विज्ञान की ओर मेरा शोध क्षेत्र और झुकाव बना रहा है। पिछले 3 दशकों से मेरा अनुसंधान मुख्यतः 4 दिशाओं में चलता आ रहा है। पहला, रिमोट सेंसिंग एंड GIS तकनीक के माध्यम से जंगलों एवं वहां के भू उपयोग का अध्ययन करना। दूसरा, रेस्टोरेशन इकोलॉजी, पुनर्स्थापना पारिस्थितिकी पे अध्ययन करना, विशेषकर कोयला खदानों से क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्जीवन करना। तीसरा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, आजकल कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और हरित और विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस का मूल्यांकन करना और पौधों की सहायता से प्रदूषित जल और मिट्टी की शुद्धिकरण करना। ये मुख्यतः 4 बिंदु हैं जिसपे मैं और मेरी टीम इस पर अनुसंधान करती है।
0: जी जी जी जी तरुण जी, तो तरुण जी, जैसा कि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो इसके बारे में बताइए, इसकी शुरुआत कब हुई और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस की पहली औपचारिकता कहना चाहिए 1973 को मिली। इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक मीटिंग थी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। उन्होंने इसको चलाने के लिए बातचीत किया, लेकिन इसकी नींव 1 साल पहले 5 से 16 जून 2072 को के बीच स्वीडन में रखी गई। उसको इन्होंने कहा कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट है, जो मानव पर्यावरण पर सम्मेलन जो हुआ, उसमें 113 लोगों के देशों में इसमें सम्मिलित हुए। यह पहला अवसर था जब विश्व के सारे देश एक स्वर में स्वीकार किया कि पर्यावरण की रक्षा कोई भौगोलिक सीमाओं में बंधा विषय नहीं है, यह संपूर्ण मानवता का सामूहिक दायित्व है। उसी सम्मेलन की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया। अब प्रश्न उठता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक तीव्र औद्योगिकीकरण, जिसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन या केमिकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, अंधाधुंध उपयोग करना, जिससे हमारे पर्यावरण या प्राकृतिक प्रणालियां जो है वो असंतुलित हो गई या असंतुलित कर दिया। जितने हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे यूरोप के देश हो चाहे US हो, इन्होंने अंधाधुंध खनन का काम किया जिससे हमारी नदियों में रसायन का प्रदूषण का लेवल बढ़ गया, जंगल बेहताशा कटने लगे, डिफोरेस्टेशन हो गया तो ये सारे के सारे एक कारण है जिसकी वजह से हमको ये कहना पड़ा। और एक वैज्ञानिक रहे हैं अमेरिका के, रेचल कॉर्सन, उन्होंने अपनी बुक साइलेंट स्प्रिंग में लिखा है कि इतना कीटनाशक का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं कि एक दिन आएगा जिसको हम मौन बसंत मनाएंगे, जब पक्षियों के गीत भी, उनकी आवाज भी सुनाई देना बंद हो जाएगी। तो यही एक वैश्विक चेतना जागी कि विकास और विनाश के बीच की रेखा बहुत पतली है। विश्व पर्यावरण दिवस इसी आत्मंथन का एक प्रतीक है। एक दिन जब हम रुक कर सोचें कि पृथ्वी ने हमको क्या दिया और हमने उसको क्या लौटाया, तो यह केवल एक तारीख नहीं बल्कि वैश्विक चेतना का उत्सव है। तो यही कारण है जिसकी वजह से हमको इसकी आवश्यकता पड़ी।
0: जी तरुण जी, तो वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है?
1: देखिए, पाठ्य पुस्तक की भाषा में बात करें तो सीधा सीधा पहले कहा जाता था, या सभी गांव के लोग जानते हैं कि हमारे जो जल है, वायु है, भूमि है, किसी भी अवांछित पदार्थ यदि कोई ज्यादा मात्रा में जीवों के लिए हानिकारक हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो गया। लेकिन अब की जो सदी है, 21वीं सदी है, इसमें ये परिभाषा अधूरी सी लगती है। अब तो नया आयाम ये आ गया, इसमें काले धुएं, गंदे पानी की बात नहीं कर सकते, अब तो जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म प्लास्टिक है जिसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं, जो आंखों में दिखाई नहीं देती, वो देखा जाए तो हिमालय की जो बर्फ है उससे लेके समुद्र की गहराइयों तक, माँ के दूध से लेके मनुष्य के रक्त में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया जा रहा है। तो मैंने एक शोध भी किया था हमारी टीम ने, जो बड़े प्रतिष्ठित प्रकाशन भी हुई अंतर्राष्ट्रीय, उसमें ट्रेंड्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड वाटर जनरल, उसमें हमने ये दिखाया है कि सूक्ष्म प्लास्टिक है जो मृदा के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, पोषक चक्र होती है, उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक पाई जाती है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो ई वेस्ट हम बोलते हैं, जो पुराने मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पीसी है, भारी धातुओं के रूप में जितने मिट्टी को कहीं ना कहीं प्रदूषित कर रही है, ध्वनि प्रदूषण जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, लाइट पॉल्यूशन है जिससे आप देखेंगे पहले जुगनू रात में टमटमाते थे रात में, उल्लू, चमगादड़, इनके भी जीवन चक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। और थर्मल पॉल्यूशन जो ताप का प्रदूषण है, हमारे जल स्रोतों को चुनौती दे रहा है और कहीं ना कहीं वो श्रृंख होते जा रहे हैं। इसीलिए आज इसे प्रभावित करना, ये मानवीय गतिविधियों के कारण पारिस्थितिक तंत्र की उस संतुलित अवस्था में आया कोई भी ऐसा परिवर्तन जो वर्तमान या भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य, जैविक विविधता, जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करे, वही पर्यावरण प्रदूषण है। यदि हम संक्षेप में कहें तो प्रदूषण अब केवल भौतिक नहीं बल्कि रासायनिक, जैविक और यहाँ तक कि सूचनात्मक भी हो चुका है।
0: जी जी जी तरुण जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो तरुण जी, कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले हम चाहेंगे कि एक छोटा सा विराम ले और आपकी पसंद का एक गीत हम सुने।
1: जी जी जी, अभी हम गीत की बात करें तो जो एक गीत आप सभी ने सुना होगा, पहले भी 1957 की फिल्म आई थी नया दौर, एक प्रसिद्ध गीत था, साथी हाथ बढ़ाना।
0: जी जी तरुण जी, तो आइए सुनते हैं तरुण जी की पसंद का ये गीत।

0: इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे प्रोफेसर तरुण कुमार ठाकुर जी से, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में प्रोफेसर हैं। तरुण जी, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और हम पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे थे, चूंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए अभी 2026 के दौर की हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
1: जी जी, सटीक प्रश्न आज के समय के अनुसार और 2026 के परिच्छेद में हम जिस संकट के मुहाने पर खड़े हैं, वैज्ञानिक उसे ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस अर्थात त्रिआयामी ग्रहणीय संकट कहते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है और बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। ये तीन चीजों का संगम इसमें है, परंतु यदि किसी एक चिंता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो तो वह हम जलवायु परिवर्तन, जिसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, उससे जुड़े जो संवेदनशील बिंदु है, जहां से परिस्थिति क्षति को वापस लौटाना असंभव हो जाता है। यदि हम बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, मौसम विज्ञान संगठन की, उसकी नवीन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैश्विक तापमान जो है औद्योगिक काल पूर्व स्तर से लगभग 1.5 से 1.6 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच चुका है। पेरिस एग्रीमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो हमारी होती है, उसमें हमने ये कहा था पेरिस समझौते में कि 1.5 लक्ष्मण रेखा होगी, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हमारा टेम्परेचर 2030 तक नहीं जाना चाहिए। उसे हमने अभी 2025-6 में छू लिया है। तो हमारे अपने मध्य भारत में, यदि हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा की बात करें, तो पिछले कुछ वर्षों में असाधारण लू महसूस होती है, बेमौसम बरसात हो जाती है, लंबे काल तक शुष्क दिन देखने पड़ते हैं। ये सभी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है। हमने इसमें एक हमारी अपनी रिसर्च टीम ने एक अध्ययन किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है लैंड डिग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट एंड जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड इकोलॉजिकल इंडिकेटर, ऐसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में हमने प्रकाशित किया हमारे रिसर्च को, जो पिछले 30 वर्षों में हमने अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में किया है। तो उसमें ये पाया है हमने कि वर्षों से भूक्षरण और कार्बन उत्सर्जन बहुत तेजी से हुआ है और क्षेत्रीय जलवायु को सीधे प्रभावित कर रहा है। हमने अनूपपुर, शहडोल, कोरबा, बिलासपुर जैसे क्षेत्रों में सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के चित्रण, जमीनी सर्वेक्षण के माध्यम से प्रमाणित किया है कि भूक्षरण की वर्तमान दर अत्यंत चिंताजनक है, जिसमें हमारा फॉरेस्ट का एरिया भी धीरे धीरे कम हो रहा है और पॉल्यूशन का लेवल बढ़ते जा रहा है। इसके साथ ही वायु प्रदूषण भी एक बड़ी चिंता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत के अनेक नगर जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 होते हैं, इसके स्तर में सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में हमारे देश के महानगर हैं। प्रतिवर्ष इससे 16 लाख लोगों की असमय मृत्यु हो रही है। यदि हम तीसरी बड़ी चिंता करें तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वैज्ञानिकों का कहना है कि हम पृथ्वी पर छठे महाविलोपन, जो 6 मास एक्सटिंक्शन के दौर से गुजर रहे हैं, जो पहली बार किसी एक प्रजाति अर्थात मनुष्य के कारण हो रहा है। इसलिए 2026 की सबसे महत्वपूर्ण चिंता एक संकट नहीं बल्कि संकटों का संगम है और इनसे निपटना अब विकल्प नहीं अनिवार्यता बन चुका है। क्योंकि आने वाला समय, अभी टेम्परेचर हम देख रहे हैं तो दिनों दिन 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर तक कुछ जगह हो जा रहा है, तो अब इससे अनिवार्य रूप से हमको मिलकर आगे बढ़ना है।
0: जी जी जी तरुण जी, तो प्रोफेसर तरुण जी, जब हम बात करते हैं आधुनिकीकरण की, डेवलपमेंट की, तो विज्ञान और तकनीकी ने आज 2026 तक जो है काफी डेवलपमेंट कर लिया है वैश्विक स्तर पर देखें, क्या हम आधुनिकीकरण की होड़ में हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, और क्या विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके हम पर्यावरण के प्रदूषण को रोक भी सकते हैं?
1: जी जी जी, बहुत ही दार्शनिक प्रश्न है। मैं इसका उत्तर एक वाक्य से देना चाहूंगा। विज्ञान निरपेक्ष है, हमारी दृष्टि सापेक्ष है। विज्ञान और तकनीक स्वयं में ना तो दूषित है और ना ही पवित्र है। यह हम मनुष्य हैं जो अपने उद्देश्य और अपने जीवन शैली के अनुसार इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अब एक उदाहरण हम देंगे, अग्नि का आविष्कार मानव सभ्यता का आधार बना, परंतु वही अग्नि यदि जंगलों में लगा दी जाए तो पूरा फॉरेस्ट एरिया हमारा जल के राख कर देती है, पूरा विनाश कर देती है। यह सत्य है कि औद्योगिक क्रांति से लेकर आज तक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र हो हमारे, चाहे पेट्रोल डीजल वाहन हो, रासायनिक उद्योग हो, प्लास्टिक हो, इन सब ने प्रदूषण को बढ़ाया है। परंतु यह उतना भी सत्य है कि समस्याओं का समाधान भी साइंस और विज्ञान से ही निकले हैं। आज विज्ञान हमें सौर ऊर्जा प्रदान कर रही है, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी से हम अपना फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक दे रहे हैं, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस तकनीक के माध्यम से हम दूर दराज की चीजों की निगरानी, जांच पड़ताल और चीजों को अध्ययन कर रहे हैं। तो ये साइंस की ही देन है जो डेटा नीति निर्देशाओं को सही दिशा निर्देशित कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये सब हमारी कहीं ना कहीं विज्ञान की ही देन है। विज्ञान में ही हमने फाइटोरेमेडिएशन के माध्यम से शोध का कार्य किया है, जिसमें जो बच पौधे होते हैं हमारे, बच और केना, इनके माध्यम से हम जो एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो घरेलू सीवर होते हैं और भारूत जो धातु उसमें प्रदूषित जल का उपचार किया जाता है, तो ये विज्ञान के माध्यम से हम इसको हाथ मिलाकर सभी समस्या का सरलता से सस्ता और टिकाऊ इसका माध्यम निकल सकता है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा हमें विज्ञान से डरना नहीं है, उसे विवेक से सही दिशा देनी है और उसका एक पॉजिटिव वे में उसका उपयोग करना है। जब विज्ञान नैतिकता और परिस्थिति की संवेदनशीलता के साथ जुड़ता है तभी सस्टेनेबल साइंस अर्थात टिकाऊ विज्ञान का जन्म होता है और यही 21वीं सदी की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
0: जी जी जी तरुण जी, तो तरुण जी जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो इसमें जंगल जो है काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो जंगल मानव अस्तित्व के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं?
1: जंगल हमारे मानव इसके लिए हम बात करें तो एक प्रकार यदि प्रकृति को हम माने कि एक हमारा जीवित शरीर है, तो जो जंगल है हमारे वन है वो इसके फेफड़े हैं। जैसे कि अमरकंटक की धरती से आपका एग्जाम्पल देना चाहूंगा, यह प्रत्यक्ष अनुभूति हम यहाँ करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक हेक्टेयर जो लैंड होती है हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, वो 6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, बदले में हमें ऑक्सीजन या प्राणवायु देती है, प्रदान करती है। हमने इस पे बहुत रिसर्च भी किया पिछले 3 दशकों से। यदि हम बात करें अचानक मारा अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की, तो हम ये पाते हैं कि हमारे जो सूर्य रोबस्ट जिसको साल सरे का पेड़ बोलते हैं, सरे के पेड़ में 150 से 220 मैट्रिक टन कार्बन का स्टॉक होता है एक हेक्टर लैंड में। इसको हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी बोलते हैं, कार्बन स्टोरेज भी बोलते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारी सबसे सतत प्राकृतिक ढाल है। हमारे जो जंगल है, हमारे जो वन संपदा है, ये बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। इससे हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, पर्यावरण में जितने भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है उसको पेड़ पौधे के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु वनों का महत्व केवल कार्बन तक सीमित नहीं है, अपितु वन जल चक्र को भी संचालित करता है। यदि हम अमरकंटक की बात करें तो माँ नर्मदा, सोन, जोहिला, अरण्य, गायत्री, सावित्री, अमरावती जैसी नदियां अमरकंटक के वनों से जन्म लेती हैं। वन मिट्टी का क्षरण रोकती हैं, भूक्षरण का पुनर्भरण करती हैं, जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है उसको आश्रय देती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जो आदिवासी भाई बहनों का आजीवन का साधन है, संस्कृति है, उसकी अस्मिता का आधार है। अमरकंटक के आसपास मैंने ये देखा, स्वयं का देखा हुआ है कि यहाँ के जो जनजातीय समूह है, संपूर्ण जीवन दर्शन इनका जंगलों वनों से जुड़ा हुआ है। ये पेड़ पौधे के वन के केवल लकड़ी का स्रोत नहीं मानते, अपितु वह है माता है, गुरु है, चिकित्सक है, अन्नदाता है। जैसे महुआ, चिरौंजी, तेल, तेंदू वगैरह, आंवला, हर्रा, बहेरा, यहाँ पर जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं, ये इन्हीं पे इनकी लाइवलीहुड या जीविका रहती है। हमने ये भी पाया अपने अध्ययन में कि 72 प्रकार के औषधीय पौध जो वाइल्ड लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसको हमारे जो जनजातीय समुदाय के भाई बहन हैं वो उसको भोजन के रूप में और बड़े न्यूट्रिशियस होती है ये यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो वन जो है वो सभी के लिए, मानव अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वन बचाना केवल पर्यावरण रक्षा नहीं, यह सभ्यता रक्षा है, संस्कृति की रक्षा है और अंततः हमारी स्वयं की रक्षा है।
0: जी जी जी, धरती का तापमान हर साल बढ़ता जा रहा है, तो धरती का तापमान बढ़ना भविष्य के लिए क्या चुनौतियां लाने वाला है?
1: आने वाली पीढ़ी के लिए यदि धरती का तापमान ऐसे ही बढ़ेगा, जैसे मैंने IPCC जो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है उसकी रिपोर्ट बताती है हमको 2018 के अनुसार, 22 के अनुसार कि हमारा तापमान जिस गति से चल रहा है तो वैश्विक तापमान 2.5 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। सुनने में यह छोटा अंक लगता है परंतु इसके परिणाम बड़े भयावह होंगे। आज यह प्रश्न इस पीढ़ी से नहीं, हमारे बच्चे पोते की पीढ़ी से सीधा संबंध रखता है कि धरती का तापमान भविष्य के लिए क्या चुनौतियां लेके आएगा। हम यदि 2-3 चुनौतियां आपके सामने रखूं, हिमालय के ग्लेशियर का तीव्र गति से पिघलना, ग्लेशियर हमारे मेल्ट हो रहे हैं, तीसरा ध्रुव कहा जाता है ग्लेशियर को, यह गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सहित दक्षिण एशिया की लगभग सभी प्रमुख नदियों का स्रोत है। यदि ग्लेशियर तेजी से पिघले तो हमारे विनाशकारी बाढ़ आएगी और जितने भी आइलैंड छोटे छोटे हैं कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, जिससे जल संकट का गहरा प्रभाव पड़ जाएगा। दूसरी चुनौती की यदि बात करें, समुद्र स्तर में वृद्धि, जितने भी कोस्टल एरिया है और जो अर्बन सिटीज हैं, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, जैसे तटीय महानगर जैसे सुंदरबन जैसा वेटलैंड, संवेदनशील क्षेत्र, ये सब डूबने से खतरे का सामना करेंगे। यदि हम धरती का तापमान बढ़ने की तीसरी चुनौती की बात करें तो मानसून की अनिश्चितता, भारत की कृषि आज भी 50% से अधिक मानसून पर निर्भर है। हमारे शोध ने यह दर्शाया है कि मध्य भारत में मानसून के प्रतिरूप बदल रहे हैं, कहीं अल्प वर्षा तो कहीं अति वर्षा, असाधारण अतिवृष्टि, ये बेमौसम ओलावृष्टि, असाधारण सूखा, ये हमारी खाद्य सुरक्षा को कहीं ना कहीं सीधे चुनौती दे रही है। और अगली चुनौती हमारी है सार्वजनिक स्वास्थ्य की, बढ़ती गर्मी के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी एंसेफेलाइटिस जैसे रोगों का विस्तार उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां पहले नहीं देखा गया। और पांचवी चुनौती की मैं बात करूंगा, जैव विविधता की बायोडाइवर्सिटी लॉस है, जो क्लाइमेट रिफ्यूजी अर्थात जलवायु शरणार्थी है, वे लोग जो जलवायु के कारण अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक विश्व में 20 करोड़ से अधिक जलवायु शरणार्थी हो सकते हैं। परंतु मैं निराशा का संदेश नहीं देना चाहता, विज्ञान कहता है यदि हम अगले 10 से 15 वर्षों में निर्णायक कदम उठा लें तो स्थिति नियंत्रित की जा सकती है।
0: जी जी जी तरुण जी, तो तरुण जी जो अभी हम देखते हैं युवा भारत की जो है एक नई तस्वीर गढ़ने को तैयार है, तो युवाओं का जो है भागीदारी पर्यावरण के संरक्षण में होना चाहिए, तो आप किस तरह देखते हैं इसको, क्योंकि युवाओं का पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में क्या भागीदारी हो सकती है?
1: एक्चुअल हमारा जो देश है भविष्य ही नहीं, इसका सशक्त वर्तमान भी युवा है। हमारे देश में 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा मिले तो भारत न केवल अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है अपितु विश्व का मार्गदर्शन भी कर सकता है। 3 दशक के अध्ययन काल में मैंने स्पष्ट पाया अपने खुद के इससे कि संवेदनशील जो विद्यार्थी पर्यावरण को पढ़ लेता है, इससे जुड़ता है, वो आजीवन उसका रक्षक बन जाता है। मैं यदि अपने पर्यावरण विज्ञान विभाग की बात करूं तो यहाँ 7 से 10 PhD बच्चों ने उपाधि प्राप्त की है और वो आज देश के विभिन्न संस्थानों में पर्यावरण के दूत बनकर कार्य कर रहे हैं। और इसका यदि योगदान की बात करें तो जो हमारे युवा हैं वो पर्यावरण जागरूक और जन संवाद के लिए जो हम चेन रिएक्शन बोलते हैं, एक श्रृंखला अभिक्रिया कर सकते हैं, उस पर अपना योगदान दे सकते हैं, नवाचार और हरित उद्यमिता ला सकते हैं। जैसे माननीय जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ग्रीन स्टार्टअप, क्लीन टेक, एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हैं और वो इसमें कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, सौर समाधान, अपशिष्ट पदार्थ, जैविक उत्पाद जैसे विषयों पर ये काम कर सकते हैं। और तीसरा सिटीजन साइंस अर्थात नागरिक विज्ञान, आज मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी युवा, कोई भी यंग वायु गुणवत्ता, जैव विविधता, नदी स्वास्थ्य का डेटा एकत्र करके वैज्ञानिक अनुसंधान में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं अपने युवा साथियों से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, आपके हाथ में मात्र मोबाइल नहीं, पृथ्वी का भविष्य है। आप मात्र उपभोक्ता नहीं, संरक्षक हैं। आप जिस रील्स को बनाते हैं उसे प्रकृति के लिए भी बनाइए। एक पौधा लगाइए, एक नदी को गोद लीजिए, एक गांव को स्वच्छ बनाइए, फिर देखिए परिवर्तन कैसे आता है।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे प्रोफेसर

0: तरुण कुमार ठाकुर जी से। प्रोफेसर हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में, और बात कर रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो तरुण जी, कार्यक्रम में आज आपने जो जानकारी दी पर्यावरण संरक्षण के बारे में, जो बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।
0: इनसे मिले कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

इनसे मिलिए। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर,

0: विकसित किया है।
1: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
0: जी,
1: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातःकाल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
0: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी वो तो है।
0: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
0: जी
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल,
1: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
1: जी
0: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे की जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था।

0: वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
1: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
1: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
0: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
1: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
0: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
1: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
4: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
5: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
4: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
0: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
6: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और R.S. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव और FM बैंड पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
10: सुनो ना।
11: हाँ?
10: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
11: तो रोका किसने है? हाँ?
10: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
11: मुझसे।
10: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
11: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
10: पर उससे मेरा क्या फायदा?
11: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
10: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
11: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
10: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
9: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल है तुम्हारा के गीत।

फिल्म दिल है तुम्हारा 2002 में प्रदर्शित हुई हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म का निर्देशन किया कुंदन शाह ने।

फिल्म दिल है तुम्हारा के निर्माता हैं कुमार तौरानी और रमेश तौरानी। फिल्म की कहानी एक अमीर महिला सरिता यानी रेखा और उसकी दो बेटियों निम्मी यानी महिमा चौधरी और शालू यानी प्रीति जिंटा के इर्द गिर्द घूमती है। सरिता निम्मी से बहुत प्यार करती है, लेकिन शालू को सौतेली होने के कारण हमेशा अनदेखा करती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब शालू और देव यानी अर्जुन रामपाल एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। निम्मी को भी देव से मोहब्बत होती है। जब शालू को सच्चाई पता चलती है कि सरिता ने उसे अपनाया और वो अनाथ है, तो अपनी बहन और माता की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत का त्याग करने का फैसला लेती है। कई नाटकीय मोड़ के बाद कहानी का सुखद अंत होता है।

फिल्म के सभी गीतों की रचना की समीर ने, धुन तैयार की नदीम शबन ने। फिल्म के सभी गीत काफी लोकप्रिय रहे। फिल्म के गीतों को अपनी सुमधुर आवाजों से सजाया उदित नारायण, अलका याग्निक, शान, सारिका कपूर, तौसीफ अख्तर, कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम ने।

फिल्म दिल है तुम्हारा में मुख्य भूमिकाएं निभाई प्रीति जिंटा, महिमा चौधरी, अर्जुन रामपाल, जिमी शेरगिल और रेखा ने। इस फिल्म के लिए प्रीति जिंटा को स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नामांकित किया गया। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये आखिरी नगमा।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म दिल है तुम्हारा के गीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एकांश। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की मदर सैंक्शन जारी की गई। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए के अधिक की मदर सैंक्शन जारी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर गरीब को पक्का घर का संकल्प तेजी से पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सहायता से छत्तीसगढ़ के हजारों ग्रामीण परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र परिवारों तक योजना का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पर्यटन के जरिए देश में अपनी नई पहचान बनाएगा। रायपुर में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, जलप्रपात, जंगल और आदिवासी संस्कृति को दुनिया के सामने लाना सरकार का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। बैठक में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की इच्छा जताई। सार्वजनिक क्षेत्र में तेल कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। कंपनियों के अनुसार मई 2026 में राज्य में पेट्रोल की खुदरा बिक्री में 8% और डीजल की बिक्री में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। डीजल की मांग बढ़ने का मुख्य कारण कृषि गतिविधियां बताई गई हैं। तेल कंपनियों ने कहा है कि राज्य भर में पर्याप्त बफर स्टॉक सुरक्षित रूप से उपलब्ध है और ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है। लोगों से ये अपील की गई है कि वे घबराहट में अनावश्यक खरीदारी ना करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल रमेश डेका करेंगे। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले बीमित श्रमिकों के बच्चों के लिए मेडिकल शिक्षा में प्रवेश का सुनहरा अवसर मिला है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने देश भर के अपने 20 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए 700 सीटें आरक्षित की हैं। इन सीटों पर प्रवेश नीट यूजी परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 21 जून 2026 कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने के भी आसार है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि आज से अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। सुशासन तिहार 2026 के तहत मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के भंसूला में कल जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने महिला स्वसहायता समूह के उत्पादों के लिए मोहला ब्रांड का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शासन की पहली प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं तक का लाभ पहुंचाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत

छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की मदर सेंक्शन जारी की गई। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम गुलशन। आज इसमें आप सुनेंगे मेरी पसंद के गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हमको इश्क ने मारा का गीत, मनोहर शेट्टी और प्रीथा मजुमदार की आवाजों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आदेश श्रीवास्तव ने।

रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाज में पेश है फिल्म अनवर का गीत। गीत रचना सईद कादरी की, संगीत निर्देशन है मिथुन का।

कार्यक्रम गुलशन में आप सुन रहे हैं मेरी पसंद के गीत। कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पापा कहते हैं से उदित नारायण की आवाज में। गीत रचना है जावेद अख्तर की, संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का।

एस जानकी की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म सत्यमेव जयते का गीत। गीत है फारूक कैसर का, संगीत है बप्पी लहरी का।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म सलामी का गीत अलका याग्निक की आवाज में। गीत है सुरेंद्र साथी का, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मेरी पसंद अब समाप्त होता है। कार्यक्रम गुलशन में अभी आप सुन रहे थे मेरी पसंद के गीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं।
1: भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 से 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 से 4 तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: कार्यक्रम गुड़दुम में लीजिए सुनिए हल्बी लोकगीत। कलाकार हैं शिवराम नाग और साथी।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दू में आप सुन रहे थे शिवराम नाग और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
3: Come on boys, let's go practice.
4: अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया।
3: ये तो बैंक को कंप्लेन करना।
4: बैंक को लिखे एक महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं।
5: तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो।
6: रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सुनो ना।
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है।

0: जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
3: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, वे हर दौर में दिल की आवाज बनकर गूंजते रहते हैं। आज के एक ही कलाकार कार्यक्रम में बात उस गीतकार की, जिसने साधारण शब्दों में जीवन की गहरी भावनाएं पिरो दी। योगेश, जी हाँ, योगेश जिनका पूरा नाम है योगेश गौड़ और जिनकी आज पुण्यतिथि भी है। योगेश ने अपने जादुई कलम से हिंदी सिनेमा को और समृद्ध बनाया, उनके गीत आज भी जुबा पर होते हैं। कम उम्र में संघर्षों का सामना किया, फिल्मों में काम का सपना लेकर मुंबई पहुंचे, लेकिन शुरुआती दौर बेहद कठिन रहा। लंबे संघर्ष के बाद गीत लिखने का अवसर मिला और धीरे धीरे उनकी पहचान संवेदनशील और दिल को छू लेने वाले गीतकार के रूप में बनने लगी। लीजिए सुनिए उनका लिखा गीत फिल्म हनीमून से, स्वर आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों का, संगीत उषा खन्ना का।

श्रोता, योगेश की सबसे बड़ी विशेषता थी सरल भाषा में गहरी बात कहना। उनके गीतों में बनावट कम और भावनाओं की सच्चाई अधिक दिखाई देती है। उन्होंने प्रेम, अकेलापन, उम्मीद, जीवन दर्शन और रिश्तों को बेहद सहज शब्दों में पिरोया। यही कारण है कि उनके गीत सीधे श्रोताओं के दिल तक पहुंचते हैं। उनकी लेखनी में शोर नहीं बल्कि एक शांत संवेदना सुनाई देती है। लीजिए सुनिए उनके फिल्म मंजिल का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत आर डी बर्मन का।

योगेश के मुंबई में आरंभिक संघर्ष को मित्र और सहयोगी सत्यप्रकाश ने साथ दिया, जो उनके सलाहकार, प्रेरक और संकटमोचक रहे। मित्र के साथ चौल में गुजरा वक्त प्रेरणा का वरदान सा बन गया और वे कहानी, पटकथा, संवाद के बाद कविता और गीत लेखन की ओर उन्मुख हुए। लखनऊ का साहित्य, सांस्कृतिक सांचा और आत्मबल योगेश को कवि, गीतकार का रूप दे गया। उनका लिखा अगला गीत फिर मिली से, स्वर लता मंगेशकर का, संगीत एसडी बर्मन का।

गीत लेखन की तकनीकी मांगों से अपरिचित, पहली बार जब उन्होंने फिल्मकार रॉबिन बैनर्जी के पास काम मांगा तो उस समय संगीत की धुनों पर गीत लिखने का चलन था, जिससे योगेश अनजान थे। रॉबिन बैनर्जी उन दिनों फिल्म मासूम पर काम कर रहे थे और उन्होंने योगेश को फिल्म के लिए गीत लिखने को कहा। इस अनुभव ने उनकी काबिलियत को बढ़ा दिया। अब वह संगीत की धुनों पर गीत लिखने का कौशल समझ चुके थे। उन्हें काम मिला सखी रॉबिन में। तो लीजिए सुनिए उनकी पहली फिल्म सखी रॉबिन का गीत, जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे ने, संगीत रॉबिन बैनर्जी का।

योगेश ने कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। इस लिस्ट में सलील चौधरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आरडी बर्मन जैसे नामी संगीतकार शामिल हैं। लेकिन सलील चौधरी के साथ उनकी जोड़ी विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। दोनों ने मिलकर कई कालजयी गीत दिए। सलील चौधरी की फिल्म आनंद ने योगेश

0: इश्क को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जिंदगी कैसी है पहली, कहीं दूर जब दिन ढल जाए जैसे गीत, आज भी जीवन के गहरे दर्शन को व्यक्त करने वाले अमर गीत माने जाते हैं। उनके गीतों में संगीत और शब्दों का संतुलन इतना सुंदर होता था कि हर रचना आत्मा को छू जाती है। आज भी रेडियो, मंचों और संगीत प्रेमियों के बीच फिल्म आनंद का ये गीत समान रूप से लोकप्रिय है। तो लीजिए सुनिए फिल्म आनंद का यही गीत।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

फिल्म आनंद की सफलता से योगेश देश भर में विख्यात होकर सलील चौधरी के साथ अपने करियर की सफलतम यात्रा पर निकल पड़े। सलील चौधरी और योगेश ने आनंद के अलावा अनोखादान, अन्नदाता, रजनीगंधा जैसी फिल्मों में साथ काम किया। सलील दा की जलेबीदार कठिन संगीत धुनों के लिए गीत लिखना योगेश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। रजनीगंधा, फूल तुम्हारे, प्यास लिए मनवा जैसे गीतों में गीतकार की कविताएं निखर कर सामने आई और एक गीतकार कवि बन गया। लीजिए अब सुनिए फिल्म रजनीगंधा का ये प्यारा सा नगमा, जिसे स्वर दिया है मुकेश ने, संगीत सलील चौधरी का है।

योगेश को उनके उत्कृष्ट गीतों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और यश भारती पुरस्कार शामिल है। हालांकि वे चकाचौंध से दूर रहे, लेकिन संगीत जगत में उनकी लेखनी को हमेशा सम्मान मिला। योगेश का लिखा अगला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म बातों बातों में फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले और अमित कुमार की, संगीत राजेश रोशन का।

योगेश ने ये साबित किया कि गीत केवल तुकबंदी नहीं बल्कि संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होते हैं। आज के दौर में भी जब उनके गीत सुनाई देते हैं तो श्रोता एक अलग ही सुकून महसूस करता है। उनकी रचनाएं बताती हैं कि सरल शब्द भी गहरी छाप छोड़ सकते हैं। 29 मई 2020 को योगेश का निधन हो गया और फिल्म जगत का एक सितारा डूब गया। योगेश ने भले ही हम सबको अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनके गीत हमेशा हम सबके जेहन में रहेंगे और भारतीय फिल्म संगीत में योगेश का नाम हमेशा संवेदनशील और आत्मीय गीतकारों में लिया जाएगा। लीजिए अब सुनिए उनका लिखा और कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म छोटी सी बात से, स्वर लता मंगेशकर का, संगीत सलील चौधरी।

एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक और गीतकार योगेश के लिखे गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:30 बजे हैं। रुसरुसा में लीजिए सुनिए चंद्रकांत राजा का भाग 3। गायिका हैं शांति और साथी।

0: रुसरुसा में आप सुन रहे थे चंद्रकांत राजा का भाग तीन। गायिका थी शांति और साथी। लोकगाथा का अगला भाग आने वाले रविवार को प्रसारित किया जाएगा। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी रायपुर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की मदर सैंक्शन जारी की गई। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़

सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की मदर सैंक्शन जारी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर गरीब को पक्का घर का संकल्प तेजी से पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सहायता से छत्तीसगढ़ के हजारों ग्रामीण परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र परिवारों तक योजना का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की पुलिस ने आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली सूचना के आधार पर एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने गढ़चिरौली नारायणपुर सीमा के जंगलों में संचालित किए जा रहे माओवादियों के हथियार निर्माण केन्द्र से हथियार, विस्फोटक और शस्त्र निर्माण सामग्री बरामद किए हैं। इस दौरान बरामद कई माओवादी सामग्रियों को घटनास्थल पर ही नष्ट भी किया गया। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। यह प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण की चयन सूची 16 से 22 जून तक जारी की जाएगी। वहीं दूसरे चरण की चयन सूची 26 जून से 3 जुलाई और तीसरे चरण की चयन सूची 8 से 12 जुलाई तक जारी की जाएगी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। छत्तीसगढ़, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, बिहार, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन के दौरान मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। इस बीच आज से मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने के भी आसार हैं। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के हटरी बाजार स्थित एक कपड़े और मोबाइल की दुकान में बीती रात आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम जब आग बुझाने का प्रयास कर रही थी, इसी दौरान अचानक उस बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में नगर सेना का एक जवान घायल हो गया है। भिलाई के कोका स्थित मनसा कॉलेज में कल 30 मई से योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस शिविर में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी रामार्थ देव शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की मदर सैंक्शन जारी की गई। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी का।

0: रेडियो संतो भाई बहन मन आमी मचो माटी ए कार्यक्रम ने आपन मन के आमचो बस्तरचो कैक बोली मंचो कहानी कविता ठसा और बले भरन भरन चो जेनिस मन के आपन मन के सुनाव से जनाव से जेचोले आमचो बस्तरचो बोली मन के बचा तो काजे गाँव चो भाई बहन मन समझ दे जान दे आरो बचा तो काजे घर ने बले ए मन के बोल दे। तो सबले पहल अपन मन के सुनाओ से हल भी कविता पाठ कवियात रामाशंकर त्रिपाठी।
1: मुझे पहल कविता चो बोलू भे नाम आए बेड़ा चो लगानी। बानी बानी चो बूटा मंडान, बानी बानी चो बूटा मंडान, बानी बानी चो खत के लगान नंगत उपजास धरे से। बानी बानी चो बूटा मंडान, पानी बानी चो खत के लगा नंगत उपजास धरे से। पीला के स्कूल पटाले मशीन संगे अटार कर ले, एदा नंगत उपजास धरे से, एदा नंगत उपजास धरे से। हडरी हाटे बिकुन भाती पैसा झोके से, हडरी हाटे बिकुन भाती पैसा झोके से। डांडा संगे गुबी मीरी, डांडा संगे गुबी मीरी, कर्जा संगे खत फिरी। किसान क्रेडिट बना ले दादा, किसान क्रेडिट बना ले दादा, कमानी करुन कर्जा पटा ले। खोजाकारी चो मंचो, खोजाकारी चो मंचो, एदा उवाट धरे से। खोजाकारी चो मंचो, एदा उवाट धरे से। बेड़ा खड़ा ने एदा जुगे पैसा झोके से। बानी बानी चो बूटा मंडन, बानी बानी चो खत के लगा नंगा तू पचास धरे से। बेड़ा खड़ा चो गोट के धर ले, जैविक खेती संगे कर ले। बेड़ा खड़ा चो गोट के धर ले, जैविक खेती संगे कर ले। एदा कीड़ा कीड़ी लागत नाई, डोड़का तोड़ई चोरत नाई। एदा कीड़ा कीड़ी लागत नाई, डोड़का तोड़ई चोरत नाई। कुकड़ी चिमड़ी संगे पोसले और पोसले मछरी, कुकड़ी चिमड़ी संगे पोसले और पोसले मछरी। एदा बिहाव कर ले दादा, बाय ले आन ले पंडरी। एदा बिहाव कर ले दादा, बाय ले आन ले पंडरी। आया बाबा हरिक आसोत नाती नतरा संगे, आया बाबा हरिक आसोत नाती नतरा संगे। आमचो बेड़ा धर्म शाखा माय दंतेश्वर संगे, आमचो बेड़ा धर्म शाखा माय दंतेश्वरी संगे। लाफी लाफी डोबी मारले बीजा बिखरे नाई, लाफी लाफी डोबी मारले बीजा बिखरे नाई। बतर बेरा पाकली जमाय पानी मारी गला जाई। ठोसर ठोसर लाकड़ी कुमंडा लाम लाम जोंदरा मुनगा, ठोसर ठोसर लाकड़ी कुमंडा लाम लाम जोंदरा मुनगा। बायले पीला जमाय धरू से हडरी हाटे नंगत पैसा, बायले पीला जमाय धरू से हडरी हाटे नंगत पैसा। हडरी हाटे बिकुन नंगत पैसा धरे से। बेड़ा खोड़ा चो एदाय लगानी मैची हिटाय से, बेड़ा खड़ा चो एदाय लगानी मैची हिटाय से। दूसरा मुचो कविता आय किताब मोंडरा। पीला के पटावा जमाए लोग पड़ुक लिकुक लाए, पीला के पटावा जमाए पड़ुक लिकुक लाए। संगे संगे आया बाबा जहा सिकुक लाए, संगे संगे आया बाबा जहा सिकुक लाए। पीला पड़ुक सिकलो जाले काम आने दे भौरक, चिट्ठी पत्री लिखुन लिखुन साहब मन के हाग दे दे घरे। पढ़ुन लिखुन रले दादा, पढ़ुन लिखुन रले दादा, घरे कोनी ठगी नी होय हुनी काजे बोले दादा। सबके पटावा सिकुक लाए, सबके पटावा सिकुक लाए, सबके पटावा पड़ुक लाए। संगे संगे आया बाबा जहा पड़ुक लाए, संगे संगे आया बाबा जहा पड़ुक लाए। पीलाक पटावा जमाए लोग पड़ुक लिकुक लाए। गुड़ दुम दुम बाजा बाजली झीर लिटी बेरा, गुड़ दुम दुम बाजा बाजली झीर लिटी बेरा। आम चोपीला पड़ुन लिखुन कर लो देश चो सेवा, आम चोपीला पड़ुन लिखुन कर लो देश चो सेवा। सत धर्म चो काजे आमी जाऊं, सत धर्म चो काजे आमी जाऊं, जाऊं पड़ुक लिखुक लाए। आया बाबा जमाए जहा संगे सिकुक लाए। डोकरा सियान जमाए पड़ू बायले पीला जमाए पड़ू पड़ुन लिखुन आगे बढ़ू, डोकरा सियान जमाए पड़ू बायले पीला जमाए।

0: टीके सोचून विचारून सरकारले धरून कितरे समाजसेवक भले कोणी कोणी संस्था आऊर गाव मुखिया मन भले सामूहिक बिहाव बल्ले बिना दाइज बिना खर्चाचो कितरे जोड़ा सुंदर बिहाव मन कराते जासोत। ये सामूहिक बिहाव ने बले करले ए बाल बिहाव बले ऐसे बाल बिहाव के बले ए रोक तो काजे सरकार कितरो प्रकार चो प्रसार प्रचार करे से मानतर हुन बल नहीं रुक सके से हुनके तो सब समाज करतर लोग है समाज अपने आगे हुन भाती ले हुनके रोक तोर चाह ले तेबे हुन रुक सके से। दूसरा कुल चो जीवना जीव भर चो बांधना है आगे अपढ़ और कम पढ़ा लिखा भले लोग आप गांव गुड़ा ने रला मानतर ये भी तो गुलाय गांव ने गांव गुड़ान भले पढ़ते जासोत नानी नानी पीला भले ढोकरा पढ़ाई बल हो ऐसे और समझा सोत बले कितरो सरकार मन प्रचार प्रसार थान बले हुन मन के सांग सोत मानतर ते भी बले हुन कम नहीं हो ऐसे ने इतरो दाई ढोर चो चलन नहीं रली। आगे जुग ने कहा है अपन मन ने देवत और जितरो दिले के हुतरी ने होत ये भी तो नुआ ये भी तो मांग ऊपरे मांग कर सोत गाँव गवली ने बले ये भी गाँव मन ने बोले दायित्व चलन बढ़ते जाए से गाँवकारी भाई बहन मन सभी विचार करा कि दाई जाम चो समाज चो करिया दाग आए उन करिया दाग के गुचा तो काजे आम के सब के पूरे योग पड़े दे और हुन दाग के गुचा उगलागे दे एक एक जन बोले आपन आपन पूरे एते गए लेके तेबे आपने आप बेटी के नहीं दे तोर और बुहारी काजे नहीं आन तोर दाई तेबे हुन बीती कम पड़ते जाए दे और सपाय हो दे धर तोर दोनों अच्छा नुआए बेटी दे तोर बोले और धर तोर बोले आम चो गांव गुड़ा के अच्छा राख तो काजे और आम चो घर द्वार के निको राख तो काजे आम के दायित्व राखस के गुचा तो जरूरी आए एक करिया दाग के गुचा लेके तेबे आम चो सरकार बोले ये करे दे सागे दे सागे से हुन बोले ठीक होए दे और आम चो बोले भलाई होए दे सफाई
1: का। हाँ तो अपन मन सुनलास जानलास दहेज काय बीती आए कसन आमचो गांव ने बोले आमरे से मानतर रेडियो सुन तो भाई बहन मन एक आम के भूतात्राए आरु आमचो जौनपुर का पार्टी बेराले बिया शादी होते रहे हुन रुसुम के मानुन बाती आम के परिवार के गांव के पारा के हर एक उदिम ने संगातराए तो यदाएं सुना धुरवी ने कहानी सुनाए सोत श्रीमती मालती कश्यप
2: ती ती रेंदान बन गे काकाल का रेंदान रान गे मेंदुगे और आन ती के ओक काकाल और ओक उड़ूप मेंदुगे मेनोडे काकाल और उड़ूप निर्भय दुरुस संगे जोड़ी संगे संगे मेंदुगे ना तो भले दुख डांडे रोडोक दूसरों सहायता साजी उगे ओके सुरूप बन बितराम में यूंग सेंदागे रोजे मेयूंग सेंदान लकटी आ बनती एके ओक चलाक गोलीन बेटिया गे बेट तेरोड गोली गो उड़पिन चूड़ी निर्भय वेड़ का एर कट्ट गे हाँ एबे गो दुरुस्ता जियाद बेटेन एंदा गे आर उड़पिन डक कोड वेर्रा गे आरु पोकोमोगे एरारे अनुंग ई दुनिया ती ए दी चिल्ला चायोडो कुरी मेनोडो कुरी एंदुगे एंदानु वेनिगेले उड़ूप पोक्यागे एरा दादा चम अन संगे आम एता मेंदा मतनी इन बेले अम संगे मेंतुत एंदागे तेबे गोली वेड़ कर रागे और उड़पिन संगे डेरेती वेर्रागे तेबे उड़पिन संग तका काल चूड़ी केले पोकमोगे उड़पिन संगे बेले नाता हिसाबुं मरी गोलिन संग पत्ती केले वेर्मो गाटे एंदागे आर उड़पिन अडिशुड़मोगे इन ना तेंगोली ने देर मोत एनमोगे एनोडेल उड़ुपो को मोगे का काली नेरा इदुंग बेले ए दी चिल्लगे चायुंग नयुंग वेदोई अदुंग इन बेले आम संगे मेंतुत एत्ते नारु आन बेले का काल संगे मेंतुत एनिगेले एंद्रमोन एंदागे का काल उड़पिन पोके आगे गोलिन बेले तोड़ ए तो अपलो संग बनास में तो अद एता चलाकती मेंदा अद एता आम संगे मेनुंग नमिता

अभी आप सुन रहे थे लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी का भाग 6। संपादक थे बलबीर सिंह कच्छ। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

तो जुहार जुहार दीदी बहिन मन जुहार एची संगे कार्यक्रम घर द्वार सुन तो सब पाए दीदी बहिन मन के मैं पारो करें से जुहार बहिन मन तुम्हें तो जान साची आमी कितरे पढ़े लिखे रलोन बोले कितरे आमी जानकार रलोन बोले आमी मेहरार मन के घरे कितरो काम हो से और हुन काम मन के आमी कितरो जिम्मेदारी करून उठाऊन भाती निपटाऊ से तो बहिन मन तुम जान साची आमी घर द्वार भीतरी कुटुक बड़े मुंडा ने तुम चुका जे कई

0: ज्ञान ध्यान चो गोट कैक आमचो उन्ती बढ़ती चो गोट भेट वार्ता गीत कविता कहानी और काय मन जा रंग रंग से गीत के बल धरुम तुमचो लगे अमर से। तो बहन मन तुम्ही जान साची आमचो लगे फुर्सत निरलो ने बोले आमचो काजे जोन लाभ हो से जोन आमके आमचो जीवना ने आमके उन्ती बढ़ती चो बाढ़ दखाए से असन काजे आमके खिंडिक समय निग्रोन भाती आमके आमचो जोन जरूरत के पूरा करतो काजे राजी हो से असन समिया के असन गोट के आम के सुनतो रहे। तो बहन मन देखा आम जो जीवना ने कई असन तकलीफ मन हो से जहाँ आमी बीमार सीमान ने बले परेशान हूँ से जहाँ आमी पैसा कौड़ी काज बल परेशान हूँ से और कई असन आम जो जीवना ने बिपतम बिपति मन बल पड़े से कि आमी जीवना के एकदम निराश हो जाऊँ से। मानतर बहन मन आम के आम जो जीवना ने हमेशा आम के अच्छा सोचतो रहे अच्छा चीज ने आमचो दिमाग के लगात रहा है अच्छा बाट ने आमचो बुद्धि के रेंगात रहा है जसन ने आमचो जोन परेशानियाँ हैं उनके लिए कम हो आम के हमेशा आप लोग मन ने अच्छा सोच संगात रहा है जिचो ने आम के जित्रो बोले आमचो जीवनान विपता मनीली से हुनचो ने लड़तो ने ताकत है असन कुछ जीवना नहीं आए जोन चो थाने तकलीफ नहीं रहो कहीं ना कहीं परेशानी सब चो जीवनान आसे और असन थाने आप लोग मन के निराश करुन भाती कुंठित नहीं करतो रहे कहीं भले कितनी बड़े घटना हो कितनी बड़े समस्या हो कितनी बड़े गोट हो उनचो निदान आप लोग दिमाग ले आप लोग मन ने धरात रहे और कहीं बोले समस्या चो निवारण करतो काजे सो विचार ले विचार करतो रहे और उनके लड़ुन भाती आम के दखात रहे। तो कहीं बोले परेशानी इतरो बड़े नहीं हो कि आम चो जीवन खत्म हो या फिर होता है थे वो मंत्र असन दिमाग ने हमेशा सद्भाव और सूचन बलों ने चिंता के दूर करुन भाती आम के हंसते बुकलते अच्छा विचार संगात रहा है कहीं बल चीज के आसानी ले तो नहीं छूटे मंत्र कहीं बले चीज चो निवारण आम के आप लोग मन ने सोचुन भाती विचार करुन भाती आप लोग घर परिवार आप लोग बेटा बेटी संगे आम के जीवना खावना करते रहे। तो बहन मन आम के आप लोग जीवना चो समस्या के लड़ून भाती आप लोग जीवना के खुशहाल बना तो काजे सबले पहल आम जो मन के तैयार करते रहे और जहाँ आम जो मन हारले बल्ले नानी नानी समस्या बल्ले आम चो जीवना ने खूबे बड़ रूप धरे से और बड़े बड़े समस्या चो जन्म करे से और होता है आम चो मन सकारात्मक सोच बल्ले अच्छा सोच और उनके कहीं बल समस्या ले आम के बाहर निकरातो काजे उनके आम के लड़तो काजे आप लोग मन के तैयार करते रहे आप लोग बुद्धि के तैयार करते रहे और आप लोग शरीर के तैयार करते रहे कितनी बड़े समस्या हो रोग हो राई हो कहीं हो उन जो जड़ आम जो इतरो कितनी फैलो मानतर आप लोग सोच आप लोग विचार और आप लोग मनन चिंतन उनके आम के बाहर निकरवाए। तो असनी आम जो परिवार ने बल कुनी असन आसोत आसपास ने बल असन कुनी आसोत जोन आप लोग जीवना ने हारून भाती आप लोग समस्या के आप लोग जीवना ले बड़े मनन भाती निराश होसोताले असन लोग के बले आम के आमचो सोच ले आमचो विचार ले हुन मन के उकसात राय प्रोत्साहित करत राय कि कहीं समस्या आमचो सोच ले बड़े नहीं हो सके। तो बहन मन देखा आमी महिला मनाओ आम के नानी नानी समस्या आमी खूबे भावुक हों से उन चीज के खूबे सोचूं से तो आम के नानी नानी समस्या बले बड़े देखा जाए से और आमी ची मेहरार मन हों से जोन आमी घर परिवार चो संगे संगे कई असन काम के बल निपटाऊं से और करूं से और आप लोग जीवना ने हरी कानू से। तो आमी मेहरार मन आप लोग शारीरिक कमजोरी आई बोलून भाती अपने आप के कभी कमजोर नहीं समझते रहे और आप लोग संगे संगे आप लोग मित मैतर आप लोग संगवारी आप लोग आस पड़ोस के लोग के बले हिम्मत देत रहा है सहारा देत रहा है और हुन मन के बले सही सोच तो काजे सही विचार कर तो काजे और कितनी समस्या ले बले निकर तो काजे मन के निदान सांग तो रहा है और आप लोग संगे संगे घर परिवार आसपास जो माहौल के बले सुचारू रूप ले चला तो रहा है बल्लो ने आम के अच्छा सोच अच्छा विचार हमेशा बनाऊन संगात रहा है। तो बहन मन ए तुरली नगद गोट और एच पाटकुटी आसे आमचो मोंडरा ने चाहला अले इया एक बले सुनो।
1: सो बेड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडाना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता।

0: ಜೀವನ್ ಭೀಮಾ ತಗಬೇಡ, ಇಂಜೆ GST ಛೂಟ್ ದೊರಕಿತ, ಅದೇನ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ಪೋಯ್ತನದ್ ಇಂಜೆ ಸಸ್ತಾ ಅಂತ. ಸುಡ್ಲಾ ಕಾರ್ ಗಾಡಿ ಅವ್ರ 350 cc ತ ಕೊಟ್ರು ಗಾಡಿ ತ ಪೊರ್ರು 28% GST ಮತ್ತ ಅದ್ ಕಮ್ಮಾಸ್ ಇಂಜೆ 18% ಅತ್ತ. ಇದನ್ನ ಮತ್ಲಬ್ ಇದ್ಕಿ ಇಂಜೆ ಗಾಡಿ ಪೊಟ್ರು ಗಾಡಿ ಅಸಿತ್ಕೆ ಸಸ್ತಾ ದೊರಕಿತ.
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता.
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ. चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस.
3: हाँ तो बहन मन, आम चमोड़ा ने देखा भेट गुटुक भेट वार्ता से ए भेद वार्ता है स्वरोजगार बहन श्रीमती गोमती मोरे चो आले या एके बोले सुनो.
4: घर द्वार सुन तो बहन मन आज फिर गोटुक में असन बहन संग गोट बात करें से एमन बल्ले स्व सहायता बनाउन बाती कितले मतलब स्वरोजगार हिसाब ने काम कर सोत. तो मैं गोट बात करें से मन संग सब ले आग तुचो नाव आरु गांव चुनाव संग.
5: मुझे नाम गोमती मौर्य है और मुझे गांव का नाम है सोसन पाल.
4: अच्छा, तो गोमती ये संग जैसे की तुम जो स्व सहायता समूह से तो उन चो कई नाम वाले आसे होती
5: जी. हम समूह जो नाम है शारदा और उन थन में अध्यक्ष है.
4: अच्छा, हाँ हाँ. बोले कितलो दिन असन होली एक बना लो?
5: 6 साल होली.
4: 6 साल होली.
5: हाँ.
4: अच्छा, तो जैसन की बोले ने कोनी कहीं बल चीज के गठन कर तो काजे तो बोले ने कई चीज के जानू कला पड़े से बोले ने कसन तुम्हें ये स्व सहायता समूह बनालास कोने सरकार बाटले बनले कि तुम्हें सोचलास कसन?
5: नहीं, आम के बाहरी ले रहा दीदी मन जोड़ तो काजे.
4: हाँ.
5: तो मतलब बाकी लोग नी जोड़ू बल तरला, पहले नी जानत रहला नी समूह वगैरह का है बोलून. फिर बोला हम डोठुन बाती जुड़ लू और हम थान ले मतलब आम के कुछ तो फायदा ही है इसे जुड़ लो तो.
4: अच्छा.
5: हाँ, जुड़न बात हम था नाम काम करूं से जहन की अभी गोठान ने काम करूं से.
4: अच्छा.
5: गोठान में जहन गोबर खरीदी करवाऊं, उनके बाद ने खाद बनावाऊं बेचवाऊं, केचुआ वगैरह भी पालन करवाऊं.
4: अच्छा.
5: केचुआ वाल बेचवाऊं और उनके साथ साथ जहन आम गोठान ने काम कर लू नहीं तो हम के उद्यानिक विभाग गई एक ठन मशीन मिली से मसाला यूनिट भी दिया है.
4: अच्छा.
5: उन था ने आमी मसाला तो नहीं पीसू लेकिन हल्दी वगैरह पीसवाऊ.
4: अच्छा.
5: आटा बल पीसवाऊ, मंडिया वगैरह सब पीसवाऊ.
4: अच्छा.
5: एक नाम का और राजी मिली और किसान दादा मन संग बोले जुड़न बाती काम करवाऊ.
4: अच्छा.
5: आजीविका ने जहन की किसान मन के कसन समय ने धान वगैरह लगाता रहा है, कसन समय ने पल्हा पखाता रहा है, उन सब सांग हुआ.
4: अच्छा.
5: और कीड़ा वगैरह लग तो जो पहले कसन मतलब दवाई डालता रहे उन सब.
4: अच्छा. अच्छा, गोमती ये सांग जैसन की तो बल्लिस जैविक खाद जो बना दी थी बोली.
5: हाँ.
4: तो ये चुका पूरा सेड वगैरह बल बन लीस होती.
5: हाँ, पूरा सेड बन लीस है.
4: अच्छा, बल्ले कौन कृषि विभाग बाटले बना दिला?
5: नहीं मतलब सरकार बाटले बन ली शायद.
4: अच्छा.
5: गोठान.
4: अच्छा. हाँ. गोठान ने.
5: हाँ
4: हाँ. और जैसन की मोर ने जैसन की गोबर तुम घेंसास होती.
5: हाँ.
4: अच्छा, फिर केचुआ वगैरह बल्ले कहाँ ले तुम की मिरली भी ने?
5: केचुआ मतलब पहले तो हम गेहूं की पड़ ली शुरू में तो केचुआ थोड़े बल डालू रहे बहुत सारा हुआ.
4: अच्छा.
5: तो उसने खूब सारा हो ली तो उनके अमी बेचू बलाऊ.
4: अच्छा.
5: बिकलू इस साल 14-15 हजार तक बिकलू
4: असन
5: केचुआ के.
4: अच्छा.
5: अलग से ही केचुआ.
4: अलग से ही केचुआ. अच्छा, तो ये जैसन की बल्ले खत बोलू भी गोटो टाका ने बोलू भी.
5: हाँ.
4: गोबर छाण सास गोबर आरू. हाँ. पे केचुआ छाण सास.
5: हाँ.
4: अच्छा, फिर उन कितलो दिन ने तैयार हो जाले?
5: उन तो करीब मतलब आम तान इतलो भरपूर आसत केचुआ तो आम के ज्यादा टाइम नहीं लागे, एक महीना हो पूरा बड़े हुआ.
4: अच्छा. हाँ. नहीं जैसन की गोबर बल कितलो दिन ने तैयार हो?
5: गोबर तो हुआ है 25-26 दिन ने.
4: अच्छा, बोले तो खाली गोबर ची है कि और कहीं बल मिलाव पड़े?
5: नहीं, नीचे बस गोबर चो छड़ा ची चुन बाती मतलब सराल टाइप चो करुआ उनके बाद ने गोबर के डालू आऊ कच्चे गोबर बस, बाकी कुछ नहीं डालू.
4: अच्छा.
5: हाँ, पैर वगैरह कुछ नहीं डालू, बस सादा गोबर डालू उनके बाद ऊपर के चौक छाड़ू आऊ 15 दिन हो लेने छाड़ू आऊ नहीं तो गोबर गर्म रह लेने के चौक मरुआत नहीं.
4: अच्छा, तो फिर के
5: पानी वगैरह डालू मतलब एकदम तैयार.

0: हुन के उन बाद में केचुआ डालू ढाकून दीवाऊ
1: अच्छा
0: उतल फिर 2-3 दिन खाऊक मुरिया बाद
1: अच्छा
0: केचुआ फिर उन खाद बनवाए।
1: हाँ, तो 20-25 दिन में तो तैयार हुआ
0: हाँ
1: है बोल
0: तैयार
1: से।
0: हो चिया है
1: अच्छा,
0: 20-25 दिन
1: भले
0: में
1: नहीं कि कसन हिसाब ने बिक तो रहे से फिर
0: इकी फिर लेम सन्नी बात
1: ना। नहीं मतलब किलो हिसाब ने कसन आए, पैकेट कसन बना इसका।
0: पैकेट 30 केजी शुरू है।
1: अच्छा, एक पैकेट में।
0: हाँ
1: अच्छा
0: हुन 10 रुपया केजी तो 300 है से
1: हाँ
0: तीस के
1: हाँ
0: जी चो।
1: अच्छा, भले ये सब चीज पैकिंग वगैरह तुम्हें खुद दोता करो।
0: हाँ पैकिंग वगैरह खुद करूँ मैं लेम
1: हाँ
0: सबल छाड़ उग जाऊँ।
1: अच्छा, हाँ, भले फिर उता फिर कितलो दिन ले तुमके पास पैसा मेरे से जाले।
0: उन थाने जहन की ये बात आम चो इंट्री कर लायल सचिव मन तो डलुआ पैसा खाता ने।
1: अच्छा हाँ, और जसन ती सांगतरे इसकी केचुआ बल बिकुआ बोलते,
0: हाँ
1: बोले ने कसन हिसाब ने तुम बिकसा साले।
0: केचुआ बल्ले ने खूब सारा आम थाने मतलब खूब मात्रा नासवत
1: हाँ
0: तो उनके संग उन बल काय करूँ दूसरा थाना अगर जरूरत आस तो 250 रुपया किलो ने बिकवाऊँ हमें।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: 1 किलो
0: एक
1: ढाई
0: किलो
1: सौ
0: 250।
1: अच्छा, तो उसने खत बना तो लोग मन नहीं सोच बोले ने।
0: हाँ गोठान मन में नहीं बात
1: हाँ
0: सर मन फिर संपर्क करुआ कि हुन
1: हाँ
0: थान केचुआ मीरे से बोलून बाती तो पाचे बिकवाऊँ हमें।
1: अच्छा हाँ, तो ये खत के अलग लेवल तुम बिकू सकास कि।
0: नहीं अलग ले नहीं बिकू बस लेम सनी चीनी वाहू।
1: अच्छा, पूरा लेम समझे।
0: हाँ
1: हाँ, और जैसन की तिबल से किसान मन के बल उनमन संग बल काम करूँ हम बल से,
0: हाँ
1: तो उनके कहीं सिखा हुआ ट्रेनिंग वगैरह बोले।
0: हाँ जहन की ए, रोपा वगैरह कसन लगाता रहा है तो कसन समय ने पलहा पकाता रहा है उन सब सांगुआ कसन ए, बीज तैयार करते रहा है उन सब सांगुआ किसान दादा मन के और कतार विधि और क्या बोले
1: श्री पद्धति है
0: हाँ
1: ना।
0: श्री विधि
1: हाँ,
0: उनने लगा लेने कितरो फायदा हुआ है उन्हें सब सांगुआ हमी।
1: अच्छा, तो
0: हाँ
1: ये सब के सांग तो काज तुम क्या आगे कहीं ट्रेनिंग वगैरह मिल ली, प्रशिक्षण।
0: हाँ ट्रेनिंग मिरु रैली
1: अच्छा, कहाँ होता है? देवरला,
0: तो कपाल में देवरला।
1: तोकापाल ने।
0: हाँ
1: अच्छा, बोले कृषि विभाग भी तम।
0: हाँ
1: हाँ, तो ये जैसे कि तुम किसान मन के प्रशिक्षण सांग साथ ये चुपल कहीं समूह कहीं मेहनत मेरे से
0: हाँ 50 रुपया मिरु आए रोजी।
1: रोजी।
0: हाँ
1: अच्छा, बोले प्रशिक्षण दे लेने। हाँ, तो बोले ने कितलो पंचायत गोट की पंचायत ने काम करूँ आज की।
0: हाँ एक पंचायत में जहन 15 समूह 20 समूह रुआत तो एक ग्राम संगठन बनुआ एक ग्राम संगठन ने तो उन्होंने एक ग्राम संगठन ने आमी आसू 4 या 5 केडर रुआत
1: हाँ, अच्छा
0: तो कृषि सखी पशु सखी सक्री महिला रुआत
1: हाँ
0: चार झन असत
1: हाँ
0: उन मन जहन के हम दुई दुई झन मिलुन बाती जहन पशु सखी रहे से गोठान ने दख्तो काजे
1: अच्छा
0: कृषि सखी किसान मन जो दख्तो काजे
1: हाँ
0: सक्री महिला मन समूह मन के जोन जो भाई समूह जोड़ तो काम
1: हाँ
0: होली समूह में कसन चले से हुन सब 1 सप्ताह बैठक करुआत नहीं
1: हाँ
0: पैसा लेन देन कसन कर सत हुन सब सांग तो का सक्री महिला मन रुआत।
1: अच्छा, बल्ले ये समूह भीतर ले सोत कि मन
0: हाँ
1: अलग ले रहे सोत।
0: समूह भीतर ली शुरुआत।
1: अच्छा हाँ, बल्ले उन मन सांगते जाए सो लोग।
0: हाँ
1: हाँ, तो जैसन कि देखन समूह बोले 6 साल इतलो बोले हैं बेलसिस, तो ये चू जो बैठे का है नहीं तो हिसाब किताब है बोले कसन कर सास कितने दिन ने कर सास।
0: 1 सप्ताह में बैठक करवाऊँ 20 रुपया बचत करवाऊँ बचत था ले जान हिसाब किताब एक ही सप्ताह ने हुआ है पूरा हिसाब किताब करवाऊँ जो बात जहन की लोन वगैरह निकलात रहा है जोन बोला है हुनी बैठक नहीं चाहिए कार्रवाई करवाऊँ उनके बाद ने लोन वगैरह भरवाऊँ क्योंकि जरूरत बल रुआ है तो लोन जो जरूरत आ से उन लोग मन धरुआ और अच्छा ले पठाऊ
1: अच्छा
0: बैंकन बल।
1: अच्छा तो बाकी आमदनी भी थी कि बोले कसन बाटा बुटी कसन वैसे जाले।
0: जोन आमी आजीविका वित्त काम करुआ हूँ बीती
1: हाँ
0: उन धाने जहाँ जितरो लोग काम करूँ से जितरो लोग मेहनत करूँ से उतरे लोग धरुआ।
1: असन नहीं जैसन खत वगैरह बोल बिकले नहीं उन पैसा छो बोले।
0: नहीं हूँ बीती खत बिकलो बीती के मतलब व्यक्तिगत ही बांटलो तो जितरो लोग करोड़ो लोग उतरे।
1: अच्छा, तो 6 साल होली बोल सी इसने।
0: हाँ
1: हाँ, पूरा 10 जना साथ। हाँ, तो जैसन कि मतलब आर्थिक रूप ने आमदनी हिसाब ने बोले जौन दिन ले बोले समूह बनाला साथ, तो तुम चो जो महिला समूह मन ने बोले 10 जना सु बोल सी, तो उनमन चो जीवना ने कहीं फर्क।
0: हाँ बदलाव बहुत बदलाव इली असन तो मैं खुद बोलता कहें कि
1: हाँ
0: महिला मन कितना समझदार होला जन आपली काज तो बचा सोत जोन
1: हाँ
0: बचत कर सोत पैसा।

आमचो जित्रो समय बाचली से हुन समय ने आमके सीखतोर और सांगतोर और सिखातो ने लगातोर आए। तो बहन मान ए तो रली गुमती बहन संगे गोट बार चो भेटवार्ता ए चो बाद आसे आमचो मुंड्रा ने काय मंजिया रंग रसिया गीत आल इया एक बले सुनो, फिर पाछे गीत गुरिया मन जो नाम के सांगवा।

सुन लासो, ये बाउंस चुपाना लो छतड़ी और ये ताने सियाड़ी चुपाना चु छावनी मानतर ये भी कल छाता होली मानतर आम भूलकू बनाऊ एक नी बोल भूलकू एक आम के सुरता को रुक पड़े दे। बाऊ चो बनलो छतड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर का एक बजने वाला है। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत

0: आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कृषि सामये की बेड़ा खाड़ा चौगोट।
3: खेतीहर दादा दीदी मन, असन तो आमी रोजी दिना खेती किसानी आरू बेड़ा खाड़ा चो नंगत वाट मन के सांगते रहूं से। मांतर दादा दीदी मन कसनी वाट रले बले नंगत खेती कमानी चो समान बोलूं बेजोन यंत्र होए से आरू मशीन मन नी रलो ने आम के खेती कमानी काजे बले खूबे अड़नाप हुआ आरु एचे काजे आमी कमानी करूक नी सकूं। जोन किसान मन लगे ये समान आरु मशीन आसे जाले हुन मन नंगत कमानी करूक सकोत। मांतर आम के ये खेती कमानी चो जोन समान होय से आरु मशीन होय से एमन के कसन दखा रखा करतो राय आज मैं तुमके सांगे से। पहिल होय से जुताई करतो यंत्र जोन मशीन आए। जुताई करतो काजे आगर करून देशी नांगर लोहा चो माटी पलटतो नांगर आरु कल्टिवेटर चो उपयोग हुआ है। देसी नांगर तो लकड़ी चो बने से आरु सोजे फार लोहा चो रहुआ है। जुताई बेरा फार के पजौन भाती नांगर ने

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
3: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। श्रोता सुमन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को तृप्ति परिडा का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बेमिसाल से, स्वर लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का, गीत आनंद बख्शी का, संगीत आरडी बर्मन का और पसंद आप सबकी। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, चिरमिरी कुरासिया कॉलोरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ और राम सहोदर, बिलासपुर बस्ती बारद्वार से नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे, बिलासपुर रोड

आपसे मीका वीरक, बलविंदर वीरक, चैतेक और हरदेव मीका। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ईशिका और तेजल यादव। रायगढ़ बाबा कुटीर से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, अंजलि, रितिका और आशिक चौहान। रानीगांव नगरी से किलेश कुमार साहू, चित्ररेखा, शुभम, सेजल, इंद्राणी, रोहन और भरोस साहू। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का गीत, फिल्म है बेमिसाल।

हाथ की सफाई। अगला गीत इस फिल्म से आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। बोल गुलशन बावरा की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। फरमाइश आप सबकी। धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे। कोरदा लवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार, शिव कुमारी, हेमलता और वेद किरण वर्मा। बचेली दंतेवाड़ा से बलराम सेन, इंदु सेन, रितिका, पुष्पराज और पोषण सेन। नरगुड़ा सीपत छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, बेबी निशा, रीना देवी, सुनंदा देवी, राजेश्वरपुरी और गोवर्धनपुरी। जिला किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव और कीर्ति भानु। गांव डबरापारा सौंगा धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन, पिंकी सेन और रीना सेन। लोरमी बाजार खपरी कला छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार सोनी, सुनीता, खिलेश, पीहू, दानिश, दीक्षा, नेहल, पूजा, संजय, छोटी, रमा, पूर्वी और मम्मी पापा। देवरी से केआर साहू, बाटापारा से हेमकेश्वर, लेवई से गुलाब दास, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलाता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। बाबाकुटी उफरा पाटन से प्रेम साहू, यमुना साहू। पुणे से पंकज कुमार आर्य, बाबा साहब वडोदे और चंद्रप्रभा वडोदे। अजीतनगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह और गगनदीप कौर। लीजिए सुनिए आप सबके पसंद का ये गीत, फिल्म है हाथ की सफाई।

बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज और फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी, बागबाहरा भद्रसी से पन्नालाल सेन, तारासेन, कौशल और खुशबू सेन, यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से, भूरबा बिलाईगढ़ से देवलाल कर्श, कामली कर्श और यश कर्श, गुमला झारखंड से एसएम जावेद और शुकफ तंजुम, जेलरू रायगढ़ से भाई नरेंद्र कुमार तिवारी, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत प्रभु, विनय कुमार ठाकुर, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशिया, रायपुर से नीलू मेघ, बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव और दादू यादव, बाबली से कमलेश साहू, हरेंद्र और सुशील बेलसपुरिया, बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी, तृप्तेश देवांगन, रावदेवरा जैसलमेर से दिनेश कुमार चौहान, डोंडीलोहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामुरिया, ग्राम पहारा अहिरवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर, अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा, उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापुर से प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, मनोहर निषाद, नैतिक, दिव्यांश, धैर्य और आराध्या, ग्राम अर्जुंदा जिला बालोद से दिनेश यादव और साधना यादव, रामभाटा संजय मैदान रोड रायगढ़ से रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश लक्ष्मी, रानी दीपा लक्ष्मी, सुनीता लक्ष्मी और लक्ष्मी लक्ष्मी, ग्राम बन बघेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश और कुमारी अंजलि सारवा, अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर, गांव मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर, संगीता, हर्षित और वैभव मट्टू। आप सबके अनुरोध पर लीजिए सुनिए फिल्म डिस्को डांसर का गीत, जिसे गाया है उषा उत्तुप और बापी लहरी ने, गीत फारूक कैसर का, संगीत बापी लहरी का।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म लोफर से। स्वर आशा भोसले का, शब्द आनंद बख्शी के, तर्ज बनाई है हेमंत कुमार ने। इस गीत के लिए फरमाइश की है चंडीगढ़ से सतीश शनेजा और बिमला नेजा, बागावन संतोषा पारा से गेनू राम बघेल, गोमती तनोजा और सुभाष बघेल, लच्छनपुर बलौदा बाजार से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता अमृता जोशी और लोकेश जोशी, ग्राम भुरसुदा से भगवानी गजेंद्र चंद्र प्रकाश संतोषी, नेहा सेन, डबवाली से बसंत सिंह चांद, राजकुमार सुनीता और कुलदीप गांधी, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजा, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, ग्राम धुर्रा बांदा भाटापारा से प्रमोद कुमार साहू, देव कुमार साहू, नेताराम साहू और भूपेंद्र साहू, अनूपपुर से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी और ऋषभ जयलक्ष्मी, कृष्णानगर टीवी टावर, सेमिनारी हिल्स, नागपुर से नाना डोंगर दीवे, रमाताई डोंगर दीवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दीवे, गीदम रोड जगदलपुर से टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, तुलसी राव, जया राव, भाग्य लक्ष्मी, आनंद, मनीषा और नानू राव, ग्राम छिंदडीही पुजारीपारा जिला कोंडागांव से सेतुराम चक्रधारी, मंगतीन चक्रधारी, आशीष कुमार और अस्तिका चक्रधारी। लीजिए सुनिए फिल्म लोफर का गीत।

फिल्म गरौंधा, स्वर भूपेंद्र सिंह का, गीतकार गुलजार, संगीतकार है जयदीप और फरमाइश करता है श्रृंगी ऋषि महानदी से हवा पर्वत अंचल, ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, मोहम्मद हलवाइन शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, संस्था रानी और हिना कौसर, शिवाजीनगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिराबाई सुनैना खोबरखेड़े, खांडवी तहसील जिला जलगांव जामोद से राम धाड़े, दीपाली धाड़े और स्वराज धाड़े, पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, हनी जिम्मी, अमिता दिमाना और जियांश मटाई, राजनगर मधुबनी से राजकुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार, कुकेश्वर प्रसाद गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, एम के गुप्ता और मित्रगण, छपरा दालदली बाजार से संजय कुमार गुप्ता, संजीत कुमार, सर्वजीत और सुधांशु कुमार गुप्ता, सीतामढ़ी महावीर स्थान से प्रभात कुमार गुप्ता, अरविंद मंटू और निक्की गुप्ता, फुलवारी शरीफ पटना से अविनाश चंद्र, ज्योति गुप्ता, जानवी और पीहू, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी और कोमल यादव, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, रचन साहू, सुनील देवालकर और रामायण श्रीवास, तेलीपारा बिलासपुर से रचन साहू, बेबी शानी साहू, छन्नूलाल और अनिता श्रीवास, आमा खोडरा रेंगाखार से राजेंद्र कृष्ण नेताम, देवी संदीपा नेताम, चंद्रदीप और दक्षप्रिया नेताम, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस और यशस्वी वर्मा। लीजिए सुने आप सबकी पसंद का गीत फिल्म घरौंदा से।

एरोड्रम थाना लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, महेश नगर औरंगाबाद से रमेश देशपांडे और नीलिमा देशपांडे, मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीताबाई घायल, सानिका और गजानन घायल, बाजारपारा बेमेतरा से भरत भाई लाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा, तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकला देवीदास पोपलघट, श्रीरामपुर भोकर से हरिभाव बिड़वे, श्रवण और अनीता बिड़वे, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, किरण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन साहू, सुनीता ऋषिवन साहू, हिरेन्द्र नीलकंठ, चंद्रहास संजीव त्रिलोक साहू, मास्टर रणजीत सिंह साहू, मास्टर हेमंत कुमार साहू, ग्राम कुरमा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से लेलदार मिरी, मजेदार मिरी, ज्योति जानवी और दीक्षांत मिरी, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेग, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान और मुस्तबा खान, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, गांव रतनपुर तहसील जिरनवा से जिला खरगोन से भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्वनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन और परिवार के सभी सदस्य, भेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर। आप सबके अनुरोध पर आइए सुनते हैं हिल स्टेशन का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और हेमंत कुमार ने। बोल एसएच बिहारी के, धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

लीजिए अब सुनिए फिल्म निकाह का गीत। स्वर दिया है सलमा आगा ने, शब्द हसन कमाल के, तर्ज बनाई है रवि ने, और सुनना चाहा है भाटापारा से दानसी रावत दानू, पद्मिनी रावत और शुभम सौरभ, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन नीले, नवदीप एले, शेरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा और आदित्य देवांगन, बम्भर चाटीडी से गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की देवांगन, बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत और पप्पी भाटिया, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, आगर मालवा सालाखेड़ी से सोनू विश्वकर्मा और मोनू विश्वकर्मा, चांदनी चौक कंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू और रविन्द्र सेन, कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा जौहरी और जोनिश, गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, मदन लक्षणे और अर्जुन गावनेकर, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति और पूरा माखीजा परिवार, शनिदेव शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव, राधिका और दीपिका सैनी, लक्कड़ बाजार खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह बैस, रोहन रिया, रणवीर सिंह बैस और संजय बगारे। लीजिए सुने आप सबकी पसंद का गीत, फिल्म है निकाह।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म प्रेम कहानी से आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस गीत के लिए फरमाइश की है ग्राम बुडगहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, जामाडोबा से मोहम्मद रफीक अंसारी, बेगम फरीदा रफीक, गणेशपेट पाथरडी, महाराष्ट्र से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और सुवर्णा शिंदे, सर्वानिया महाराज जिला नीमच से गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा मधुसूदन, यशस्वी और हंसवी पाटीदार, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और बेबी वान्या सिंगरौल, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना और विपुल कामड़े, नयापारा फरसगांव से सत्येंद्र मंडावी, सुमित्रा और सुजाता, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, शशांक और सीमा साहू, छत्तीसगढ़ मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अल्ताफ, छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन और परिवार के सभी सदस्य, हथबंद रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और प्रियंका बंछोर। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का गीत, फिल्म है प्रेम कहानी।

0: standing under a Hydra machine amid rain. NDRF and SDRF started rescue work and operations are still underway. The India Meteorological Department, IMD, has predicted below normal monsoon rainfall in the country and above normal heat wave conditions in several states during June. Addressing the media, Director General of IMD, Dr. Mrityunjay Mahapatra, said the average rainfall in the country during the month of June is most likely to be below normal. He said during the period only some parts of the country, including northwest, northeast and south peninsula, are expected to witness normal or above normal rainfall. He further informed that during June, above normal maximum temperatures are likely to prevail across most parts of the country. Mr. Mahapatra added that during the month of June, above normal heat wave conditions are expected over many parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh and Gujarat.
1: This year's forecast says that we will have about 2 to 3 days more over UP, Punjab, Haryana and the adjacent areas of Himachal, etc. and in some parts of the coastal east coast states and Gujarat. And specifically if I state names of the states, it is above normal heat wave days are expected over parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Gujarat and Andhra Pradesh and isolated regions of Maharashtra, Telangana, Himachal Pradesh and Tamil Nadu.
0: In sports, at the 2026 Asian Under-20 Athletics Championships, stellar results were recorded in multiple track and field events involving Indian athletes. In the women's 100 metres, Neepam won the bronze medal with a timing of 11.62 seconds. She became the first Indian woman in 25 years to win a medal in this event at the championships. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Neepam wins bronze in women's 100 metre at Under-20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए।

0: में निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
0: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
2: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवर्जन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
3: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
1: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
4: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
1: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कला और कलाकार।
6: दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा।

जुहार जुहार दादा दिदी मन जुहार एची संगे कार्यक्रम कला और कलाकार सुन तो सब पाए गांवकारी सियान सज्जन दादा दीदी और संगजावरिया संगवारी मन के मैं पारो करें से जुहार और आम के नानी पीला मन के बोल नहीं भूलत रहा है तो रेडियो कटा बसलो सब पाए नानी नानी पीला मन के मैं पारो बाटली खूबे खूबे मया और चुमा। तो दादा दीदी मन तुम्हें तो जान साती आमी कला और कलाकार जो मोडरा ने कैक असन ज्ञान ध्यान जो गोट और गीत कविता कहानी और बड़े बड़े कलाकार मन जो जीवन परिचय के धरुन भाती तुम जो लगे अमराऊ से। तो दादा दीदी मन देखा समय कितरो बदलते जाए से ने आगे जो समय ने कितरो बल्लो ने शांत वातावरण रहे और बल्लो ने निर्मल रहे और ए बीच समय ने का है दखू दखू सपाई चीज ने तकनीकी शिक्षा बढ़े से और आजकल बल्लो ने नेट इंटरनेट क्षेत्र ने आमचो भारत डिजिटल होली से। तो मांग जो अनुसार आम के कहीं बले आप लोग भीतर जो कला के कहीं बले आमचो जीवना ने जो नामी जानू से जो नाम चुलग हुनरा से और हुन कला के खुबे नगद बना तो काजे आम के समय अनुसार हुनके काय होए से बल्लो ने डिजिटल तकनीक या कलर रंग जोन बले हुता आमी मिलोक चाहूं से हुन आमचो जोन कला है हुनके आमी खुबे नगद कर तो काजे खुबे अच्छा बना तो काजे हुनके खुबे आकर्षक बना तो काजे जोन हुता आमी जोड़न भाती उनके नवा शैली नवा प्रयोग और नवा कला के और अच्छा बना तो काजे रचनात्मक प्रस्तुति देख सकूँ मिलोक सकूँ और उनके खुबे नगद बनोक सकूँ उनके बलसोत नवाचार और ये नवाचार हम जो जीवना ने हम जो भीतर जो कला के खुबे नगद बनाए से बल्लो ने जसन चित्रकला ने डिजिटल आर्ट जो उपयोग संगीत ने आधुनिक वाद्य यंत्र मंच उपयोग पारंपरिक संगीत संगे संगे जोड़तोड़ कथकली भरतनाट्यम जसन नाचामन के नवा प्रस्तुति शैली ने अपना तोर रंगमंच ने नवा तकनीक और उजर्च प्रयोग बले बना तोर कला अधिक खूबसूरत और आकर्षक बना तो काजे नवा पीढ़ी ने नया नया तकनीक नया नया रंग नया नया प्रकाश और नया नया हर एक चीज ले उनके आम के और नगद बना तो काजे जोड़ तो बीती काय बोल सर नवाचार। तो दादा दीदी मन तुम्हें जान साची जसन आगे जो समय ने जोन बल कला रहे जसन पेंटिंग हो चाहे काश्य कला हो चाहे मूर्ति कला हो चाहे बांस कला हो चाहे कई बल कला हो जोन पुराना समय ने चलते रहे तो आज उनके और आकर्षक बना तो काजे और अच्छा बना तो काजे और ए बीच समय अनुसार उनके बदल तो काजे आम के हुता नवाचार कर तो जरूरी है बल्लो ने हुता हुन चीज के आम के ए बीच समय ने और आगे जो समय ने जसन रहे उनके आज ए बीच समय अनुसार हमके बनाउन भाती नगद दखा तो काजे ए बीच समय ने उनके समझा तो काजे आम के कहीं ना कहीं हुन थाने आम के जोड़ तो लागे से और यही जोड़ यही मिलावट और यही आम के रूप देते बीती का हो से नवाचार हो से और ये जो कला ने नवाचार आंतर बोले खूबे जरूरी हो कसन बल्लो ने हुनी आम जो समय जो पहचान है कसन बल्लो ने जोन समय ने जोन जसन चलते रहे हुन पारंपरिक के आज आज चो कला आज चो लोग आज चो आधुनिक समय ने जुड़न भाती उनके नवा कर सोत और अधिक अच्छा आकर्षक बना तो काजे मंच न्यान तो काजे उनके परिवर्तन कर सो तो ये हो आम जो कला ने नवाचार। तो दादा दीदी मन ए तो रली कला चो भीतरी गोटोक नगद जानकार भी थी गोट एक गोट चो बाद ने आम चो मोटरा ने आसे गोटो गीत ए गुटकरिया भाई मन जो नाव है शिवराम नाग आलिया ये गीत के बोले सुनू

0: हाँ तो दादा दीमन इकाय मंजा रंग रसिया गीचो गीत कुरिया भाई मन रो शिवरा नागर उंचो संगवारी मन तो दादा दीदी मन आम चो मुंडरा ने एवे आसी कुटुक जहाला अलिया एके बले सुनो।
1: पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: इत बदले मत्ता अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्ता जानवर किन इलाज तकवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता। जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाए सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782222266। फोन इन किसान वाणी आपन मन चो सवाल अपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
8: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जानवर मंचो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बनातो लोग और घेनतो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितम्बर 2025 ले लागू हो दे।
0: हाँ तो दादा दीदी मन देखा आमचो मुंडरा ने गुटोक आजीचो कलाकार आसूत केलू नायर कथक कलीचो प्रसिद्ध नर्तक। तो ये जोन केलू नायर जो जन्म होली उन केरल राज्य जो जिला केरल राज्य ने हो रही और पीला बेराले ची हनुमान चो रुचि नाच और संगीत अभिनय ने रहे। हनुमान कथक कलीचो शिक्षा पारंपरिक गुरुकुल पद्धति ले धरला। कठोर अभ्यास अनुशासन और समर्पण चो कारण हुनमन झटके ची गोटो कुशल कथकली कलाकार बनला। हुनमन रामायण महाभारत और पुराण मन ले अनेक पात्र मन ने मंचन करला। हुनमन चो अभिनय ने भाव अभिनय आईक मटका तोर और देहे पाई के मटका तोर असन आप लोग विशेष कला दिखाते रहोत और यही कारण ने कथकली चो हुनमन चो विशेष योगदान रली। कथकली कला चो प्रचार प्रसार केलू नायर ने देश विदेश चो कथकली चो प्रस्तुति बल दिला और ये कला के अधिक लोकप्रिय बनाला। नवा पीढ़ी के प्रशिक्षण हनुमान खूबे विद्यार्थी कथकली चो शिक्षण दिला और कला परंपरा के आगे बढ़ाला। विशेषता रंग बिरंगे साज सज्जा और भव्य वेशभूषा धरुण भाती एवं कथकली नाच चो नर्तक करते रहो। चेहरा चो भाव आईक मटका तो एक कथकली नाच चो विशेषता रहे। संगीत और ताल चो महत्वपूर्ण जगह ने इमन आप लो ये प्रस्तुति देते रहो। केलू नायर के ये कला के जीवन जीव संगातो का जे महत्वपूर्ण योगदान बले मिली। कथकली परंपरा के सम्मानित कलाकार मन ले गनुक होय से पुरस्कार वाले मन के मिली। गुरु केलू नायर कथकली नृत्य कला ने हुनमन के महत्वपूर्ण योगदान दिला। हुनका जे हुनमन के एक कैक समान मन वाले मिली। कैक समान ले मन के पुरस्कृत उत्कृष्ट योगदान का जे मन के मिली। पारंपरिक शैली चो रेख दे हुनमन कथकली चो प्राचीन परंपरा ने अभिनय शैली के सुरक्षित संगातो का जे प्रयास करला और अभिनय कला के और निपुण बनाला। हुनमन विशेष रूप ले चेहरा चो भाव आयुक चो भाव और पौराणिक पात्र मन के अधिक प्रभावशाली और लोकप्रिय प्रस्तुत करला। भारतीय संस्कृति हुनमन के प्रस्तुति ने भारतीय संस्कृति और केरल चो सांस्कृतिक विरासत के विश्व स्तर तक मन अमराला और असन केलू नायर कथकली कला चो प्रसिद्ध कलाकार बनला। समृद्ध कथकली कलाकार के समृद्ध बनातो काजे इमन पीढ़ी तक पीढ़ी अमरातो काजे महत्वपूर्ण भूमिका बले निभाला। कहले उल्लेख आसे कि हुनमन के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 ने सम्मानित करला। एचो बाद हुनमन के गोटोक कथकली गुरु और शिक्षक चो रूप ने खुबे सम्मान बले मिली। हुनमन के विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने कथकली शिक्षा देतो काजे मुरहोली और जहां हुनमन के गोटोक रविन्द्रनाथ टैगोर बाटले आमंत्रण इली और हुनमन कलाकार ने ची नई बल्कि गोटोक बड़े महान शिक्षक चो रूप ने वाले आप लो नाव के कमाला और आगे बढ़ाला। तो ये केलू नायर कथकली नाचो गोटोक महान नर्तक नाचू बिता गाओ बिता और आप लोग गोटोक कलाकार चो रूप ने ये आप लो नाव बनाला और पीढ़ी तक ये मंचो नाव आजी कथकली नाचो नाव ने आसे। तो इतुरली केलू नायर महान कथकली नाचतो बिता ये कलाकार जो जीवन परिचय इच बाद आसे आम जो मुड़रा ने फिर कुटो जातो पाड़ बीती गीत आले या ये गीत के सुनू फिर गीतकार जो नाम के शांगवा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार, मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस वक्त दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा संपन्न होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हम आपको आज के शेष और कल प्रसारित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण बता दें। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम। आज शाम 5:05 पर समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में आप सुनेंगे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण होगा 5:10 पर। 6:35 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में भतरी नाटगीत भीमसेन बघेल और साथियों के स्वर में हम आपको सुनवाएंगे। बस्तर के स्वर सुनिए शाम 7 बजे। 7:21 पर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव होगा। सिरधर और साथियों का गाया हल्बी गीत सुनिएगा घलर कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे। पिलामन का जिगोट ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर। प्रस्तुति होगी रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर की। 9:15 पर नंजर में आप सुनेंगे भेंट वार्ता। मंधर राम नाग से भेंट करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। खेल पत्रिका में 9:30 पर जूडो और कराटे खिलाड़ी नमिता बघेल से ली गई भेंट वार्ता हम आपको सुनवाएंगे। भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। और रात्रि 10 बजे फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस आप सुनेंगे। प्रस्तुति होगी सुखचंद मंडावी की और संयोजक होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के कार्यक्रमों पर। कल रात 9:30 पर साहित्य भारती कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 8:30 पर डॉक्टर्स की सलाह और 9 बजे कार्यक्रम बातों बातों में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। प्रातःकालीन सभा में 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का प्रसारण किया जाएगा। 6:20 पर सुनिए चिंतन। श्री रामचरित मानस का गायन होगा। 6:25 पर स्वर होगा ए हरिहरन का। संगीत निदेशक होंगे सतीश भाटिया। बेड़ा खाड़ा चुगोट ये कृषि सामिकी कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 6:35 पर और पुनः सुनेंगे दोपहर 1:05 पर। 6:40 पर हुलहुली में कल सुनिए भीमसेन देवपाड़। वादा कलाकार होंगे भारत और साथी। नमस्कार जगदलपुर होगा सुबह 7:05 पर। कार्यक्रम होंगे वार्ता सुनिए पत्रकारिता में हिंदी की भूमिका। वार्ताकार होंगी आशा रानी पटनायक। हास्य तरंग में अवध किशोर शर्मा से सुनिएगा वार्ता सब्ज बाग। और सुनिए फिल्मी गीतों की मधुर मधुरी माँ। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:15 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 9:30 पर। फिल्म होगी राजा हिंदुस्तानी। 10 बजे आजी जो सगा में श्री अर्जुन सिंह नाग से सुनिए भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। गुरुदुम कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी गीत आप सुनेंगे सी.एल. मारखंडे और साथियों के स्वर में।

0: 8:30 पर एक ही कलाकार सुनिए दिन में 11 बजे। हमारे कल के कलाकार होंगे चरित्र अभिनेता परेश रावल। 11:30 पर गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता हम लेकर आएंगे। 12 बजे लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुति होगी सुखचंद मंडावी की, संयोजक होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन हम प्रस्तुत करेंगे दिन में 1:10 पर। कला और कलाकार ये कार्यक्रम सुनिए 2:30 पर। कल शाम 5:05 पर देशभक्ति गीत सुनिएगा। युवाणी का प्रसारण समय 5:10 होगा। हल्बी गीत हम प्रस्तुत करेंगे शाम 6:35 पर। गायक स्वर होगा मेघनाथ पटनायक और साथियों का। बस्तर के स्वर का समय शाम 7 बजे होगा। और 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसान वाणी का प्रसारण किया जाएगा। जोनी उजर में रात्रि 8 बजे भतरी लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे सुखमति और साथियों के स्वर में। पिलावन का जयगोट में रात्रि 8:30 पर प्रस्तुति होगी संतोष कुमार बघेल की। आमचुरान आमचो जीवना कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर संतुराम मौर्य से ली गई भेंटवार्ता सुनिए। भेंटकर्ता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। और रात्रि 10 बजे लोकवाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़ में कल सुनिए मावली मातापाड़ और फिरंता देवीपाड़। वादक कलाकार होंगे मंगलू और साथी। ये था हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल की सभाओं के कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में।
1: समसामयिक विषय नाग आधारित कार्यक्रम तरसंगन सावित्री नाग केंजनोरी ने तमावा इद कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा ना 150वीं जयंती वर्ष त उपलक्ष्य ते आयोजित जनजातीय संस्कृति समागम तग केंद्रित मिंदे। भगवान बिरसा मुंडा ना 150वीं जयंती वर्ष त उपलक्ष्य ते 24 मई ते नई दिल्ली त लालबाग किला मैदान तक जनजातीय संस्कृति समागम ता आयोजन कित्तुर। इद कार्यक्रम तोर मुख्य अतिथि त रूप ते केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल अत्तुर। जनजातीय संस्कृति समागम तग देश भर तीन जनजातीय प्रतिनिधि युवा सामाजिक कार्यकर्ता और पारंपरिक समुदाय नोर मानिक वेंडे मत्तुर। समारोह तीन संबोधित किसो श्री शाह के तुर की इद समागम जनजातीय त महाकुंभ तरूप ते वायनद नेक्का वर्षा एवना पुंतुर। और के तुर की भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय समाज तीन अपूना संस्कृति धर्म और जल जंगल जमीन त रक्षा त संदेश इतुर। श्री शाह के तुर की उलकुलान आंदोलन अंग्रेज किन तोड़िया चाका किना बूता कित्तुर अचूट संचार अर संचार त सुविधा इल्वा मत्ता मती झारखंड तिना गुजरात एवना उमके भारत तग जनजातीय किन भगवान बिरसा मुंडा इद संदेश एविहतोर की मावा धर्म ही निजाम धर्म अर मावा मेटा नग बेनोना वेंडे तुरा कब्जा आया पर्वो। और कित्तुर की वनवासी धर्म रक्षा किना संकल्प नेंड इग पोतनत इद्य संकल्प माकिन मावा संस्कृति और देश संग जोड़ा की स्थासिता। केंद्रीय गृह मंत्री स्पष्ट कित्तुर की समान नागरिक संहिता इतके यूसीसी त बेदे पाबंदी वनवासी समाज तग लगे मयो अर इवेटे बेदे वेंडे जनजाति त परंपरा संग बेदे वेंडे खिलवाड़ो। केंद्रीय गृह मंत्री कित्तुर की नक्सली हिंसा त कारण 40,000 त दिव्य जनजातीय मानेक न जीवा अत्ता केंद्र सरकार एंग दशक आना उदनाशुर नक्सलवाद तीन मापिता अर नेण मावादेश नक्सलवाद चीपतिना मुक्तत्ता। श्री शाह कित्तुर की मानेक वनवासी समाज और जनजातीय ना विकास केपिस मंच उदिमत्तुर अधीन मम मापित्तुम उन जमाना ते नक्सलीड संग लड़े मायलाय बेगा सुरक्षा बल ता कैंप लगे माशमत्ता अग 70 कैंप 3 शहीद वीर गुंडादूर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र तक बदला कीना बूतो नरेंद्र मोदी सरकार कित्ता। श्री शाह कित्तुर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति कल्याण तीन मुने पेड़सीतीना बूतो कित्ता। सरकार ता समया जनजाति अत्ता सरकार ता समया जनजाति कल्याण ता उमके बजट 28,000 करोड़ रुपया मत्ता अधीन पेड़सी समाज 1,50,000 करोड़ रुपया की सित्ता। केंद्रीय मंत्री कित्तुर की प्रधानमंत्री गरीब संथाल परिवार तीना वत्ता द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पाड़ी उमके जनजाति समाज ता कल्याण कीना बूतो कित्ता अगर अटल जी ता समया अतः झारखंड और छत्तीसगढ़ जनजाति बहुल राज्य बनेम और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक जनजाति समाज तीना मुख्यमंत्री मंदिर श्री शाह केत्तुर की वनवासी लोरा इत आंदोलन वायनत दीनम जनजातीय माने किन निस्तासिता और केत्तुर की तू और मैं एक ही रक्त हैं इद मंत्र तर संग वनवासी कल्याण आश्रम मुख सेवक बनेमास जनजातीय सेवा ता अखंड यज्ञ चला कीता जनजातीय संस्कृति जनजातीय भूम जनजातीय धर्म तीन सुरक्षित किला इद महाकुंभ नेकाय बिड़िया बुतो कीता श्री शाह केत्तुर की जनजातीय मानेक भ्रांति ते नैयड़ अर भेदभाव किनोर किन चिता कीवीर अर ओंडोयास वर्ष 2047 तक विकसित और समृद्ध भारत पारनग दिशा ता मुने पेड़सिर राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समागम तीन छत्तीसगढ़ तोर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वेंडे संबोधित कित्तुर इद अवसर ते और केत्तुर की जनजातीय समाज दुनिया तीन प्रकृति संग संतुलित विकास ता अर तोहता पर दिता मुख्यमंत्री केत्तुर की जनजातीय समाज भारत ता संस्कृति आत्मा ता पानता और जीवंत स्वरूप मिंदे और जनजातीय माटा संस्कृति और परंपरा तीन संरक्षण तग जो रिसो केत्तुर की राज्य सरकार गोंडी हल्बी और सारदी लेकेताओ माटा ना पारंपरिक शिक्षा तीन प्रसिद्धियमुता श्री साय केत्तुर की आदि परब बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक लेकेताओ आयोजन जनजातीय चीना और प्रतिभा तीन राष्ट्रीय मंच इमुता मुख्यमंत्री केत्तुर की बस्तर तीना सरगुजा एवना देवगुड़ी लेके तो पारंपरिक आस्था केंद्र त संरक्षण और विकास त भूतो जोर दे की मुतुर और केत्तुर की जनजातीय समाज त आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत तीन संरक्षित की न केवल परंपरा तीन नेता न भूतो अयो बल्कि वायनत पीढ़ी तीन अपुना मड्डा ते जोड़ा की न आर अविना पहचान तीन बरकस पारना दिशा तक उन महत्वपूर्ण प्रयास मंदे
0: समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: आसान होली, जानकारी तुरंत मिलुआ,
1: आओ
0: ऑनलाइन शिक्षा और कार्य संभव होली, मात्र एचो अधिक उपयोग कर लो ने हानिकारक आए।
1: हाँ, डिजिटल डिटॉक्स जो आवश्यकता उद्देश्य है कि हम की मानसिक शांति प्राप्त करतो ने, और जसन की लगातार स्क्रीनिंग ले दूर रहतो और दिमाग के मतलब किंड सुकून और शांति मिलो बोलतो गोटो ऐसे।
0: हाँ, सोशल मीडिया चो तुलना ने और लगातार नोटिफिकेशन तनाव बढ़ाते रुवाए, डिजिटल डिटॉक्स के अपना तो राय और तनाव के कम करतो राय।
1: हाँ, हम ही जब डिजिटल डिटॉक्स के अपना वहाँ तो हम जो घर परिवार के समय आदि माने, और
0: हाँ
1: जैसा नाम जो दोस्त ओली संग जो रिया संगवारी मन ओला ये मन के हमी टाइम देख सकवा। अगर डिजिटल डिटॉक्स गोटोक असन होली से कि अभी हर हर सामान हर काय तो हर काम लगभग नहीं डिजिटली रूप ने हूँ गेली से ने,
0: हाँ
1: हमी यार नानी नानी ले नानी काम और बड़े ले बड़े काम ज्यादातर डिजिटल रूप ने ची करूँ से ने।
0: हाउ करूँ से
1: हाँ, मानतर हम के काय कि ये चले संबलून बाती कर लेने अच्छा रहे से ने।
0: हाउ अच्छा रहे से आम चो आत्मनियंत्रण विकसित करतो, जैसन कि हर व्यक्ति चो समय और आदत मन के नियंत्रण करतो राय।
1: हाँ, डिजिटल डिटॉक्स चो लाभ हम के कसन मिले दे एक बल एक इंडिक सांग दे वहाँ कमला ने,
0: हाउ
1: जैसन कि हम चो मानसिक स्वास्थ्य ने सुधार होए दे और हम चो चिंता कम होए दे और राती बेरा बल नहीं हम के सो तोले पई एक घंटा चो बाद है, मतलब हम के मोबाइल ले हो चाहे कहीं चो स्क्रीन विधि मन ले किंडिक दूर रहते रहे ने।
0: हाउ डिजिटल डिटॉक्स जो ले आम के शारीरिक लाभ बले मेरे से।
1: और ये चोले का आम के एकाग्रता ने बोले वृद्धि हो ऐसे ने, हम जो पढ़ाई लिखाई ने बोले आमी अगर पढ़ तो लिख तो लोग मना हम तो हम के किंडिक डिजिटल का तो बीती मन ले दूर रह लेने कि हम जो माइंड बोले किंडिक अच्छा रहे से ने।
0: हाउ अच्छा रहे से आम जो शारीरिक गतिविधि मन के बढ़ातो रहे और लोक मन के खेल योग और व्यायाम ने ध्यान देतो रहे।
1: आओ आरु दक ये चीज मन तो हाई चीज ने, आरु चसनामी छात्र मन चो गोट गोटे हमसे ने डिजिटल डिटॉक्स अच्छा साबित होए से ची, और हम के पढ़ाई ने बोले सब ने बोले किंडिक डिजिटल काय तो अच्छी रहे से जानो ने।
0: हाउ रहे से
1: हाले ये तो रेली डिजिटल डिटॉक्स चो गोट ने,
0: हाउ
1: मांतर
0: रहे
1: डिजिटल डिटॉक्स चो गोट के ताई तेवाऊं ने, आरु मैं बोलते रहे कार्यक्रम ने आगे बढ़ू बोलून बाती ने
0: हाँ
1: आगे तो बढ़वा कमला ने उनचो पहल हम चल गए ये जहाला मन बला से संदेश मन ने,
0: हाँ
1: तो या लिए मन बोले हम रहूं था।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है, ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: अले गोटमन तो होली कमला ने।
0: हाँ अले मनीराम एदाय मैं बलते रहे कार्यक्रम ने गीत मन के मूर करू।
1: हाँ
0: देखो,
1: हाँ आज कसन बोलन कि आज आमी गीत मन ने दरु नीलू से शीर्षक गीत ने।
0: हाँ,
1: तो आज चो गीत के मूर तो करवा और शीर्षक के सांगवा बोले, मंत्र मैं बोलते रहे कि हम जो संजोरिया संगवारी मन बोलते सुनून बाती चीता हम देखो तने कि
0: हाँ।
1: काय शीर्षक छो गीत दरलू से बोलून बाती, तो हाले आज फिर कौन फिल्म छो गीत हो ऐसे फिर हाले हम राउंड।
0: हाँ, आज जो पहली गीत आए फिल्म साजन का घर ने ले, स्वर दिला से अलका याग्निक और कुमार शानू, गीतकार आत समीर, संगीतकार आत नदीम

0: उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: तो कमला, ये गीत के सुनन बाती तो हम जो संगजोरिया संगवारी मान पक्का आज जो शीर्षक के चिता ला बोलू थी ने। कसन बोलो ने आज जो शीर्षक है नजर ने। और नजर बोले गोटोक असन है कि सब चोटोक दखतो अलग अलग नजर हो से ने। अगर बोलूत कि नजर बदलून देवा तो नजारा बदलून जाए दे, नजर बदलून देवा तो नजारा बदलून जाए दे, अगर हमी उताय बदलून देवा सोच के तो पूरा सितारा बदलून जाए दे। तो आई ची मानते रहे लाइन बोले कुबे सही है कि अगर हमी मतलब सब चोगोटोक दख्तों ने अलग नजर रहे से कि सब चोगोटोक असन बल हूँ जाए से कि कभी कभी हम इशारा इशारा ने उनचो पूरा नजर के समझून जाओ से कि उनचो तुचो इरादा का आया बोलून बात ही ने
3: जानू फैसा गया के
2: तो वाले पे रहता है असनी अदाए और गोटो गीत होता ने।
3: हम जो अगला गीत आए फिल्म आशिकी ले, स्वर दिला से अनुराधा पोडवाल, कुमार शानू, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। आले या सुनू एक गीत के

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: चल पहला मैं गीत सुनते रहूं कमला ने हासी की ने। एक टोक आशिकी फिल्म बॉलीवुड जो टोक बेहद लोकप्रिय और रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है और ये छो दुई भाग बन ली ने आशिकी और आशिकी टू। और ये इतना छो गीत मन एबे बले इतरो सुपर हिट आसो कि ये मन के हमी सुनते ची और सुनाते ची रोग बाय से सन ने
3: हम के बल सुनुक ची बाय से
2: तक गीत मन तो सुनाते ची रोवा और सुनते बल रोवा ने मानतर हम छो संग जोरिया संगवारी मन का जदा इसनी कार्यक्रम ने दरुनी दूसे वार्ता ने वार्ता हाय अस्त शिल्प और युवा उद्यमिता। अरे वार्ता के अंचल कौन हमरा है सोत
3: प्रशांत पांडे।
2: तो आले संगवारी मन अदाय सुनुंदकु कार्यक्रम ने वार्ता।
4: नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रशांत पांडे है। आज मैं हस्त शिल्प और युवा उद्यमिता विषय पर अपने विचार विस्तार से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह विषय केवल रोजगार या व्यवसाय तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति परंपरा आत्मनिर्भरता और देश के आर्थिक विकास से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। आज के आधुनिक और तकनीकी युग में जहां मशीनों और बड़े उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है वहीं हस्तशिल्प और की कला भी अपनी विशेष पहचान बनाए हुए हैं। भारत जैसे सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश में हस्तशिल्प केवल कला नहीं बल्कि हमारी सभ्यता और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। भारत को प्राचीन काल से ही कला और शिल्प की भूमि माना जा रहा है। हमारे देश के हर राज्य में कोई ना विशेष हस्तशिल्प कला देखने को मिलती है। राजस्थान की कढ़ाई और मिट्टी कला देखने को मिलती है, वैसी मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकारी, छत्तीसगढ़ और बस्तर की धातु कला तथा बस्तर शिल्प, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, कश्मीर की पश्मीना शॉल, गुजरात की कच्छ कढ़ाई, पश्चिम बंगाल की टेराकोटा कला तथा दक्षिण भारत की लकड़ी और पत्थर की नक्काकाशी विश्व प्रसिद्ध है। इन कलाओं में केवल सुंदरता होती है बल्कि हमारे पूर्वज की मेहनत, अनुभव, धैर्य और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। आज के युग में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। हर युवा सरकारी नौकरी नहीं पा सकता, इसलिए अब समय की मांग की युवा केवल नौकरी खोजने वाले न बने बल्कि रोजगार देने वाले

0: बने। यहीं पर युवा उद्यमिता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उद्यमिता का अर्थ अपने विचार, कौशल और मेहनत के आधार पर नया व्यवसाय शुरू करना। हस्तशिल्प ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम लागत में भी व्यवसाय शुरू किया जा सकता है और धीरे धीरे उसे बड़े स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। आज का युवा रचनात्मक सोच रखता है और नई तकनीकों को जल्दी अपनाता है। यदि यही युवा पारंपरिक हस्तशिल्प और आधुनिक डिजाइन और मार्केटिंग के साथ जुड़े थे तो यह क्षेत्र बहुत आगे बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, पहले हस्तशिल्प की वस्तुएं केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित रहती थी, लेकिन अब इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दुनिया को छोटा बना दिया है। युवा आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के माध्यम से अपने उत्पादों को देश विदेश तक बेच सकते हैं। इससे न केवल उनकी आय बढ़ती है बल्कि भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलती है। हस्तशिल्प की सबसे बड़ी लाभ यह है कि इसमें स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशलों का उपयोग होता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। गांव में रहने वाले कारीगरों को यदि सही प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और बाजार उपलब्ध कराया जाए तो वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। युवा यदि इस क्षेत्र में आगे बढ़ाए तो वे अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इससे बेरोजगारी कम होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। सरकार भी हस्तशिल्प और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चला रही है। स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। इसके अलावा मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे व्यवसाय शुरू करने के ऋण की सुविधा भी दी जा रही है। कई प्रशिक्षण केंद्रों और हस्तशिल्प मेलों में माध्यम से युवाओं को नई तकनीक और बाजार की जानकारी प्रदान की जाती है। इससे युवा आत्मविश्वास के साथ अपना व्यवसाय शुरू कर सकते। आज हस्तशिल्प केवल पारंपरिक वस्तुओं तक सीमित नहीं, युवा अपनी कल्पना शक्ति और नवाचार के से अधिक उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं, जैसे बांस से पर्यावरण अनुकूल वस्तुएं बनाना, हाथ से बने आभूषण, सजावटी सामान, कपड़े, बैग और घरेलू उपयोग की वस्तुएं बाजार के काफी लोकप्रिय हैं। लोग अब मशीनों से वस्तुओं की बजाय हाथ से बनी वस्तुओं को अधिक पसंद करने लगे हैं, क्योंकि उनमें अलग पहचान और कलात्मकता होती है। हस्तशिल्प पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिकांश हस्तशिल्प उत्पाद प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों से बनाए जाते हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, तब हस्तशिल्प उद्योग इको फ्रेंडली उत्पादों के माध्यम से एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आया है। युवा यदि इस दिशा में कार्य करे तो वे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अच्छा व्यवसाय भी कर सकते हैं। हस्तशिल्प और युवा उद्यमिता का संबंध केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने का माध्यम भी है। जब युवा पारंपरिक कलाओं को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमारी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहती है। यदि नई पीढ़ी इन कलाओं को नहीं अपनाएगी तो धीरे धीरे नई परंपराएं, कलाएं समाप्त हो सकती है। इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे अपनी संस्कृति को समझे और उसे आधुनिक रूप देकर आगे बढ़ाए। हालांकि इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी है, जैसे पर्याप्त बाजार की कमी, आधुनिक तकनीक की जानकारी का अभाव और बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा। लेकिन युवाओं को सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सरकारी सहायता मिले तो वे इस समस्याओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाए ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सके। अंत में यह कहना चाहूंगा कि हस्तशिल्प और युवा उद्यमिता भविष्य की मजबूत नींव बन सकते हैं। यह क्षेत्र न केवल रोजगार देता है बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। आज का युवा यदि अपना कला, मेहनत और नई सोच का सही उपयोग करे तो वह केवल सफल उद्यमी ही नहीं बनेगा बल्कि देश की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। आइए हम सभी मिलकर हस्तशिल्प को बढ़ावा दें, युवाओं को प्रोत्साहित करें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। धन्यवाद।
1: काय सुंदर नंगत वार्ता रैली कमला ने हस्तशिल्प और युवा उद्यमिता और दखे बेचू समय हसना है कि हमी इतरो लोग हुलु कि हम के हर माने के नौकरी मीरो बोल देने नहीं होए से ने
2: हो नहीं मीरे से
1: कहीं ना कहीं मतलब हम के आप लो हुनर आप लो कला के दखन बाती वाले हमी रोजगार स्वरोजगार कर सकू ने कि जसन हस्तशिल्प ये चित्रण भले असन ये बल खूबे नंगत खाए तो आई एक बोले हमी हम जो इतना बोलूत कि हुनर तो उमर जो कोई बंधन रू नो आए उनर बस उनके लागू आए मेहनत हरू समय ये दोनों के दिले दिलू जाले हमें कई चीवल काम के मतलब हम जो हुनर के दखलू जाले तो आदमी के भी असफल नहीं हुए बोलो हाँ। तो ये तो रेली वार्ता ने तो अदा मैं बोलते रहे फिर कार्यक्रम ने आगे बढ़ू और गीत मन बाटे जाऊँ बोलूँ बाती कसन
2: हाँ।
1: तो हाले अदा अगला गीत कौन आए फिर
2: आम जो अगला गीत है फिल्म तुमसे अच्छा कौन है स्वर दिला से तौसीफ अख्तर गीतकारात समीर संगीतकारात नदीम श्रवण
1: तो वाले संगवारी मन या फिर सुनंदकू अगला ये गीत

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: कमला, अले गीत गोविंद तो होते चिरे देने आरु हमी रोज दिन हम चो संजोरिया संगवारी मन का जे ज्ञान दिया आमचो गोट मन बल दरुनी रू हमने असनी आजी बले आमचो लगे सामान्य ज्ञान चो गोट मन हासे तो मैं बोलते रहे के बले हम रहू ने
3: अले हम रहू का
2: हाँ। तो संगवारी मन आजी चो पहल सामान्य ज्ञान चो गोट है आमचो भारत देश चो यूपीआई बल्लो ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये दुनिया चो सबले सफल डिजिटल भुगतान प्रणाली है और ये के NPCI मतलब ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा के विकसित कर लो रहा से हर चो ये भारत ने वित्तीय लेन देन के सफल हारू पारदर्शी बनात काजे ये चो निर्माण होली से ने
3: हाँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो अनुसार टीकाकरण दुनिया चो सबले सफल स्वास्थ्य पहल आए जोन पोलियो जसन रोग चो
2: उन्मूलन करने का है तो और उन संगे संगे COVID-19 जसन महामारी मन के बल लड़तो ने कुबे सहायता कर ली ने
3: हाँ कर ली
2: हाँ। अदायसनी आए संगवारी मन संयुक्त राष्ट्र बोलो ने यूनाइटेड नेशन जो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के हो रही जे चो मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बनाउन बरकरार संगतो आए और ये चो मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका ने आसे।
3: G20 विश्व चो प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था चो गोटोक अंतर सरकारी मंच आए और ये वैश्विक आर्थिक स्थिरता जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जसन मुद्दा मन ले समन्वय करवाए।
2: हाँ तो संगवारी मन ये तो रेली हजी चो हम चो सामान्य ज्ञान चो गोट तो कमला अदाय बलू भले से पैर गीत बाटे जाऊ ने तो अदाय गीत आए संगवारी मन फिल्म डर ले मानतर हम के बे डर तो नो आए संगवारी मन हम के हरिक ने एक गीत के सुन तो रहा है फिल्म डर ले और एक स्वर दिलासो उदित नारायण आनंद बक्सी चो लिख लो गीत के संगीत ले साजा लासोत शिवहरी तो आले सुनुंद कुपेर है गीत के।

0: डर, ये फिल्म 1900 दशक में रिलीज हो लोगो बॉलीवुड क्लासिक फिल्म रली जो मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म रली। हर ये फिल्म ने जुनून और डर के सिनेमा के रूप ने प्रदर्शित कर द कलर रली ने। और ये फिल्म यश चोपड़ा चो निर्देशन ने बनलो फिल्म रली संगवारी मन। और ये फिल्म ने शाहरुख खान, सनी देओल और जूही चावला मुख्य भूमिका निभाव रो। तो कमला अदाय पेरसनी गोटो गीत आसे ने याले एके बले हमरा हूँ बोलते रहे।
1: हाँ, हम जो अगला गीत आए फिल्म कल की आवाज, स्वर दिला से आशा भोसले, कुमार शानू, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। अलैया सुनू ए गीत के।

0: कमला, द का आसन आए कि आजकल जो समय आसन होली से कि गाम दिन बोला है ने, और ये गाम दिन ने हमके ऐसा कितरी आप लोग शरीर के ध्यान देते और बोले हो ऐसे ने कि ये गाम समय ने हमके कहा कि हम जो पानी ज़्यादा पानी पीऊ तो रहा है, हम जो सेहत के ध्यान देते और जैसा कि नडेर पानी होली नाले कीड़ा होली ने असन चीज मन के असन भी तिमन के ज्यादा खाद लेन का है कि हम जो शरीर अच्छा रहे से ने
1: और अच्छा
0: गाम बले एबे जो समय आसन होली से कि गाम आ जा इतरो गाम हो से कि उन गाम की हम के सब सब चीज नहीं मतलब जेलू के नहीं होए ने
1: डंडी खड़े रोक नहीं होए उब रोक नहीं होए
0: आरु सीध बल लेन पर सीध बले हुसनी ने तो एबे मतलब जलवायु परिवर्तन तो लागू ने सब होते जाए से ने और दक हम ही दाए मौके तो असन लागे से कि गड़ी बाढ़ देख लेने हम छो जा तो समय अवल हो ऐसे असन ने और दका असन
1: हम तो जातो समय अवल हो ऐसे
0: मांतर दक बोलुआत कि जातो लोग का जे बाढ़ बड़े रतो लोग का जे ठान बड़े बोलन बाती ने हाँ जसन कि गोड़ गोट ने गोड़ बाड़े तेल फूल ने पीला बाड़े ने मैकेनिक उनके ना सुन रहे गोड़ गोट ने गोड़ बाड़े तेल फूल ने पीला बाड़े जातो लोग का जो बाढ़ बड़े रतो लोग का जो टान बड़े ने मानतर है बे आम चुका जे उंचो लेवल बड़े बोले ने समिया बड़े ने आले जातो समिया हो से तो मैं बोलते रहे आमचो संगजौरिया संगवारी मन संगे विदा मांगू पे ने
1: हाँ मांगू
0: हाँ तो जातो पूरे युवाणी कार्यक्रम सुन तो सब पाए संगजौरिया संगवारी मन के माए मनीराम बगेर
1: और मैं कमला मौर्य
0: हमें दोनों करूँ से
1: जुहार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, वो रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम

0: के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं।

0: मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के छह बजकर दस मिनट होने को है। थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ी समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय कृषि विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के आयोजन करेगिस। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ समेत 12 ठिन राज्य ल 10,021 करोड़ रूपया ले ज्यादा के राशि स्वीकृत करेगे है। और रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज ले राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाते। महोत्सव के शुभारंभ राज्यपाल रमेन डे का करें। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय कृषि विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के आयोजन करे जाते करेगिस। सम्मेलन संबोधित करत केंद्रीय मंत्री श्री चौहान है कहिन कि अबले हर राज्य ल अपन एग्री क्लाइमेटिक हालात उपलब्ध संसाधन और स्थानीय संभावना के आधार में कृषि रोडमैप तैयार करना चाहिए। केंद्र सरकार वैज्ञानिक संस्थान और मंत्रालय के पूरा टीम राज्य के संग ए दिशा में काम करे बर तैयार है। श्री चौहान है कहिन है कि भारत है खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करे है। तिसरैया अग्रिम अनुमान के अनुसार देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन करीबन 376 मिलियन टन ले ज्यादा है, जौन अब तक ले सबले ज्यादा है। उमन कहिन कि चौर उत्पादन में भारत विश्व में पहली स्थान में पहुंच गिस है। सम्मेलन में प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम घलो शामिल हुई। ए मौका में कृषि मंत्री श्री नेताम हकीन के छत्तीसगढ़ अब परंपरागत धान के खेती के संग्रह फसल विविधीकरण डिजिटल तकनीक और पर्यावरण अनुकूल स्थायी कृषि के एक नवा युग में आगू बढ़ा थे। राज्य सरकार नवा अंजोर विजन 2047 के जरिया राज्य के लगभग 40 लाख किसान परिवार मन के आर्थिक उत्थान पर काम कर रहे। एमा 82% लघु और सीमांत किसान और 31% अनुसूचित जनजातीय के किसान शामिल हैं। कृषि मंत्री है बताइन कि सरकार के लक्ष्य किसान ल गुणवत्तायुक्त बीज संतुलित खातु उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ समेत 12 ठिन राज्य ल 10,021 करोड़ रूपया ले ज्यादा के राशि स्वीकृत करेगे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ए फैसला के स्वागत करत कहिन कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अगुवाई में हर गरीब ल पक्का घर के संकल्प तेजी ले पूरा होवा थे। उमन कहिन कि इस सहायता ले छत्तीसगढ़ के हजारों ग्रामीण परिवार मन के पक्का घर के सपना साकार होही। मुख्यमंत्री है कहिन कि राज्य सरकार जम्मू पात्र परिवार तक योजना के फायदा समयबद्ध और पारदर्शी तरीका ले पहुंचाए बर प्रतिबद्ध है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज ले राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाते। 3 दिन के महोत्सव के शुभारंभ राज्यपाल रमेन डे कहा करें। उन्हें समारोह के अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करें। ए मौका में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीन। ए महोत्सव में छत्तीसगढ़ समेत आने आने राज्य के आम उत्पादक शामिल हुआ थे। समारोह संबोधित करत राज्यपाल है कहिन कि ए महोत्सव हमार किसी परंपरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था उद्यानिकी नवाचार और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के उत्सव है। उन्हें मुख्यमंत्री है राष्ट्रीय आम महोत्सव ला प्रदेश के किसान मन ला फायदेमंद बताइन है। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय डहाले रखे गए ए महोत्सव में आम के आने आने किस्म के प्रदर्शनी लगाए गए है। ये प्रदर्शनी हर एक दिन मझनिया 12 बजे ले रतिहा 9 बजे तक आम लोगन मन पर खुला रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान है नीट पेपर लीक के घटना ल दुर्भाग्यपूर्ण बताए है। श्री प्रधान है आश्वासन दीन है कि नीट के पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीका ले बिना कोनो गलती के संपन्न करे जाही। छात्र मल्ला संबोधित करत श्री प्रधान है ओमल्ला आश्वासन दीन कि

0: ले 22 जून तक जारी करे जाही। उहें दूसरैया चरण के चयन सूची 26 जून ले 3 जुलाई तक और तीसरैया चरण के चयन सूची 8 ले 12 जुलाई तक जारी करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़वो पांचे समाचार कोती। पद्मश्री सम्मान ले अलंकृत डॉक्टर सुनीता गोडबोले और डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले ह आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले सौजन्य भेंट करीन। मुख्यमंत्री ह उमन के उपलब्धि में बधाई और शुभकामना दीन। संग्रह मुख्यमंत्री ह बस्तर के दूर दराज के जनजाति अंचल में दशक भर ले निस्वार्थ चिकित्सा प्रदान करे के उखर योगदान के सराहना करीन। उन्हें गोडबोले दंपत्ति ह आज वित्त मंत्री OP चौधरी ले घलो भेंट करीन। ए दौरान श्री चौधरी ह उमल्ला ए राष्ट्रीय उपलब्धि पर बधाई और शुभकामना दीन। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला के पुलिस आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी मन ले मिले सूचना के आधार में एक ठिन संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान चलाईस। ए दौरान सुरक्षा बल मन गढ़चिरौली नारायणपुर सीमा के जंगल में संचालित करे जात माओवादी मन के हथियार निर्माण केन्द्र ले हथियार विस्फोटक और शस्त्र बनाए के जिनीस जब्ती करीस। जब्ती करेगे कई ठिन माओवादी जिनीसला घटनास्थल में ही नष्ट घलो करेगीस। सुनई अमल ने बता दें कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में मे बखत ग्रीष्म लहर और मानसून ऊपर रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी ले गए विशेष भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। इसका प्रसारण काली 30 मई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले FM और प्राइमरी चैनल में बिहानिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। और अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक ठिन द्रोणिका मध्य पाकिस्तान ले अंदरूनी ओडिशा राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर छत्तीसगढ़ तक फैले हैं। उन्हें ऊपरी हवा के चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्व मध्य बंगाल के खाड़ी में बने हुए है। एकर अलावा बंगाल के खाड़ी ले नमी के आगमन सरलक हुआ थे। एक स्थिति प्रदेश के मौसम में बदलाव हो के संभावना है। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के जम्मू संभाग के एक दो जगह में गरज चमक के संग अंधर चले और गाज गिरे के चेतावनी दे हैं। उन्हें कुछ एक जगह में हल्का वर्षा हुए या गरज चमक के संग छींटा पड़े के आसार है। छत्तीसगढ़ सरकार नियत निलारार योजना 2.0 के तहत वामपंथ उग्रवाद ले मुक्त क्षेत्र और वनांचल के जम्मू ग्रामीण मनला जन कल्याणकारी योजना ने जोड़ के 100% फायदा पहुंचाही। मुख्य सचिव विकासशील के अध्यक्षता में मंत्रालय में रखे गए उच्च स्तरीय बैठका में ये योजना के रूपरेखा में आज चर्चा करेगी। योजना के तहत दूसरे चरण में 31 ठीन व्यक्तिगत हितग्राही योजना 14 सामुदायिक सुविधा और 10 ठीन जरूरी सेवा गांव गांव तक पहुंचाए जाही। अब थोरकुन समाचार सारमा। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के टीम कोरबा जिला के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के तुमान में चलत सुशासन तिहार समाधान शिविर में एक झिन लिपिक प्रदीप मिश्राला 40,000 रूपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। बालोद जिला के पुरूर थाना पुलिस स्कूटी ले गांजा तस्करी करत एक झन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। एकर कराले 12 किलो ले ज्यादा गांजा बरामद करे गए है जेखर कीमत 6 लाख रूपया ले ज्यादा बताए गए है। और रोजगार कार्यालय रायपुर को तिले अस्थिबाधित दिव्यांगजन मन बर 5 जून के शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैनन बाजार में विशेष रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। केंद्रीय कृषि विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ समेत 12 ठिन राज्य ला 10,021 करोड़ रूपया ले ज्यादा के राशि स्वीकृत करे गए है। और रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज ले राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाते। महोत्सव के शुभारंभ राज्यपाल रमेन डे का करें। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 होने को है। आइए सुनते हैं भत्री लोकगीत। गायक स्वर है भीमसन बघेल और साथियों का।

श्रोताओं, लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भतरी नाटगीत, गायक स्वर्था भीमसेन बघेल और साथियों का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। सोलर पैनल कब से?
1: जी ने कहा,
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़। क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब हर राज्य को अपने एग्री क्लाइमेटिक हालात, उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय संभावनाओं के आधार पर कृषि रोडमैप तैयार करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रूपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आम महोत्सव का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने, अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब हर राज्य को हालात रोडमैप तैयार करना चाहिए। केंद्र सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और मंत्रालय की पूरी टीम राज्यों के साथ इस दिशा में काम करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि चावल उत्पादन में भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है।
11: रोडमैप आपको बताया, कुछ राज्यों का बनाया जाट सब बता रहे हैं, मैं जी जान से आपके साथ लगूंगा, केंद्र की पूरी टीम आपके साथ लगेगी। किसी भी दिशा में खेती को मत जाने दीजिए, राज्य के एग्री क्लाइमेटिक कंडीशन को देख के कौन सी फसल की कौन सी वैरायटी हम कैसे करें वो तय कीजिए। हम साथ आपके खड़े हैं। हर एक राज्य से मैं अपील करूंगा, आप अपने कृषि का रोड मैप, हमारे साइंटिस्ट तैयार है, हमारे अधिकारी तैयार है, हमारी योजनाएं आपके लिए हाजिर है और मैं भी हाजिर हूं बिल्कुल सेवक के नाते काम, लेकिन हर एक राज्य का कृषि रोड मैप बन जाना चाहिए कि हमको किस दिशा में खेती को हमारी ले जाना।
10: सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिकों से कहा कि वे किसानों की जरूरत के अनुसार तेज व्यावहारिक और मांग आधारित शोध करें। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे खेत बचाओ अभियान के माध्यम से किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि 1 से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में जनप्रतिनिधि, वैज्ञानिक, अधिकारी और किसान मिलकर खेत स्तर पर जागरूकता बढ़ाएं। सम्मेलन में राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी शामिल हुए। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार नवा जोर विजन 2047 के जरिए राज्य के लगभग 40 लाख किसान परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर गरीब को पक्के घर का संकल्प तेजी से पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सहायता से छत्तीसगढ़ के हजारों ग्रामीण परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र परिवारों तक योजना का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इस डिजिटल एप्लीकेशन का उद्देश्य देशभर के स्कूलों और कॉलेजों को तंबाकू मुक्त बनाना है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका ने किया। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल हो रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस महोत्सव हमारी कृषि परंपरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उद्यानिकी नवाचार और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। वहीं मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आम महोत्सव को प्रदेश के किसानों के लिए लाभदायक बताया है।
12: और भी किसान यहाँ पर आए हैं, उनको भी एक जानने का अवसर मिलेगा कि आम की खेती कैसे की जाती है। और आज जहाँ हम लोग अपने देश के किसानों की आय दोगुना करने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो उसमें उद्यानिकी विभाग और आम की खेती ये भी एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होने वाला है।
10: उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में आम की विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की पुलिस ने आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली सूचना के आधार पर एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने गढ़चिरौली नारायणपुर सीमा के जंगलों में संचालित किए जा रहे माओवादियों के हथियार निर्माण केन्द्र से हथियार, विस्फोटक और शस्त्र निर्माण सामग्री बरामद की। बरामद कई माओवादी सामग्रियों को घटनास्थल पर ही नष्ट भी किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पद्मश्री सम्मान से अलंकृत डॉक्टर सुनीता गोडबोले और डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले ने आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने उनकी इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने बस्तर के सुदूर जनजातीय अंचलों में दशकों से निस्वार्थ चिकित्सा सेवा प्रदान करने के उनके योगदान की सराहना की। वहीं गोडबोले दंपत्ति ने आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी से भी मुलाकात की। इस दौरान श्री चौधरी ने उन्हें इस राष्ट्रीय उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण की चयन सूची 16 से 22 जून तक जारी की जाएगी। वहीं दूसरे चरण की चयन सूची 26 जून से 3 जुलाई और तीसरे चरण की चयन सूची 8 से 12 जुलाई तक जारी की जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका मध्य पाकिस्तान से अंदरूनी ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से नमी का आगमन लगातार हो रहा है। इसके असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं कुछ स्थानों में हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। के तहत इस बार ग्रीष्म लहर और मॉनसून पर रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 30 मई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा एफएम और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी रिले करेंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मोहला मानपुर जिले के जनजाति संस्कृति सुरक्षा अभियान के तहत महासभा का आयोजन किया गया। इसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के तहत 27 से 30 मई तक मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर व्यापक जन जागरूकता और निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के तुमान में चल रहे सुशासन तिहार समाधान शिविर में एक लिपिक प्रदीप मिश्रा को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले के पसान तहसील के पटवारी को एक किसान से 10,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। बालोद जिले की पुरूर थाना पुलिस ने स्कूटी से गांजा तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 12 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। और रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा अस्थि बाधित दिव्यांगजनों के लिए 5 जून को शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार में विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार नियर नीलानार योजना 2.0 के तहत वामपंथ उग्रवाद से मुक्त क्षेत्रों और वनांचलों के सभी ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर शत प्रतिशत लाभ पहुंचाएगी। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना की रूपरेखा पर आज चर्चा की गई। योजना के तहत दूसरे चरण में 31 व्यक्तिगत हितग्राही योजनाएं, 14 सामुदायिक सुविधाएं और 10 आवश्यक सेवाएं गांव गांव तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार द्वारा ग्रामीणों को मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि, महतारी वंदन योजना और कौशल विकास जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब हर राज्य को अपने एग्री क्लाइमेटिक हालात, उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय संभावनाओं के आधार पर कृषि रोडमैप तैयार करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आम महोत्सव का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने, अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: राम राम चालकी भाटो, राम राम
1: अमर लिस्ना झाड़ा अरे राम राम
0: राम अमर ले रहा
1: आम्ही तुझ जुआर भेट राम राम करलू मात्र तक संगे संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनतो सप्पाई गांवकारी दादा दीदी भाई बहन सियान सजन मन के मैं चालकी
0: और मैं झाड़ा
1: आम्ही दोनों करू से
0: राम राम
1: दख ना झाड़ा आम्ही तो आमचो गांवकारी दादा दीदी बहन भाई बहन मन का जे समय हो लेने ज्ञान ध्यान चो घोट गीत गोविंद धरू ने उसे चीज ने
0: तो आचे
1: मंत्र दख की आमचो गांव वार्ड चो जो जीवना है जुगे करून दख आजकल तो बाढ़ती चो जुग आए और शहर कटाकटा चो लोग मन बोले कि धीरे धीरे आप लोग पारंपरिक जीवन आके भुलकते जाए
0: भुलकते जाता मात्र ये भी बोले हमी दख मानी देहात बाटे बोले नाम चो गांव बाटे
1: तो हूँ
0: रान बाटे तो हम ये ताले शहर ले कुनिक दूर जा मातो हूँ तो आम चो जोन परंपरा बेराल कथन खाते रोला कथन जीवते रोला कथन ये साग भाजी बल खाए था हूँ चीज के आम के दख बल मीरे से
1: मीरे से और सत्य गोटा है कि जैसा ये आम चो पारंपरिक तो ये खातो बीती गोट निकाल सुरता ही कि आमी जोन बोले साग भाजी खाऊ से ने आजकल तो खत सरकारी खत बीती साग भात मन खाऊं से मंत्र दक आगे जुगे चो लोग मन जैसा ये भी बोले कोनी कोनी बाटा हम दुकवाम टोटा भाजी होली कोलियार भाजी होली मुनगा भाजी
0: मुनगा भाजी होली
1: ये जो सप्पाई जिनिस मन आए नी ये था ने ना कहीं बीमारी लगे से ना ही कहीं खत दवाई लगाए सो
0: हूं तो आज जतन का तेतर के दकवा तेतर बोला मैं बूटा लगा तो बेरा हम कहीं दे से कोलियारी भाजी बोल नहीं दे मतलब ये आम चुका जहन की बनु से ये भी उनके काय बोल सो उर्वरक खेती बनु से तो हुनी टाइप चु बीते मन ये मन होए थे
1: और ये तो खातो जीनिस होली और हुन मन चो जीवना बल दक बिया ने उठले ने आप लो जोन बले गाय बैल जोन बल घरे पशु जनावर आस हो थुन चो संगे बाड़ी खाड़ी चराक ने तोर आय हुन मन के खोआ पीजा कर तोर खिनी कादक जोन बले साग भाजी मना से हुनके कर तोर ने और जसन आगे जुगे लोग मन चाउर के बोले कमिच खातरो चिकमा
0: कोसरा
1: जोंदरी असन जिनिस मन के खाते रहो
0: हुतलन असन बलो थे जसन की एबे बेर बसली आगे का करत रोला नाचते रोला गावते रोला तेबे हुन परंपरा बेरा बोले बे गीत मन के बोले बे फुलक सोत तो काय आम के सियान मन संग बोसुन बाती बिया घरे हो चाहे देव घरे हुन सिकुक बल पड़े था
1: सत्य गोट के बोले
0: तेबे आम चुन जीवना बल काय होते काम चु नहीं आम चे दादा बेरा असन गीत गाते रहो ना असन देव बनाते रहो ये भी ती आम चे जीवना का जे खूबे जरूरी बला
1: और संगे संगे दख की आगे जुगे जो गांव बाट चो हम घर मन दखते रहो ने खड़ के छाऊ रहो नाल कहीं पाना पोती छाऊ बाती माटी चो घर रहते रहे अभी तक बिल्डिंग बीती कुड़िया बनाए सो और पकना खपरा जगह सीट मन छाए तक आगे चो घर मन दख कितलो शीतर लागते रहे माटी चो घर खड़ के छाऊ रहते रहो नाले खपरा के छाऊ रहते रहो ने तो शीतर लागते रहे मात्र आजकल तक की उन सिरमिट सीट असन बीती है इसे नाले आमचो जो ढली बीती कुड़िया बनाए सो हूँ तो आता काय घाम दिने काय लक लकुन जाए से
0: ये भी बोला मैं दक वहाँ ये भी नौ तपा बनुस तो काय होए थे बे खूबे खूबे मतलब घाम बल छे कैसे ये भी काय होए था हम के उन चीज के सब के बचाक बल पड़ोन बात हम के रुक बल राही बल रपुक बल पड़े
1: पड़े से अर्ध की कोनी लगे छाए आए बोले कौन तो रुक खा ले जाओ उन बोसुन जाते रहो ने बल तो गोटे है कि जो आगे चो जीवना रहे कितलो अस्थिर और जोन के आम चो सहरिया मन बोलवा स्वस्थ जीवन रहे ने काई चीज चो लोभ लालच नहीं आप लोग का जे जीवत खाओत अस्थिर ने रहते रहोत कोची संग हिरका कुचर नहीं बोलो असन ने अरे वे तो दक की हाय हाय करुन करुन जीवना जी ने बिया ने उठले कुली भूती संच की ले घर दुआर खातो बीती जीनी सासे कसन न्याय कसन
0: अब मतलब आम के सोचुक बोल पड़े थे कि नहीं मच का नुआ कपड़ा लागे थे उन गाड़ी घेने थे मैं मोटर घेने असन टाइप चे भी सोच मन ही ले
1: सोच मन
0: आगे का है कि दिन भर काज कमाते रोला जंगल ले जौन बाती का जौन बोल मीरे थे उनका खाते एते रोला उन आगे जीवना नगद जीवना रोली मात्र ये बोल जीव जन नगद जीवना मात्र का है कि ओरिजिनल जीवना हुदली दाय रोली
1: सत्य गोटा है कि उसन जीवना ये भी आम के नहीं मीरे कसन बन लेने भारतीय चुजुगा है और असन समय ने खिनिक बोले बदलुक पड़ुआ है भारतीय संघ खिनिक हिंडुक पड़ुआ है नाल फिर आमी एकदम पाटकुत
0: पाटे
1: रहूं दे मंत्र आप लोग

0: दूध घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तक टैक्स तुन और सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडो लेकिन 18% टैक्स की सितोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडो 18% टैक्स की सितोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का न गाड़ी 1% जीएसटी मोला तेने दोरकिता अदेन के और सोबेर कम टैक्स त गाड़ी बने मास मंता।
3: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
4: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बना तो कंपनी अरु घेन तो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एच संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम भले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी और 3 चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: हाँ तो झाड़ा
6: हाँ तो ये नगद गोटमन के सुन लू ने राम चिले गोटोक मोच मोन्ट्रा ने गोटो कहनी आ ना
5: सर।
6: हाँ ये कहानी है गोंडी कहानी तो ये
5: कहानी कौन सांग सो
6: ये कहानी के मैं सांगे आल पहले सुनू था नहीं
5: असन।
6: हाँ
5: तो वाले कहानी गोंडी कहानी के सुना होता और सुना तो भाई चुनाव के आमी पाचे सांग
6: आले आले
7: पीटो पीटो ले रा
8: ले रा
7: आयो बारा खेवाले ले गतो
8: हिंगो ले रा
7: मुने दिया तोर सयन क मंदूर ले रा
8: हिंगो ले
7: इले र बारा खेवाले ले रा
8: हिंगो ले रा
7: मुने तो

0: अचोन सयान गुवार कतुर ले
1: इंगो ले
0: तोन बदम वर्ते करिया अरे तुर ले
1: इंगो
0: अचोन सोचे की तुर नीन विचार की तुर ले
1: इंगो ले
0: हुचुन पे कोर के भी टितुर ले
1: इंगो
0: हुचुमूल पे किस के भी टितुर ले
1: इंगो ले
0: अचोन तुम जा उदितुर ले
1: इंगो
0: उत्सोर उत्सोर पाटांग करे इतुर ले
1: इंगो
0: बदना पाटा वे हट दादा इतुंग ले
1: इंगो
0: वे होर बारा के वेर ले
1: इंगो
0: सोई पाटा वे हाट इतुर ले
1: इंगो ले
0: अगाड़ा सोई के इंदुर ले
1: इंगो
0: सोई के सीन बदाम तिंदा ना इतुर ले
1: इंगो
0: अचो नमर पाटा वह को मितुर ले
1: इंगो
0: अचो नयोर

0: 아우씨, 레아, 소체킨둥, 레랑.
1: 빙고
0: 아요셉, 다다, 보담민다코, 민둥, 레랑.
1: 빙고
0: 구지, 무징하여.

अभी आप हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीणों का कार्यक्रम आमचो गांव।

0: हाँ मुरलीसना झाड़ा
1: हमारे चाल की भाटो
0: अरे जुआर ना
1: जुआर ना काय गरम ना एबे
0: काय संगुआस। आजकल तो नौ थपा बोल पड़े से और घाम बोल दक कौन बेरा पानी मारून दे ऐसे और कौन बेरा घाम फेकून दिले से एकदम दक लक लक लक लक असन लाग ऐसे
1: हम तो
0: ने।
1: आज जानू
0: अरे भी दक संज बेरा बोले हम जो गांव करी दादा दीदी मन बोलने घरे घरे पोस लाज में कौन लोग धुकी होए सो रान तो मेहरार मन तो तारो नीरो पसना होला से खोली
1: हूँ तो आज
0: भीतरे
1: जानू और कोनी कोनी बोले कुछ घर कूलर आते कुछ घर पंखा नाला हमारे रुख खा लेते तो रुख छाए बोल बतला
0: हाँ।
1: सो
0: और कोनी कोनी बाटे बजार मंडिया सन बोले दिन हिसाब ने होते
1: होए
0: बोले
1: तो
0: रहे
1: होए तो
0: से
1: जतरा
0: ने।
1: पानी बोल आजकल तो दिन आए
0: हाँ
1: तो असन बीती काम मन बोल होए
0: और
1: थे चीने
0: कई कसन नाम जो गांव कर दादी दी मनात ने कोनी पलहा पकाया बीता बुन तो बीता जो न धार बेड़ा मनाए बुनुक बोले मुरिया ला
1: मुरिया
0: से
1: ला
0: ने।
1: तू तो आज जाने भी का ये कौन कौन खत मल बल देख मुरिया ला
0: और
1: थे
0: कोनी कोनी रोपा पलहा बोल पकाला गिरो
1: पकाला था।
0: पकाई ने
1: हाँ
0: तो उन सब पाए गांव के दादा दीदी भाई बहन मन के मैं चाल की
1: और मैं झाड़ा
0: आमी दोनों करूं से जुहार।
1: जुआर
0: देखना आमी तो समय होले नमरू से ने
1: हाँ
0: मंत्र दक कि ये भी आमी धान चो फसल चो कमानी बीती माई मूरा सन होय से
1: माई
0: ने
1: मूर कमानी बोले नाम चे भी धान आए ची
0: चमास
1: ने।
0: बेराज ने।
1: हाँ
0: देख मंत्र कोई किसान भाई मन लगे पानी सुविधा आ जाए उन मन जटा फसल बल लगाओ रुआ ने
1: हाँ
0: साग भाजी हो नाले फिर कहीं धान
1: गुंदरी
0: जोंदरा
1: हो
0: हो
1: बांगा
0: कहीं
1: हो
0: हो
1: कहीं हो लगाऊ ची आत
0: लगाऊ
1: ने।
0: चिया मंत्र देख घाम इतलो होय से कि एकदम बियान पहाड़ तपलो असन लागे
1: तपलो
0: से।
1: असन लागे थे।
0: तो ये मन जोन आप लोग जोन बोले फसल लगाला से तो ये
1: हाँ
0: मन के आमी बोलूं से कि तुम्ही बियान पार पानी दिया नाले फिर संच के दिया
1: सांच के दिया
0: कसम बोल लेने तपलो देहे ने मतलब तपलो भूई ने पानी करिकाले नहीं तपलो लोहन पानी लिकान दाग चार करे जी उसन करू है।
1: उसने टाइप जो जमीन बल होए थे और भूई बल होए थे
0: हाँ
1: मंत्र आम के काया जो जतन की बेर बस्त बेराबल धकुक पड़े थे और बेद उत्त बेराबल आम के धकुक पड़े थे कि आम चो फसल ये बेच गरम दिन ने कथन आते बोलून बाती समय समय नाम के पानी बले खाद दोई सब देव पड़े थे।
0: पड़े से और असंग दखा रखा कर लेने का आम चो फसल बल निको रहे दे ने नाल जुगे पानी होले बोले नुकसान करे दे दख जुगे पानी होली बोले नहीं फसल लगे उन पानी तपे दे घाम ने
1: तपे धन
0: तपली बोले ने बूटा जो ना बोले आम चो फसल बूटा है उन तपलो पानी रलो असन होए दे
1: हाँ और वो तो
0: तो
1: फिर धीरे धीरे बूटा बोल सूखते जावे
0: सूखते
1: थे।
0: जाए दे।
1: हाँ
0: तो आप वोल कमा के दकुन बाती समय दकुन बाती पानी देव बियान पार बढ़ना देव खिनिक पातर एकदम बल जुगे नहीं
1: नहीं कम कम
0: और संच बेरा देव तेबे
1: हाँ
0: रात भर खिनिक बूटा मन के बोले सीतर लागे
1: सीतर
0: दे
1: लागे था और अस्थिर बोल लागे थे
0: लागे दे। तो तेबे का अच्छा बाढ़ती होली बोले आम चो फसल बोले अच्छा उपजन धरे दे ने।
1: ये तो गोट मन होली जन मातर आम से गोटोक नगद गोट बलाते आले नगद गढ़ के बोल सुनो
0: आले सुनन देव तेबे
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
5: GST काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की तकी सरकार सीमेंट तपोर्रो GST मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी की तांक आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमीद मिंदे लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओनले कटात बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% GST लगे माता की देन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: ये ना चाल की बात हो, गोट मन के सुन मत, तुझ मोंडरा खूब बड़े धक्का दे ना। हाँ,
0: बड़ी एक आज धक्का दे मोच मोंडरा। आज ही हम जो गांव कार्यक्रम सुन तो दादे दी मन का बड़ो हलवी नाटी का धर्म बाती ले से।
1: हाँ, ले काय नाम है ना उनचो?
0: ये हलवी नाटी का नाम है उदीम।
1: उदीम, अच्छा।
0: और ये नाटिका के लिखन रहो तो श्रीमती सुशीला बघेल और एक आमचे लग हमरा ऐसो बलबीर सिंह कच्छ। अले हलवी नाटिका के सुनाऊ था, फिर पाछे था भाग धरलो कलाकार भाई मंचु नाव के पाछे सांगो।
1: अले सुनो ते
6: राम राम राम राम ना ये लेखन राम राम
7: राम राम ना कमलू राम राम
6: खूबे दिन ले भेट होसिस ना। आजकल कहाँ रतर होए से जाले
7: काय के संग वाय ना
6: कसन
7: ए बे बारवी पास करून शहर बाटे आसे।
6: बारवी पास कर लीस?
7: हो हो हो। और ए बे नहीं कॉलेज हॉस्टल ने रहून पढ़ी करे से।
6: कॉलेज बोल गेली?
7: हो हो हो। मंतर तुई कसरे पढ़ाई के छाणो लीस ना?
6: ओए ना काय के संग वास 10वीं पास कर तो के उन पाटाम पडुक नि सकलु।
7: हसन कसन ने
6: ए बे काय के कुलीभूति एता उता करून जीवना चले से।
7: आय जानू मंतर एकमलू।
6: हाँ कसन
7: ये ना किंडिक एले के टंग टंगा आसे आले खिंडी के रुक छाय लगे जाऊं तो उठा गोठ्या वा
6: आ जाऊं।
7: हां आले ए लगे बोरिंग होली ने।
6: हां
7: बल्लो ने ए परा च लोग मन की ए बे पानी काजे काई तकलीफ नहीं होय काई नु?
6: नहीं नहीं नहीं होय। हाउ काय कल टेंडा हो तो के दूसर पारा ने पानी काजे जातोर डंड सरली।
7: हां
6: पानी बले काय सिया सीतर पानी निकरेस जानो।
7: आले ते भी के दिक हाथ पाँव धो ते भी ने।
6: हाँ आल धो धो धो।
7: मंतर कमलू किंड के लगे नजरों दखनू ये कल टेंडा चो रेटे रेटे दखुन दख।
6: दखे से तो पानी जातो के चिखल तो होए देच ना।
7: नहीं ना चिकल तो होए देची।
6: हाँ
7: उनके मैं नहीं बोले
6: कसन
7: मंत्र दख।
6: हाँ
7: ये बाटे दतुन कुची मन के छे दख नू कसन कसन पकाऊं दिला से।
6: ओ
7: अरे पानी के बोले सीधा खोदरा बाटे नी नेउन कौन बाटे निकला लोरा से चिकल होले बोले गुलाय बाटे चिकल होतोर काई नंगत आये ना।
6: ओए ना मैं समझ ली काय
7: काय के समझ लिस ना। ए कसन हास्ते जासिस ना अले काय होली गुने?
6: ना मैं जान ले तू होली सबर सर ले पोडलो बीता माने हुनी ने छुक छुका बीती गोट गोठी आसिस हुन कया आसिस
7: हसन।
6: और आमे आओ गंवरिया लोग गिन गिना ने रतो लोग आमी काय की छुक छुका पड़ी जानू दे ने।
7: अरे माने तू ही बोले आई तू ही मके ये सांग आमी इतनो संगे पढ़तो लोग आऊं कि नहीं आऊं?
6: पढ़ते रहलू।
7: हाँ देख पढ़ते रहूं तू ये था यासीस मैं सहरे गेले मांतर तू के देखूं ठेबुन भांती गोठियाले की नहीं
6: गोठियालीस जानू ना मांतर बोरिंग कल टेंडा ने पांडी टेंडलो ने चिकल होए देची ना। और दातुन कर तो लोग मन दातुन पत्थर करूं भांती कहाँ है ना हाले कहाँ है तो पका देची।
7: ये देना कमलू सुनता सुनता ये हासोर गोट नु आए हई
6: मोके हासु भाई से।
7: हां दख किनिक मोचे गोट की तू धीरे समझन भाती सुन
6: आले सुन सुन सुन
7: दख ए दातुन पतर करून कुची के तो पकाउची लागे देची
6: लागवे काय ओ
7: मंतर ए बाटे हुन बाटे पकाले गुलाय घिनगिना रलो ने लेहरा पानी बोले तो नसे से की नहीं काय कसन दख। और ए चोइले नहीं कितरी किसम चो बीमारी सीमारी मन मले जोंटे सोत उपड़े सोत हई
6: हई हई
7: सपाए के नुकसान हुए से समझिस की नहीं
6: समझिस तो गोट के मांतर लेखन तू ही जानू मोके तो बलसीस। ये गुलाय गांव भर चो लोग के कौन समझाए दे
7: कोनी काके समझाओ कि नहीं समझाओ आम के आपन के समझाओ को लागे दे दख।
6: हाँ।
7: कोनी करो कि नहीं करो आम के करुक लागे दे कसन
6: ये ना तू तो सहरे पड़ू गेलीस जाले ज्ञान तो खूबे सीखलीस ज्ञान के बाटसीस बले मानतर ये गुलाय घिन घिना ठान मन के सफाई कर तो काजे काय तू हाते रापा तगाड़ी बले धरुक लागू सकसे टोंड ने बल तोर सरल आय जानू ना करुण दखाले तो
7: दक कमलू तू ही मोचो संग देस आमी गांव वाली लोग मन के बले समझावा
6: आले तेवे

0: कसं ना लेका मन, ए बिहान बिहान रापता गड़ी धरून कहाँ निकरलास?
1: ए देना काका, ए बोरिन लगे जाऊं से काय? अले तुई बोले आओ नू आमचो संगे।
0: काय बनावा साहस ना बोरिंग रेटे, अले मैं बोल येऊन दखेन तो।
2: ए ना लायखन, आई डबी धरलीस कसन?
1: ए भूलकले ना, अले थेप थेप थेप, ए सुकृती दीदीचे दुकान ले घेनवा। ए दे दुकान ने दीदी के हाक देस तो।
2: ए दीदी दुकान बैठे आओ।
3: ओय ऐसे बाबू ऐसे
2: आओ
3: आले सांगा ये लेखन शहर बाटले के बिलीस बाबू। अरे रापा त गाड़ी धरून कहाँ जाए सास तुम्ही?
1: काली इले दीदी
3: हाँ।
1: गोटक सोर काम ने निकरलो से काय
3: हाँ।
2: लेखन बले से दीदी
3: हाँ।
2: कल टेंडा चो रेटे रेटे गुराय काड़ी कचरा दातुन कुची मन पकालो आसे
3: हाँ।
2: गुनु खुन के डसाउन दिलो ने चुक चुका धक्का दे दे बले से
3: हाँ,
2: होनी काजे निकरलू से आई डबी धरुक बुलगलू आले गोटो आई डबी देस
3: हाँ। ये दे बाबू माचिस कचरा मन के डसाउ हास। अच्छा ही करे सास बाबू, मांतर चिखल तो गुलाय बाटी आसे हुनके कसन करा से।
1: हुनचे काजे तो दीदी रापा तगाड़ी धरुन भाती पानी काजे बाढ़ दखावा
3: हाँ।
1: और रेटे रेटे ईटा गोंदी मन ने पानी सोख तो हिसाब ने बिछाउन देवा
3: हाँ।
1: उनके बोलू से
3: हाँ। ये बाबू मोचो घर चो दुआरे ईटा गोंदी मन फोखा आसे, ये मन के नहीं वहां जल निया थे भाई हाँ। मच ने उन दे दे। ए नोनी सुंदरी, ए नोनी ये तो डंडी का तो
4: हाँ, से आया
3: हाँ। ए नोनी ए सुंदरी तू ये बाटे दुकान बाटे दख
4: हाँ।
3: मैं बाबू मन संगे बोरिंग रेटे चो ठान के जतना उग जाए से
4: हाँ।
3: जतना उने दे
4: हाँ, हाँ।
3: ये तायरा दक
4: हाँ आया तू जा मैं दुकान रह दे
1: हाँ। काय पढ़सिस नोनी? एसु
4: नौवी पढ़स जानू मामा
1: हाँ। ए नोनी तुमचे स्कूल ने बले तो साफ सफाई चो वाट के सांगसोत होती, सांगवात कसन?
4: हो सांगवात काय मामा, ये आगे नहीं
1: हाँ?
4: आम चो स्कूल ने शौचालय नहीं रहे
1: हाँ।
4: एबे लेका मन काजे अलग आए और लेकी मन काजे अलग शौचालय आसे और साफ सफाई चो गोट के बोले सांगवात काय होता
1: देख लीस दीदी। एबे गुलाय देश ने लोग मन जानू धरला सोत साफ सफाई के
3: हाँ।
1: यही लागून आम चो गाँव काय काजे असनी रहे दे उनके हमी बोलू से आले जाते बे
3: सत्य आए बाबू आले तगाड़ी ने ईटा गोंदी मन के तो जोड़ ले से आले जाते जाऊं ते बे
1: आले आले जाऊं जाऊं आले जाऊं ते बे जाऊं जाऊं।

0: ओहो, मके बोले खूब बेहरिक लागली ना दखानु, बोरिंग रेटे रेटे कसन सुंदर दखा दिली ने।
1: काय
0: एदाय पानी बोले ए बाटून बाटे चिकल रुंडा महा नी होय दे, पक्की होली ना ले एखन एबे।
1: 1 घंटा मैमद मशागत कर लू ना, ये बोरिंग के तो जतना लू।
0: हो
1: मानतर असनी गुलाय गांव चो बोरिंग वाटे बले छुकछुका बना लो ने नंगत रहती।
0: हो ना, हम चो पारा चो बोरिंग लगे नंगत हो लिए दाय नाई, सब फाय के सांगुक लागे दे। फिर ये था घिन घिना नी बनाओ बोलून, मंजी मंजी ने ये था यून भारती सांगुक लागे दे। सब फाय अपन अपन समझते गेले, फिर काकी सांगुक नी लागे दे।
1: सत्य आय ना
0: हाँ
1: लेखा नाम के सत्य सोर चो गोट के सांग लो।
0: हो
1: मानतर काका
0: हाँ
1: गोटोक गोट तो मैं समझ ले चे
0: हाँ
1: कि जसन गोटोक लगे साफ सफाई यासे नहीं,
0: हो
1: असनी दूसर बाटे बले साफ सफाई रलो ने नंगत होती।
0: होती
1: ये लगे तो आमी कर लू,
0: हाँ।
1: मानतर गुलाय गांव के तो करुक नहीं सकू कसन।
0: ये देना सरपंच संगे मैं गोठियां दे।
1: हाँ
0: हाँ फिर हामी गोटोक समिति महा बनावा,
1: ठीक है,
0: और गांव के साफ सफाई रतो काजे एक लेख करवा।
1: अच्छा गोटा है
0: गोट तो नानी आए मांतर बड़े आए,
1: बड़े आए।
0: कसन की साफ सफाई गांव रहले सफाई लोग के मन के भाए दे, हरिक लागे दे।
1: होए ना काका, हाले तेबे तू ही सरपंच संगे गोठियाओ,
0: हाँ
1: आमे बोले जुआन मानी तुम के संग दे मुंदे,
0: आले आले
1: होए दे नहीं।
0: हाँ वही दे वही दे वही दे।

0: हाँ तो झाड़ा
1: हाँ चल की भाटो।
0: दा ये नाटगीत के गाऊ रोत नंदोराम भारती और हनुमंचो संगवारी मन। और दक की सत्य कोटा है कि ये जो गीत मन रहे से ने गीत ने बोले हमचो सुमरना रहे से ने
1: हाँ
0: उनमें हमचो देवधामी भगवान जो सुमरना संगे संगे उता करता बल्ले नाचा डगा रहे से ने
1: हाँ
0: मंत्र तक नाट बल तो होली मंत्र संगे संगे हमचो जातो समय बल होए से
1: हाँ
0: तो वाले मुंड्रागढ़ रख सकलू और विदा मांगू तो जातो पूरे आमचे गांव कार्यक्रम सुन तो सप्पाए गांव करे दादा दीदी भाई बहन मन के मैं चाल की
1: और मैं झाड़ा
0: आमी दोनों करूं से
1: जुहा।
0: वाह।

0: ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

गलर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सिरधर और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:31 हुए हैं। पिलामन काजेकोट, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। प्रस्तुति है रुद्र प्रताप सिंह की।

0: तो पाठ के दखा उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीला मन उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीला मन
1: पिलामन काजे गोट सुनतो नानी बड़े सपाय पिलामन के मचो बाटले खुब्बे खुब्बे मया और लाड़। हाँ तो पिलामन आमी एक कार्यक्रम भित्रे रोजे दिना तुमचो पूरे धरुण भाती अमरू से आमचो देशचो माटी ने जन्म धरलो वीर पुरुष वीर योद्धा और महान समाज सुधारक मंचो गोट के जोन की आम के आमचो समाज के आमचो देश के आप लोग कर्म ले और आप लोग ज्ञान ले नगद बाट के दखाला और आम के आमचो देश चो प्रति देशभक्ति के जगाला आमी सपाय लोग के गोटोक सुतूर ने चलतो काजे सीख दिला बाढ़ दखाला असन तो आमचो देश ने कैक जन महान हस्ती मन जन्म धरला मानतर आजी आमी जानवा आमी गोठियावा आमचो देश चो असनी वीर पुरुष और वीर योद्धा जोन आप लो देश और आप लो मातृभूमि चो रक्षा काजे आप लो जीवना के खपाला मानतर फेर वले देश चो दुश्मन मन जो पूरे हार नहीं मान ला और आप लो वीरता और शौर्य चो लागुन आप लो नाव के अमर करला असनी ये वीर और महान योद्धा आत महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप चो जन्म 9 मई सन 1540 के राजस्थान जो कुंभलगढ़ नाव चो जगह ने राज परिवार ने होली। ये मन चो बाप रला महाराजा उदय सिंह और माय रानी जीवंत कंवर रला। महाराणा प्रताप पीला बेरा लेची खूब बे साहसी स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय रला। ए मंचो पीला बेरा चो नाव की कारली। महाराणा प्रताप के पीला बेरा लेची तलवारबाजी और ढाल चलात चो शिक्षा मिरली और महाराणा प्रताप बले पीला बेरा लेची तलवारबाजी और ढाल चलातो ने महारत हासिल करला। एक के दखुन ए मंचो बाप महाराजा उदय सिंह खूब बे हरीक होते रला। धीरे धीरे समया होते गेली और महाराणा जवान होला। सन 1572 ने महाराणा प्रताप चो राज्याभिषेक होली और ये समय ने ए मंचो राज ने खूबे संकट और विपत्ति मन के बले सामना करो पड़ली। मानतर महाराणा प्रताप आप लो सूझबूझ धैर्य साहस और पराक्रम ले सपाय विपत्ति चो सामना करला। महाराणा प्रताप आप लो बाप राजा उदय सिंह चो आखिरी इच्छा चो मान करुन भाती आप लो सौतेला भाई जगमाल के राजा बनातो चो विचार करला। मानतर हुन समय मेवाड़ राज चो विश्वास पात्र चुड़ावत राजपूत मन जगमाल चो राजा बनतोर मेवाड़ राज का जे खूबे नुकसान होय दे बोलून भाती जगमाल के राजा बनतोले मना करला। मानतर जगमाल सिंहासन छाड़ूक नी चाहते रहे यही काजे पाछे रीस होन भाती बदला धरतो काजे अजमेर जाऊन राजा अकबर चो सेना ने मिसलो। यही समय ने राजकुमार प्रताप के मेवाड़ चो राजा बनाला और संगे संगे महाराणा चो खिताब बले मिरली। ये समय ने दिल्ली ने राजा अकबर चो राज चलते रहे और अकबर चो मुगल सेना मेवाड़ राज के आपलो राज ने मिसातो काजे चित्तौड़ चो चारों बाटले घेरला। मानतर महाराणा प्रताप चो वीरता और साहस ले युद्ध के लड़ला और कठिन परिस्थिति ने बले हार नहीं मानला और आपलो मातृभूमि के गुलाम हो नहीं दिला। मुगल सम्राट अकबर ये मंचो राज के जीतून भाती आपलो राज ने मिसाऊ चाहते रहो। मानतर राणा प्रताप एमन के असन नी होग दिला और जीवना भर एमन संगे संघर्ष करते रला। महाराणा प्रताप 7.5 फुट डेंग और एमन चो वजन 110 किलो रली। एमन चो सुरक्षा कवच 72 किलो चो और भाला चो वजन 80 किलो रहे। महाराणा प्रताप जेबे युद्ध करुकलाए जाते रहोत हुन समयाने एमन चो तलवार ढाल कवच और भाला ए सपाय के मिसौन भाती 208 किलो ले बले आगर वजन के उठाउन भाती युद्ध करते रला। आजी बले महाराणा प्रताप चो कवच भाला तलवार ये सफाय अस्त्र शस्त्र मन उदयपुर राजघराना चो संग्रहालय ने सुरक्षित आसे। महाराणा प्रताप लगे गोटोक घोड़ा रलो हुंचो नाव चेतक रली। ये घोड़ा बले खूबे समझदार और वीर रलो और महाराणा प्रताप के बले चेतक घोड़ा के खूबे लाड़मया करते रला। गोटोक समयाने युद्ध बेरा ये घोड़ा 26 फीट चो घाटी के डगौन भाती महाराणा प्रताप चो जीवना के बले बचालो। असन तो महाराणा प्रताप आपलो जीवना ने कैक ठन युद्ध के लड़ला। मानतर एमन चो जीवना चो प्रमुख लड़ाई आए 18 जून 1576 के लड़लो हल्दी घाटी चो युद्ध। ये युद्ध ने मुगल सेना लगे 80,000 ले आगर सैनिक रला और महाराणा प्रताप लगे 20,000 ची सैनिक रला। फिर बले एमन हार नहीं मानला और आपलो पराक्रम की दखाला और मुगल सेना के पाट गुचा जातो काजे मजबूर करला। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध चो पाछे चो समया पहाड़ और जंगल ने बिताला। आपलो पहाड़ी युद्ध शैली चो कारण ने ये मन कैक हार मुगल सेना के मात दिला। ये समय महाराणा प्रताप के खूबे तकलीफ चो सामना करुक पड़ली। मानतर फेर बले ये आपलो आदर्श के नी छाड़ला। ये महाराणा प्रताप जो पराक्रम, धैर्य और मजबूत इरादा रहे कि यही कारण ने 30 बरस लगातार प्रयास जो पाछे बले अकबर महाराणा प्रताप के बंदी बनाओ नहीं सकलो। महाराणा प्रताप जो प्रिय घोड़ा चेतक रलो जोन आप लो आखिरी सांस तक आप लो स्वामी चो साथ दिलो। आखिरकार जंगल ने शिकार खेलते समय के पावलो घाव चो कारण ने 19 जनवरी 1597 के चावंड नाव चो जगह ने ये मन आखिरी सांस धरला। ये खबर के सुनून भाती अकबर बले खूबे दुखी होलो। हाँ तो पीलामन ये रहे सूरवीर महाराणा प्रताप चो जीवना चो गोट। आले एदाय सुनू ये गोटो गीत के।

पिलामन का जो गोट, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति थी रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advanced to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
3: BSF की सीमा सुरक्षा।
4: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
3: हजारों करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है।
2: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police and the military alongside the BSF. Referring to international borders, Mr. Shah added that with the formation of the new government in West Bengal, the long-standing deadlock has ended and the state government has provided land for border fencing within a single week. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure seed availability to farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing and ensuring proper supply to genuine farmers.
5: Khet Bachao Abhiyan, ye aapke bina nahi chal sakta.
6: Save the Farm Campaign, Khet Bachao Abhiyan, this cannot run without you. From June 1st to June 30th, all of you will also have to step out. I will also step out. You should also step out and tell the rest of the ministers, central ministers, public representatives and MLAs that they should also step out. Everyone will have to go. Let the public representatives lead this. How much fertilizer, which pesticide, whatever the requirement for pesticides is, we will reduce it and eliminate it.
5: Kisan Samman Nidhi mein koi reh gaya hai aupcharikta puri karke uska labh hum de dein.
2: The government has said that there is sufficient stock of petrol, diesel and LPG in the country and all the refineries are operating at the optimum level. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said that LPG production is at all-time high, which is around 92,000 metric tons per day.
7: LPG ka production, it also depends on the optimization activity which is taken up within the refinery, and that impacts the production, and that's why we have slight up and down. One thing. Second is we are also giving the part of the pool for C3, C4 molecules. Third important thing is some of the refineries have come back to operations, and other than that we are getting more, you know, LPG because of the optimization from some of the refiners.
2: Ms. Sharma also informed that no dry out has been reported at any LPG distributorship. Speaking about retail outlets, she said 150 districts have reported 30% growth in petrol, while 156 districts reported more than 30%. She said that the government is reviewing the situation. Director, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma said that a merchant vessel, Nissos Kiros, a crude oil tanker, has safely transited the Strait of Hormuz.
8: A merchant vessel, Nissos Kiros, a Marshall Island flag crude oil tanker, safely transited Strait of Hormuz on the night of 25th-26th and is bound to arrive at Vishakhapatnam.

मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं।

0: गांवकारी भाई बहन मन देखा आमचो बस्तर ने कितले रीति रुसुम मन आसे और ये सपाय आमचो जीवना संगे जुड़ली से कई तियार बाहर बोला से कई नीति रीति बोले आसे जेके साल भर आमचो बोलने गांवकारी भाई बहन मन बनाए सोत और हरी कुदिम ने रह से तो असनी गोटक रुसुम है बोहरा नीचो परंपरा। ये बोहरानी परंपरा कसन बीतिया है यही परंपरा के जानतु काजे मैं गोट बात करने से श्री मंधर राम नाग संगे। तो मंधर राम नाग सबले पहले तो जुआर।
1: हाँ जय जुआर बाबू, जय जुआर।
0: हाँ हाँ
1: मैं गांव कुरुस पाल चो आए।
0: हाँ
1: मैं आगे गुरुजी बल रले।
0: अच्छा।
1: और मैं पढ़ाई बल समाज शास्त्र में एमए बल कर ले।
0: अच्छा। हाँ हाँ
1: ये समाज ले एक जुड़ लगी थी एक बोहरानी है।
0: हाँ
1: गांव चो गोलिया मन चो एक बोहरानी आए। बोहरानी जो है आमचो पुरखती ले आमचो परंपरा ले जुड़ली से आमचो मूल संस्कृति ले जुड़ली से।
0: हाँ।
1: ये बोहरानी बना तो बीती जो है आमचो नियम वाला से गांव गोली चो हर गांव ने बना हुआ। तो ये जो है भादम जोन बोल लेने नोआ खा तो पहले।
0: हाँ
1: ये वोट बना तो रुसु मां से बोरानी।
0: हाँ।
1: तो गांव जो सियान सजन मन जो है जूत राय बटक करत राय गुड़ी ने और भादम जोन ने काय करत राय बोले सारी बड़ी पाड़त राय। सारी बड़ी पाड़न बाती आम के तय करत राय दिन के। तो दिन जो है मंगलवार दिन ना आले गांव सुबह ताई सब ना शनिवार दिन है। ये दो दिन है बोरान निष्का तो त्योहार सना ये बोले एक बना तो रुसुम होली से।
0: अच्छा।
1: ये चो काज काय करता है हम जो घर घर ने जूटा बाड़न जो साल भर ने पड़ा रुआ और टाकरा टुकना जूटा बीती दावा गाय बैला चो दावा कचरा पकालो सज डोरी गेटा डोरी असन बीती उनचो गाय वेला बांध हुआ तुन डोरी। तो संगे संगे लाल करिया रंग जो झंडी बरत रहा है और मोदे छाली चो डोली बनान होम किटका नड़ेर केरा कदली लाली गुर घीव करिया बरहा पीला कुकड़ी चिया चौकी चित्री करिया जोंदरी सात मणि बरन माली और कुकड़ी गार जैसे नीमी बल बोला है कुलोगार गर्भनिगार और मानसल का। और ये तो संगे संगे उन तर्पणी मोडोंगा तर्पण लाल मोडोंगा बनानवाती जो है आमी गांव चो जीतल बोले कतवाल पटेल पुजारी और गांव चो प्रमुख लोग आम चो माता गुड़ी ने एक बनात राय और शनिवार नाल मंगलवार दिन पनाए कांगले समय उन हिसाब में और संग संग मौसमाटी बल बनात रहा है फूल बल बनात रहा है। ये सब जमक बनान बाती हम चो गांव चो बेर पड़ती वाटे बेर पड़ती वाटे हम चो माता गुड़ी बनान बाती है के मुंडे बेरा उन बात है के जोड़ा तोड़ा बनान कुकड़ी चिमड़ी सबके धरुन बाती ये उन पाटे सन के जो है नकामित रहा। और आमचो गांव ने गोटो तीन गांव जो देवा से उनके लगड़ा गुड़ी बोला है से उन लगड़ा गुड़ी चो सिरा जो उन गुड़ी ने उन बाती है कि ये मन के पूजा का पाठ लोग बोल उनके बनान बाती आम बाती है कि उल्टा पाए एक बाट उल्टून दख्तर न आए आप लोग गांव पारन फिर उल्टा पाए इतरा उल्टून दफ्तर नुआ ये गोटक बोरानी बना तो प्रथा जो है ये हम जो गांव गोली में होली से।
0: तो ये जो परंपरा है बोले ने ये काय काजे बना तो वैसे कसन समय ने।
1: हाँ अच्छा ये परंपरा जो है हम जो गांव गोली जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखा पार्टी बेराले बाबू ये चलती ली से। तो ये के काय काज बल्ले बना तो रहा है कि साल भर चो गोटो के त्योहार चो रूपाई ये बोरानी ये त्योहार।

0: देखे काय काय बनात राय बोलले ने गाव चो जितलो बोले गाय बैला जो खुरा चपका लगे से छेरी मेडी की खुरा चपका लगे से पीला जिला के जुड़ दाबक जर मुंड और कई प्रकार की उल्टी खोखली जो बीमारी सीमारी बन जो ऐसे नहीं नवा खाउन मल बीमार बीमार पड़ुआ ये चले बात तो का जे ये के जो है बोरानी जो है निकरा तो बीते आगत ले होली से बोरानी बोलन का है कि आम से जितलो बोले गांव जो बीमारी सीमारी जो रोग दावक जो आसे उनके बोर आंदत बीती ये को तो प्रताप होली से बोर आती बीत वाले बोरानी तो ये चुप कर लेन का है कि आम जो जितलो बोले आम जो सांग ले उन जुड़ दाव का है पीला जिला के ये बीमार बीमार पड़तो और खांसी खोखली आए ये सब की गुजात बीती ये निहोली से
1: बोले ने गोटोक हिसाब ने दख लेने का है कि स्वच्छता चो प्रतीक है कसन बोले ने जितलो बोले गांव ने खराब चीज रहे से बोलूगे उनके ओंडा करुण बाती आम उनके बोहर आखने उसे दूसरे बाटने उनके
0: ये बोलूगे आमी ये बोहर आनी जो माध्यम ने जो स्वच्छता माने बारम का जी आम के स्वच्छता चो प्रतीक है बड़ा उसे और ये टाकरा टुकड़ा बोला उनको ऊंडिया
1: उसे
0: जितले बोले आए जो गांव ने ये आमी काय बोला तो उनके ये गंगा चीज ने लाटा बूटा चिकल ये काय काय उनको ओंडियान बात की नहीं हम साफ सफाई कर लेने और एक पकान दी लेकिन अच्छा लागे इसका सर तो उसमें जो है ये स्वच्छता जो लेख प्रतीक है बोहरानी मैंने बोहर आतरा यहाँ
1: बोहर
0: जैसे पानी नाम बोहर आंदे होते नहीं नदी नाला ने वो आते नहीं से उतनी देवधामी एक वो आते नहीं से पर उन जाल हम बोर आने उन संद निष्कान दे उनसे उन पर उन पाटने हुए हैं उस दिन नेते नेते उन आगे तक जहाँ तक पीढ़ी आगे बने जुग जो जो बनली से जाल हम उन एक गांव ले उन गांव उन गांव ले उन गांव ये रोग राय के नेते भी थी एक स्वच्छता का प्रतीक है ये कि हम बढ़ाते जाते हैं आगे
1: बल्ले ने दक ये स्वच्छता प्रतीक ऐसा ना है जैसे कि आमी गांव पूरा साफ सफाई होली सब लोग साफ सफाई होली बल्ले ने तुरते प्रभाव तो यार ऐसे उन हिसाब ने बल्ले ने जोड़ से साफ सफाई हिसाब ने है कि नहीं
0: उतलो ने फिर आमी ये सब करूं बात पर नवा खाता भी तो है गोट तो नोआ दुख के पकान बाती माने दुख के पकान सुख ने नोआ खावा अच्छा विचार आई आई नहीं तो देव धामी बोले तो पूजा पाठ करूं ये फिर नोआ खानी बोला हम पूजा पाठ करते रहे ये गांव ने अमी देव धामी का मनान बाती तो हम की कहा का जो दुख डंडो बाबू नहीं होए नहीं होए
1: बोले
0: तो असन जो है हम देव धामी हम के जुग ले हम के सारा होते है तो हम एक का जामी ये मन के अमी नी पूछू पूछता रहा है बिल्कुल एक बनात रहा है मैं गांव या भाई बहन मन बल सांगे से एक ही के भी नहीं बोल को गांव ने पुजारी कागज बना ला ये सब पर चीज मन बना ये सब पुजारी बनान मुखिया बनान ये देवी देवता के मान सम्मान ने उन विदा कर रहे नाम कागज डांट दे डाटा बहरी नहीं हुए
1: बोले न आगे चो जो पुरका पार्टी चो सियान मन बोले साफ सफाई चो जो उनचो महत्व आए ये चो काय फायदा आसी ये सफाई के जानून बाती ये जो रुसुम आए जो रीति आए कि मुर करला होती असन लागे
0: हाँ सियान मन जो है ये के विचार करला गांव चो और कसन ने आमी ये दुगदन आगे तो आम चो लगे सूजी गोली दो आयदार इस बल का ही नहीं रहे आम लग सिरा गुनिया रो देव धामी रहे और तो आम यही एक माध्यम रहे आम जो लगे कि तो बोले आम लग जर आए मुंड आए खुश खोखली आए जूड़ आए दावक आए जसन बोले आए तो पहले जो है आम काय करू गांव में जाऊं बाती घुड़ी में जाऊं पुजारी धरून आप लोग घर गुड़ी बला से घर गुड़ी मिल जाऊं बस पूजा अर्चना करूं सेवा जुआर करूं ये कर लेन सब होते रहे बाबू आगे चो तो ये होते रहे तो आमी धीरे धीरे क्या भूल कुन जात रहूं एक चो जो पीढ़ी आसो एक चो पीढ़ी तो बिल्कुल भूलकला माए बाप के सब लोग नहीं सक देव के कहाँ सक उसन कर तर नो आए तो एक भूलक लेने आमी भूलक लेन जो पीला जिला मन बोले एक चो जो पीढ़ी आसे मन बिल्कुल जा दे ये आगे पुरखती जो त्योहार है बाहर

0: ये सब लुप्त तो होए दे
1: हाँ,
0: हाट जाए दे। एक जगह तो काजी काया है याम की पीलावन बोले सिखात रहा है, घर जो तीज त्योहार के बोले बना तो रहा है, जतन की अमूसा है, नवाखानिया है, बोरानिया है, और कई प्रकार जो गांव जो जो त्योहार आते हैं, ये के आम के भी भुलक्तर नो है, और ये के जो है हम जो पुरखती जो जो चीज आए उनके आम के दखात रहा है, देखिए हम बनात रहा है और सिखात रहा है, अब जो लेखा लेखी जिला जिला मन के।
1: तो द गोड बात ले हम ये जान सकू कि आगे बोले का है कि जो सियान सजन मन रला बोलू गांव चो बोले घर द्वार सब साफ सफाई रलेन का है कि बीमारी समारी बोले ए उकला नि सके आए कि नहीं कुछी प्रति के बहरानी के बोले हम मान उकला सकू आए कि नहीं गांव ने अच्छा साफ सुथरा रहो सब देव धामी गुड़ी जोन बोलिया है उन साफ सुथरा रोन बाती बोले ने उस माय नीति आए उनके हमें बनाऊ ते भी आम चो जो गांव पारा आरु आम चो देह पाए बोले नागत रहे
0: नागत रहे दे
1: आए कि नहीं।
0: मैं आगे बस सांगे से आम चो फिर मैं गांव कार्या दादा दीदी मन के हाथ जोड़न प्रार्थना करें से ये बोरानी त्योहार जो है यही मौका है, ये भादम महीना ने बनात बीती आई। ये के भादम महीना ने बिल्कुल बनात रहा है और ये जो देवदामी के जो नाराजी ओला से मन की मनात रहा है पूजात रहा है हमके काई नहीं हुए। और ये गोटो कोरोना संकट ने जो हम चो जो ये भी जो बात तो बीती गोटोली से काय काय की पालन करता रहा है काय काय की हम जो ध्यान देता रहा है ये सब चीज की बोले हम की धरुण बाती ये बोले हम जो गांव चो साफ सफाई और जागरूक बीती ये हम जो गोट बोले ये आए। मैं इतली बोलून बाती सब बस्तर जिला चाम छत्तीसगढ़ चो जितलो बोला हम चो भाई बंधु बहन मनासो बड़े ब्राह्मण चो आया बाबा जितलो आसो सबके मैं करें से जय जुआर सेवा जुआर।
1: हाँ बलन का है कि कहीं ची बोले बोले बीमारी से मारी हो ये चो घुचा तो का जे सबले पहल पूरी ऐसे बोले ने साफ सफाई ये भी बोले बोल सोत की मतलब का है कि साफ सफाई की खूबी ध्यान दिया स्वच्छता के खूबी ध्यान दिया तो उसने आम चो ये बोहरानी चो परंपरा तो वाले मंदर राम नाथ तुम्हें इतलो अच्छा बोले ने बोहरानी चो परंपरा के सांगलास सपाय सुनला होती सब जानून बाती मान दे समझ दे आल खूबे खूबे जुआर
0: जय जुआर सेवा जुआर।
2: एक मजबूत एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: नंजर में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता मंधर राम नाग से भेंट कर रहे थे बलबीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। खेल पत्रिका में आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। नमिता बघेल जूडो और कराटे खिलाड़ी से भेंट करेंगे बलबीर सिंह कच्छ।
1: भाई बहन मन सपाय के सेवा जुहार। खेल पत्रिका कार्यक्रम ने आज यहाँ में फिर असन गुटो खिलाड़ी आरु जूडो कराटे
5: सिखाए से
1: तो सबले पहले सांगतु ये जो जूडो सुराटे जूडो कराटे कहाँ ले सीख ले?
5: ये मैं स्कूल बेराल सीख ले आमचो थन बल जसन मैं ये भी सिखाए से उसनी आमचो स्कूल ने बल गोटो मैडम इतरे आमचो कोच हुन सिखाए मोके फिर उसनी उसनी फिर हुन एकेडमी ले जुड़ते गेले मैं फिर एक टाइम ऐसा नहीं ली कि स्कूल गेम हुआ है आमचो तो हुन लेवल में पार होते गेले और मोचो का सिलेक्शन होली स्टेट राज्य स्तरीय खेलने जूडो नीची तो हुताबल में जीतले गोल्ड मेडल आनले फिर हुनचो बाद ले गेले में दिल्ली नेशनल खेलुक फिर हुतायले फिर मोचो ये जूडो खेल फील्ड ले शुरुआत होली से।
1: अच्छा हाँ हाँ और ये संग संग और दूसरा बल खेल?
5: हाँ और ऐसे संग संग में खेल ले से बॉक्सिंग खिनिक जाने और कुश्ती खेल ले से और कॉलेज ने मैं कबड्डी खेले और
1: अच्छा
5: कबड्डी क्रिकेट हाँ
1: तो ये तो अच्छा है मंतर सबले पहले सांग की जूडो खेला है।

0: कराटे
1: कराटे
0: कराटे बोले का है कि गाँव चो लोग जोगिनी जानो है कि नहीं, कबड्डी खो खो के तो जानो मंतर, ये कसन बीती हो ऐसे ये चो मतलब का है खेल
1: कराठा बल्ले जसन आज चो आजकल चो देश दुनिया तो लेकिन मन संग कितरो काय काय हो से तो हुन हिसाब ले देखें बोले कराठा सबले अच्छा चीज है कि हुन मन खुद खुद के मतलब बचा सकोत जसन छेड़छाड़ होए से और जितरो बोले लेकिन मन संग व्यवहार होए से हुन मन खुद के बचा सकोत खुद लड़ुक सकोत मारू ए मतलब ए, कराठा सीख ले कौन हाथ ले कसन मारत रहा है कहाँ मारत रहा है ये सब जानकारी मिले से पाए चो यूज कहाँ करुआत पाए ले कसन मारुआत कौन हिस्सा ने मार ले कसन पावा ये सब चो ये सब चो जानकारी मन दिमाग में पीला
0: अच्छा,
1: मन के और बड़े लोग के मतलब हाई स्कूल चो पीला मन के भी दिमाग
0: अच्छा हाँ, तो ये सांग जैसन की ये चो जोन कराठा जोन सिख तो का जी है बोलन जैसन की क्रिकेट वगैरह बहुत सारा सामान मन लागे से तो ऐसे नहीं बेता चुवल
1: ये चुका जो टुक ड्रेस मिरु है उनके कराठा लोग फिंदुर वाट सफेद सफेद ड्रेस रुआ है तो हुन चो और एक बेल्ट रुआ है हुन बेल्ट बल्ले आम चो हुन भगवान है बेल्ट
0: बेल्ट
1: हाँ
0: अच्छा
1: तो हुन जहन हम ये पहली दूसरी पढ़वाऊ तो उसन हुन चो कलर हिसाब ले आगे क्लास बढ़ते जावा है हुन चो
0: अच्छा
1: सबसे पहले व्हाइट बेल्ट हुआ है फिर पीला हुआ है फिर ऑरेंज हुन चो पेपर होते जावा है हुन चो पेपर देते गेले आगे प्रमोशन जसन हुआ है तो हुन चो उसनी आम चो बल हुन क्लास में बढ़ते जावा
0: बढ़ते
1: है
0: जाओ है।
1: हाँ फिर हुन चो
0: अच्छा
1: जे सीनियर जूनियर बनाओ हुन चो
0: अच्छा तो ये जसन की बेल्ट भी थी बल्ले से
1: हाँ
0: जसन की पहली कक्षा दूसरी कक्षा असन है बोले
1: हाँ
0: हुए तो जसन की ये कसन पढ़ाई हुई से बेल्ट भी थी एक ले पहले
1: ये जो कराठन ची हुआ है जसन करुण दकातरा है हुन जो काता बुलवात जुनुनियो बुलवात उनके करुण दकातरा है हुन जो अच्छा करत नहीं उनके फिर आगे बढ़ाते जावत
0: अच्छा
1: असन लिखित परीक्षा असन पढ़तो भी थी तो नहीं हुए मानतर फिजिकली करुण दकातरा है
0: करुण
1: करा
0: दकातरा
1: हाँ
0: अतला अच्छा बोले नहीं एता जसन की मान लो पहला साल जोन करे से तो उनके बोले किठा नसन जोन सिख तो बीती है किठा नसन रहे
1: सीख तो भी थी तो मेन आए पंच शरीर ने कसन मारत रहा है कसन मुट्ठी बांध रहा है और लात कसन मारत रहा है आगे ये शुरू तो ये चीज सिखावा और खुद के कसन बचात रहा है अगर सामने ले कोनी अटैक करे तो कसन बचू हास उन चीज ले ये सब सिखावा शुरू ने
0: अच्छा और फिर दूसरा बेल्ट बिल्कुल
1: दूसरा बेल्ट ने फिर हाथ पाए मजबूत करत रहा है
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: होता फिर हाई क्लास एते जावा है पंच फिर खातर वाला है मारतर वाला है आगे लोग के
0: अच्छा
1: तेवे हाथ पाए मजबूत बने से
0: हाँ हाँ
1: और मुरुम ने कराठा मतलब पुशअप मारतोर और पंच मारतोर ये सब हुआ है फिर आगे आगे उसने बढ़ते जावा है और
0: अच्छा हाँ हाँ बोले ना अलग अलग सीख तो जो तरीका मनाए
1: हाँ
0: ये सब आसे
1: हाँ ये सब आसे
0: अच्छा तो इस संग संग देख बोले ना खान पान चो बोल कहीं असन ज्ञान दे
1: नहीं
0: सक
1: खान पान चो तो उतरो ज्ञान नहीं देवत
0: असन
1: हाँ
0: अच्छा बोले ना खान पान असने
1: हाँ
0: साधारण
1: साधारण है खान पान जैसे नामी आदिवासी लोग खाऊं से
0: हाँ हाँ
1: उसने
0: अच्छा उसने यार
1: हाँ
0: नहीं तो कहीं लोग बोलो खेल उल का कहीं डाइट वाइट चो खाते
1: नहीं नहीं असन तो कहीं ना है मतलब उन खेल तो चिबेरा जैसे हम खेलू जाऊं से कहीं बाहर तो आप लोग वजन के खिनिक संगात रहा है उन खेल तो जितरो वजन ने हम खेलू से वेट हिसाब ले खेला वजन हिसाब ले तो हुन वजन जो हुन पाट नहीं होता है ना कम होता है
0: अच्छा हाँ हाँ तो बोले तु कौन बेल्ट तुक मेरे लिए से भी
1: अबे मैं पर्पल बेल्ट ने आसे अबे
0: पर्पल बेल्ट
1: हाँ
0: अच्छा बोले कितलो नंबर भी थी बेल्ट आए
1: 4-5 नंबर भी थी
0: 5 नंबर भी
1: हाँ
0: थे अच्छा एच ऊपर बोला और आसे
1: आउर आसे ताउर एच ऊपर फिर ग्रीन बेल्ट आसे फिर ब्राउन बेल्ट आसे फिर ब्लैक बेल्ट आसे
0: अच्छा
1: और 3 बेल्ट और
0: हाँ हाँ
1: बाजलीस
0: तो ये सो तु कहीं प्रयास
1: नहीं प्रयास ते वे करें से फिर धीरे धीरे प्रयास जारी आसे मुझे
0: हाँ तो दक हाँ काय सुनीता काय
1: मनमिता बघेल
0: नमिता
1: नमिता
0: हाँ नमिता बघेल तो इतना इतलो अच्छा बोले ना गाँव ने रोन बाती सीख लिस मानते रह दाए संगे संगे पढ़ाई और फिर सिखा तो बोल काम
1: हाँ
0: करे
1: सीखा तो वाल काम करें
0: अच्छा
1: समझे
0: बोले कहाँ सीखा हुआ से
1: एबे बस्तर ने सिखाए से एबे तो शुरू नहीं इस साल तो जो योजना है हम शुरू नहीं हुई होली से योजना अंतर्गत बल्दे सरकारी योजना है गोटोक रानी आत्मरक्षा कन्या प्रशिक्षण हाँ
0: अच्छा
1: बालिका कन्या प्रशिक्षण करूँ है तो योजना शुरू होले तो आम के पटावा थरी स्कूल ने अलग अलग जितरो वाला मियासू तो अलग अलग स्कूल में पठा जावात तो मैं बस्तर क्षेत्र ने मैं पीला मन के सिखावा हाई स्कूल और मिडिल स्कूल जो लेकी मन के सिखावा मैं
0: अच्छा हाँ हाँ हाँ
1: तो
0: तो बोले नेचो बोले सिखा तो बीती का संसार कार बांट ले रहे से कि तुम
1: सरकार मतलब जो आमचो मानदे आहे हुन सरकार बाटले असे और शिखत भी ती तो आम्ही जसन शिकू से और आम्ही आमचो लग जो नॉलेज आसे जो जानकारी आसे हुन आम्ही पूरे लोग के देऊ से।
0: अच्छा हाँ हाँ बोले अबे कितना ना सन स्कूल के तू
1: सीखा था अबे 10-15 ठन स्कूल ने तो होली से मचो।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा बोले ये सीख तो काजे बोले कौन टाइम कौन समय नंगत रहे से जाले
1: ए सीख तो काजे जसन बिहान बल काय तो रहे से और बिहान बिहान बल्ले जसन सुबह टाइम ने तो बॉडी काय तो रहे से उदल दाए तो उदल दाए बल कर सकूं और शाम के टाइम ने
0: अच्छा
1: और प्रैक्टिस हाँ सुबह शाम।
0: अच्छा हाँ हाँ तो बोले ने हर समय बोले एक ही टाइम ने एक ही स्कूल आए कि दूसरा
1: नहीं स्कूल मन ने तो सरकार बाटले आदेश ली कि हर स्कूल ने एक एक घंटा सिखा देती है
0: अच्छा
1: तो हो हिसाब ने देख ले एक एक घंटा ने तो सब स्कूल ने काय तो करुक नहीं हो मंतर अलग अलग दिन ने अलग अलग स्कूल ने
0: अच्छा
1: असन सिखाऊ।
0: हाँ हाँ बोले ने हर दिन सब स्कूल ने नहीं
1: हाँ
0: अलग अलग दिन
1: अलग
0: अलग
1: अलग
0: स्कूल
1: स्कूल
0: ने।
1: ने असन टाइप जो हुआ है मतलब और
0: अच्छा
1: 1 लाख की दीवार 7-8 ठन स्कूल तो 1 लाख तो कवर करी नहीं हुई थ्रू स्कूल के
0: हाँ
1: तो
0: हाँ वो
1: अलग
0: तो है
1: अलग दिन ने असनी
0: हाँ
1: करते जा
0: सिखाता रहे
1: हाँ
0: सब।
1: सिखाते रहे।
0: हाँ हाँ बोले ने दख तु सीखा गाँव चो लेखा लेखी मन सीख तो काजे खाली
1: हाँ
0: लेखिच मन किया है वे।
1: हाँ ये तो लेकिन मन क्या है मात्र जो लेका मन बोले ऐसो काम बल सीखाऊ बोले उन मन के मैं नाई नहीं बोले या तुम बल सिखा बोलवाए तुम चो काज बल जरूरी है बोलवाए
0: अच्छा
1: और सिखाए उन मन के बल।
0: हाँ हाँ तो कसन रुचि
1: हाँ
0: असाधे
1: रुचि तो धरुआत पीला मन नया
0: अच्छा
1: चीज आए और गांव चो लोग अधिकतर नहीं जानोते चीज के
0: हाँ हाँ
1: तो नया चीज कहीं सीखो को मीरे से बल्ले दख तो लोग बल ज्यादा ऐसो तब सीख तो काज बल हरी खुआत पीला मन
0: हाँ हाँ
1: नया चीज के सीख तो काजे।
0: अच्छा दख तु तो ये भी सीख ली सारू सिखाई सी बोले थुक तु के खुद के कसन लागे
1: खुद के तो मके खूबे अच्छा मतलब खुश एकदम खुश लागू है कि मैं इतरो ए लायक बनले कि मैं आगे और लोग मन के सिखाए से
0: हाँ
1: तो खुद सोच ले हरिक लागू है मैं कहाँ रहे और कहाँ मर ले
0: हाँ
1: असन
0: मर
1: लागू
0: ले
1: है।
0: अच्छा हाँ हाँ हाँ तो आए छे
1: हाँ
0: बोले ने कुछ देहे पाए काज बोले एकदम
1: शरीर काज
0: सर
1: बल एकदम सुस्त एकदम स्वस्थ लागू है एकदम।
0: अच्छा हाँ हाँ तो धक्का और कबड्डी बोले खेलते नहीं बोले सर।
1: हाँ कॉलेज ने खेलते रहे कबड्डी
0: अच्छा तो ऐसे बोल कोनी बाटे भारी बोल खेल
1: नहीं
0: ले
1: बाहरी उन चो बाहरी नहीं गेले से मैं कबड्डी चो जूडो चो बस गेले से जूडो कराठा का जे
0: अच्छा
1: तो एक हार जाऊ रहे मैं बालोद जाऊ रहे और एक हार दल्ली राज रहा जाऊ रहे स्टेट राज्य स्तरीय होली और बालोद ने फिर गोल्ड मेडल आने में सेलेक्ट होले फिर एक हार जगदलपुर ने बल हो रहे फिर मोक पटाला दिल्ली नेशनल खेलू गए हुता पटौर हो
0: अच्छा तो होता कोई नंबर वगैरह ही ली
1: नहीं होता तो नहीं आनुक
0: नहीं आनुक सकली।
1: सकली।
0: अच्छा राज्य स्तर तक तो ही लेस
1: हाँ
0: मंत्र नेशनल ले तो अमर लिस बोले।
1: अमरलेस
0: हाँ हाँ तो ये तो खूब अच्छा है नमिता बघेल लग तो देश स्तर ने तू जो प्रतिभा किया है
1: हाँ
0: अमरालिस बोले ने एक हार सफलता नहीं तो
1: हाँ मैं
0: दूसरा।
1: चाहे से क्या पर मैं नहीं करुक सकले हुन मचो जो मैं जो उनके सिखाए से हुन मन जाओ तर उता प्रदर्शित
0: प्रदर्शन
1: करो ता
0: करो।
1: आप लोग
0: हाँ
1: कला
0: हाँ
1: के।
0: अच्छा हाँ तो ये कबड्डी बल्ले से
1: हाँ
0: कबड्डी ने तुझ कसन रुचि होली कसन कबड्डी।
1: नहीं हुन कॉलेज कॉलेज जो गेम हुए आगे कॉलेज करते बेरा तो अलग अलग कॉलेज ले होत लेकिन मन खेलू कलाए तो मैं देख ले कसन खेला है मन नहीं जानते रहे असन खेलुआ बोलते फिर मैं सर के बोलले सर मैं बोल खेलुआ है बोलते सर बोला आओ ट्राई करे खार बोलो ठीक है सर बोलले मैं फिर गेले होता खिनिक हुन चल फिर ले लोग मन के देख ले कसन रेड नेस होत कसन छू नेस होत वापस तो खिनिक इंटरेस्ट एते गेली मके
0: अच्छा
1: तो हुनील फिर कबड्डी वाल खेलू सीख ले मैं।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ हाँ लेकिन कबड्डी तो किन डर भी थी
1: और डर
0: खेल
1: भी त्या हाथ पाए टूट तो भी त्या
0: नहीं तो
1: नहीं
0: बोलने से
1: अग नहीं टूटा लो नाल वाल तो
0: ऐसा
1: नहीं
0: टूटा पड़ू
1: है तेवे तो मजबूत हो दे हाथ
0: हाँ
1: पाए।
0: उन बल तो है मानतर दक कबड्डी खेल तो काज बोले किन अच्छा
1: हाँ
0: ले कहीं
1: तंदुरुस्त
0: चीज
1: रहो
0: के ध्यान
1: कुलाई।
0: देव पड़े से
1: हाँ
0: है कि नहीं।
1: जैसे खेल वेल करते बरा ज्यादा खट्टा वट्टा खातुर नु है।
0: अच्छा
1: हाँ खट्टा वट्टा नहीं खात रहा है मीठा वाल नहीं खात रहा है मतलब बॉडी के खिनिक बैलेंस करूँ संगात रहा है
0: हाँ
1: खेल तो
0: हाँ
1: लायक जो।
0: अच्छा हाँ हाँ तो दक कबड्डी खेल तो ताने किनिक चलाकी होतर बोले जरूरी हुए
1: हाँ
0: से है
1: अब
0: क्या।
1: दिमाग जो खेला है
0: हाँ उन तो बोलने से
1: कौन बाट ले कसन है सोत कहाँ चलो कसन निकरे सोत को के छीऊ ले कसन हो दे असन सोचू पड़े से और जाऊ पड़े से
0: हाँ
1: रेड रेड जो निवाए हुन मन के।
0: हाँ हाँ हाँ उन तो है तो अब तक कोनी असन कबड्डी तो कहीं प्रतिभा के दका
1: नहीं,
0: तो
1: कबड्डी तो उतरो प्रतिभा नहीं रही मुझे
0: नहीं रही। अच्छा
1: कॉलेज तक ची रही बस।
0: हाँ हाँ बल्ले ने असनी खेलते रहे।
1: हाँ असनी खेलते रहे, एंजॉय काज है, कुछ मनोरंजन काज खेलते रहे।
0: अच्छा तो दक ये भी हिंदी सब्जेक्ट ने तू एमए करे से बोल से ये मतलब स्नातक तक काय काय सब विषय रही जाले।
1: स्नातक मोचो बी एच रहे बैचलर ऑफ आर्ट्स हुतायल कर ले मैं पी जी कॉलेज ले करते रही तक ग्रेजुएशन होली फिर अभी फिर इस साल फिर करें से एमए।
0: वाले एमए कौन आजकल तो सेमेस्टर है
1: नहीं प्राइवेट देश में।
0: अच्छा प्राइवेट देश
1: हाँ।
0: अच्छा कौन सेमेस्टर तक होली जाले
1: ए फर्स्ट ईयर कंप्लीट होली से सेकंड ईयर जो
0: अच्छा
1: चालू हुआ है।
0: हाँ हाँ तो बोले ने दक तू तो खिलाड़ी बोली आज सिखाई बोले बोले ने पढ़ाई लिखाई करुन बाती बोले ने तुझो काय विचार आज जाले
1: पढ़ाई
0: मतलब आगे काय सोच ली सी
1: नहीं एवे तो हर चीज ने कंपटीशन तो बढ़ ली तो मैं सोचे से खुद जो कहीं करें दे असन पढ़ाई पढ़ाई के साथ चल उन संगात रहा है मतलब साथ ने पढ़ाई बल चलते रहो और ये बाटले खर्चा जुन बल कमाई उमाई है हुन बल होते रहो असन सोच ले सर कहीं आगे अगर असन मौका मौका मिलनी मौके तो मैं बस्तर ने गोटो कराठा एकेडमी खोलें दे रुता क्लास में पीला मन के सिखाएंगे। हाँ
0: अच्छा
1: असन सोच संगाले से।
0: हाँ हाँ हाँ तो बोले नहीं चुका तो कई सरकार बाटली सुविधा बोल मेरे तो असन
1: एवे तो उतरो काय तो नहीं होली से
0: कोशिश नहीं कर ली
1: कर ले से कोशिश
0: अच्छा
1: तो अभी धीरे धीरे करें दे कोशिश हम
0: हाँ
1: चुका
0: हाँ
1: जो
0: अच्छा तो ये भी बोल तू चुका क्लास चले से जी
1: एवे छुट्टी होली से पिला मन मतलब अभी नवंबर दिसंबर ले शुरू हुआ है अभी।
0: अच्छा नवंबर दिसंबर
1: हाँ
0: ले हाँ हाँ हाँ ये तो अच्छा है नवा जो कराटे जुड़े संगे संगे दक तू चो पढ़ाई बोले कर से
1: चले
0: प्राइवेट
1: सब
0: पढ़ाई बोले चले
1: प्राइवेट।
0: से
1: हाँ
0: ये तो अच्छा है मानता जैसन की तू एकेडमी भी थी खोल तो वो विचार कर ली से
1: हाँ विचार तो कर
0: है
1: ले
0: कि नहीं। और दक संगे संग का है कि गांव ने जो नृत्य तो लेका हो चाहे लेकी हो
1: लेकी हो।
0: खेती बाड़ी में खूब ध्यान दी बात तू तू चुका है असन रुचि असन
1: नहीं खेती बाड़ी करते रहे हूं तो आई जी मतलब खातो काज तो करूक लागे से
0: हाँ हाँ
1: तो नी कमा ले तो कहीं खातो काज बोल नी मिले
0: नहीं मेरे
1: तो
0: हाँ
1: खेती बाड़ी कर तो जरूरी है हुन बल सीख तो रहा है मतलब लाइफ ने हर चीज के सीख रहा तो जरूरी है हुन नाम चीज काज काम दिवाए।
0: हाँ हाँ हाँ तो आए जी
1: हाँ
0: तो असन बोले तुम जो घरे बोले असन कर सो खेती बाड़ी हो
1: हाँ अम्बल करूँ धान वान लगाऊँ अम्बल जोंदरा उंदरा
0: अच्छा
1: घरे लगाऊँ
0: हाँ हाँ
1: जाऊँ रोपा रोपा लगा के धान काटुक लाए जाऊँ
0: अच्छा जवा
1: बेड़ा नहीं।
0: बेड़ा नहीं अच्छा तो गांव चो सब तो काम करू लाए पड़े से
1: हाँ
0: आगे जुगे चाम जो जीवना खेती बाड़ी
1: खेती बाड़ी है।
0: है कि नहीं।
1: हाँ
0: हाँ हाँ हाँ तो दक इतलो अच्छा तु बोले ने जोन पढ़तो लेखा लेखी मन के कराटे सिखाई सीस और खुद चो जोन जीवना काजबल कहीं ना कहीं असन तु सोच ली सीस पढ़ी सीस
1: हाँ
0: तो ये तो अच्छा गोटा है आम चो जो नौजवान लेखा लेखी मन सुन सो जाल तुचो गोट के सुन बाती कहीं ना कहीं असन तुचो असन मतलब जीवना काजे चारों दिशा ने कहीं ना कहीं असन सोच लो नाल तो आजकल नहीं होए
1: नहीं होए।
0: है कि नहीं।
1: हाँ जी
0: आजकल चो जोन जीवना चो जोन तरीका है जीवना चो जोन शैली है बोले खेनिक बदल ली से
1: बदल ली से।
0: है कि नहीं
1: हाँ
0: पूरा प्रतिभा ज्यादा लागे से
1: हाँ
0: आगे चो सन तो नो
1: नू है
0: है
1: आगे
0: कि नहीं।
1: चल।
0: हाँ तो दक नमिता बघेल तो संगीत लो अच्छा अजी गोट बात होली फिर कभी तू अच्छा सिखालीस बोल ले तू चो चेला चेली मन बनुन आगे गेला जाले फिर एवं बात सांग से तो आजी का जी खूबे खूबे जुहार
1: जुहार सर सबके जुहार सिवा
0: जुहार।
1: जुहार।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: खेल पत्रिका में अभी आप सुन रहे थे नमिता बघेल से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे बलबीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हल्बी लोकगीत। गायक स्वर है मोतीलाल बघेल और साथियों का।

मोतीलाल बघेल और साथियों का गाया हल्बी गीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति है सुखचंद मंडावी की, संयोजक हैं चंद्र ऋषि ठाकुर।

0: कोनिंग लोकरा सुन तो सफाय दादा दीदी मन के जुहार आले सुनू पहले कौन कौन करे से।
1: हेलो पोनिंग लोकरस।
2: हाँ भैया, राम राम।
1: राम राम, कौन बोल रही ना?
2: मैं शिलेश कुमार साहू बोला, सुरानी गांव नगरी जिला धमतरीली।
1: हाँ, कैसे नासी?
2: सब बढ़िया। तो बहुत ज्यादा गर्मी लगा थे, अभी काम बहुत तेज है।
1: आजकल तो गर्मी छिया है ना?
2: हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी है। आज के समाचार सुना तो दो तो चार दिन में अब थोड़ा सा मौसम बदल ही सके कहा तरीके।
1: दो चार दिन ले तो मौसम बदल तो दखा दे से समय।
2: उसने अभी ले चालू हो गए, थोड़ा बदरहा बदरहा घाम करा थे, मौसम थोड़ा चेंज हुई की उम्मीद लगा होकर से थोड़ा राहत मिली इसे लगते, लेकिन ऐसा तो बहुत ज्यादा गर्मी से लगा थे।
1: कौन गीत के सुन तो गाइस फोन कर लीजना।
2: शत्रुघ्न सिन्हा और संगवारी के छत्तीसगढ़ी गीत सुना दे।
1: शत्रुघ्न सिन्हा छो ने?
2: हाँ
1: हाँ हाँ, ठीक है। तुझो मन कर लो गीत के हम ही सुना।
2: धन्यवाद।
3: मुर्छत

0: हेलो, फोनिंग लोकरत।
1: लोकराज सर।
0: हाँ, कहाँ ले बोल सिसनाथ?
1: हाँ, मैं जितेंद्र दास मानिकपुरी बोला था सर।
0: जितेंद्र दास मानिकपुरी ने?
1: हाँ,
0: कौन तान ले?
1: मैं गणेश धाम परसुली जिला बालोद के हारो सर।
0: कसना से मौसम गर्मी कसना से?
1: हाँ, गर्मी तो ताबड़तोड़ गर्मी है सर।
0: हाँ,
1: नौ तप्पा चला थे अभी तो
0: नौ तप्पा तो चले
1: बहुत
0: थे ने।
1: गर्मी है।
0: धान पान कमा तो काजी कसन खेती बाड़ी के तैयार कर सा?
1: अभी सर गर्मी फसल बोया था सर,
0: हाँ,
1: कटाई किया है सर, मिंजाई हो गया है सर, खेती का काम ही कर रहे हैं सर।
0: काय फसल लगाओ रही इस गर्मी फसल ने?
1: धाने धान था सर।
0: अरे कौन गीत के सुन तो काजे फोन कर लीस तु?
1: गीत सर वो ममता चंद्राकर का सुना देता सर।
0: अरे ठीक है, तुझे मन कर लो गीत के सुनाओ सामी।

0: फोनिङ लोकराज
1: नमस्कार दादा म चिरमिरी कुरासिया कालजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ निर्भान सिंह बोल ड्यूटी परेड में हूँ दादा और छुट्टी के टाइम हो गई से बस आए का टाइम हो गई से तो लोकरस में फोन करे हूँ दादा तो मैं आज पंडवानी गीत ला सुने हूँ तो ला सुना दी हा पंडवानी गीत ले
0: पंडवानी
1: हाँ तीजन भाई की आवाज में बढ़िया सुघर गीत हवे
0: क्या ड्यूटी करूँ
1: मैं एसीसीएल में सर्विस करता हूँ साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ नौकरी करता हूँ
0: एसीसीएल में
1: हाँ छुट्टी हो गई से दादा तो बस आए के टाइम हो गई से अभी बस नहीं पहुंची से तो मैं बोले कि लोकरस में फोन करा था तो कर देता हूँ
0: हाँ ठीक है फिर तुम जमान कर लो गीत गा में सुनाओ से
1: तो जोहार राम राम सब
0: हाँ जोहार।

रानी सुरेशना के पास भोजन खाए भर पहुंची और लेके थाली जब तैयारी भये सुरेशना और देवी सलेंद्री हाथ में पंखा लेके हिलावत हवे कका।

सलेंद्री है, मोर पास में बेटी के सामान रखे हो, ये तोर भांची है कि चक्कत है, गांव भर केलते बेटी की बेतो सब बहुत जन मोर भांची नहीं हुआ है, पर ये मोर राज रानी के लायक है, 12 बजे रात के मोर से घर में भोजन के थाली सजा के आज भेज देबे। सुदेशना घायल हो गए और देवी सलेंद्री ला बोले, देवी सलेंद्री 12 बजे दोपहर के बेर हो गए, कहे भाई भोजन

कथे दाई तोर भैया के नियत मोला अच्छा नहीं लागे तब मैं का करूं बेटी, ये थाली ले जल्दी ते पहुंचा के आ जा। हाथ में थाली लिए लोटा में पानी और देवी सलेंद्री आगे आगे चलने।

0: आँखी लमूंद ली।
1: देवी सलेंद्री भोजन लगे के पहली मन में सोचे है भगवान मोर बरते दया करे मुरारी। काबर कि अभी अगर आँखी मनी दिया गे मैं थाली लस छोड़ दूँ प्राण लेके भगा जाऊँ। ऐसे कहकर सलेंद्री।

0: हेलो पोनिंग लोकरस।
1: जय जोहार दादा, जय जोहार।
0: जय जोहार, कौन बोल रही ना दादा?
1: दादा मैं आप मन के ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति से राधा सिटी मथुरा ले गोट बात होते। दादा बताओ आप मन कैसे हवा?
0: हमी तो अच्छा हाँ, तुम से बाटे गरम कसन लागे से।
1: हाँ दादा गर्मी के महीना है तो गर्मी लागे ही।
0: तो कौन गीत के सुन तो काज फोन कर ली दादा?
1: कौनो बढ़िया मस्त लोक गीत सुना देवे।
0: ठीक है तुम जो मन कर लो गीत के हमें सुनाऊं से।
1: हाँ हाँ।

0: हेलो पोनिंग लोकरस।
1: हाँ हेलो पुनीत।
0: पोनिंग लोकरस कौन बोल सी दादा?
1: हाँ मैं मदनपुर कवर्धाली श्रवण कुमार साहू बोला था दादा। हम आपके जगदलपुर के कार्यक्रम सुना था। श्रोता सुमन है, पंत्राक्षण है, नमस्कार जगदलपुर है और लोकरस है, फोन इन चाहत है, हेलो युवाड़ी है। ये सबो कार्यक्रम हमन तो बढ़िया सुना रही थान गुनत रही थान।
0: आमचो तो नियमित श्रोता हासने। आमचो आकाशवाणी जगदलपुर चो प्रोग्राम
1: हाँ
0: कसन लागू है?
1: बढ़िया लगता है आपके जगदलपुर के कार्यक्रम। हाँ सब
0: हाँ,
1: हल्बी गौड़ी भाषा सीखल मिलते। हाँ
0: हल्बी गोंडी ने जोन समाचार आमचो जगदलपुर आकाशवाणी ले प्रसारण हुआ है, गोंडी और हल्बी ने समाचार केवल सुनवास।
1: हाँ वो सब ला सुनता मन बढ़िया लगते। हाँ हाँ
0: तो गोंडी बत्तरी ने जो नाम चो समाचार प्रसारण हो से उनचो का जे समझ तो ने तो कहीं परेशानी नहीं हो।
1: नहीं हो अब लगभग छत्तीसगढ़ी टाइप है तो समझ लिए धीरे से।
0: तो आज कौन गीत के सुनवास?

0: मॉर्निंग लोकरस।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: जुहार, कौन बोल रहे दादा
1: जी? मैं ग्राम लोहेड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव बात कर रहा हूँ सर।
0: तो उत्तर प्रदेश ने कसन मौसम आसे
1: जी सर, इस समय जो हमारा बुंदेलखंड इलाका है, पथरीला इलाका है, जो वीरों की भूमि करते हैं महाराजा छत्रसाल, आला उदल की नगरी है, तो यहाँ तापमान वैसे भी गर्म रहता है, वो अभी 40-45-40 टेम्परेचर है डिग्री। आपकी आकाशवाणी जगदलपुर से जुड़े रहते हैं और सभी विविध कार्यक्रम को आनंद और मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम आपके यहाँ से सुनने को मिलते हैं, और मैं अपने रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी परिवार को और आदरणीय बहन चंद्र सिंह ठाकुर जी को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग इतनी शिद्दत और मेहनत और लगन से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है और आप लोग बधाई के पात्र।
0: केवल खूबी खूबी बधाई हम चो आकाशवाणी परिवार बाटले, तो हम चो आकाशवाणी जगदलपुर चो जमाए प्रोग्राम की सुनवा।
1: जी जी जी बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है जब छत्तीसगढ़ी अपनी बस्तर की बोली हमें बड़ी प्यारी, आपके यहाँ से 1:05 से कार्यक्रम आता है बेड़ा घाड़ा चौकोट कार्यक्रम, वो कहीं ना कहीं हम आप आवाजें और कुछ सीख भी गए हैं आपके यहाँ से, खेती बाड़ी से कार्यक्रम आते हैं।
0: सनवाणी
1: तो, जी जी जी
0: कौन गीत के
1: तो इसमें कोई भी कलाकार का एक अपने बस्तर जिला का कोई भी एक कलाकार का गीत सुना दीजिए, अच्छा रहेगा।
0: ठीक है, हेल्वी गीत क्या सुनाऊं दे
1: जी जी

दादा दीदी मन पोनिंग लोक रस्चो रिकॉर्डिंग रोजे लकिन बार दिने 3 बजे ले धरून 3:30 तक वैसे तुम बले आपलो मन कर लो गीत के सुन तो काजे फोन करुक सका से फोन कर तो काजे आमचो नंबर आए 222-666 और गोटक नंबर आए 222-166 फोन कर तो पहिल जगदलपुर चो एसटीडी कोड नंबर 07782 एके लगाऊ नी बुलका से दादा दीदी मन जोन हफ्ता तुम के फोन लगे से उन चोले 4 हफ्ता तक फोन नी लगावा ए चोले का आए कि दूसरा नवा लोग के बले मौका मिले दे आले अदाए जातो बेरा ओली मोके दिया विदा जुहा।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस आकाशवाणी का, ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुति थी सुखचंद मंडावी की और संयोजक थी चंद्र ऋषि ठाकुर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
4: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
3: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और

स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।